सुप्रभात। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1947 के वैशाख मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 56 सेकंड हो रहे हैं। आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये दो दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।

0: toi.
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रभु स्मरण के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

और ये लगन इतनी पक्की होती है कि इसे कोई हिला नहीं सकता। और फिर ये आत्मा ये प्राण तो बस एक ही धुन लगा के रटना लगाए रहते हैं हर आठोयाम कि बस प्रभु इन आँखों में मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ तुम ही बसो।

यह है भगवान की ये लीला, नहीं तो क्या है कि कहाँ वो पत्थर को अगर स्पर्श करते हैं तो वही पत्थर अहिल्या के रूप में बदल जाता है। वह अंतर्यामी है, और अगर देखा जाए तो ईश्वर के जब हम सगुण साकार रूप में उनके बारे में सोचते हैं और बात भी करते हैं तो उनकी अनंत लीलाएं हमारे सामने होती हैं। अब इस प्रभु की इस लीला का असर देखिए कि छुअत सिला भय नार सुहाय, गोस्वामी जी ने भी कहा। अब देखिए कि इस बात का असर ये हुआ कि जब प्रभु श्री राम वनवास की तरफ चले तो फिर रास्ते में नदी पड़ी और नाव को खैया केवट, वह तो मतलब उसके मन में ये भय था कि कहीं हमारी नाव भी बदल ना जाए प्रभु के स्पर्श से। तो वो इस भय से आशंकित होकर प्रभु से बोला कि प्रभु मैं तो अब नाव नहीं चलाऊंगा। खैर बहरहाल कितना अच्छा भक्त और भगवान के बीच का संबंध होता है, हास्य विनोद का भी होता है, और फिर ये तो एहसास और अनुभूति की बात है, अद्भुत तो होता ही है।

0: आप सुन रहे थे अभी संवेद स्वरों में देशभक्ति परक रचना को। इसके अलावा आपने जिन गायक स्वरों में भक्ति परक रचनाएं सुनी वे गायक स्वर थे पुरुषोत्तम दास जलोटा, अनुराधा पौडवाल और अनूप जलोटा के। आज का वंदना कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है चिंतन बिंदु। आइए सुनते हैं आज इस क्रम में प्रकृति के प्रेरक गुण संबंधी ये विचार। आलेख महेश चंद्र तनेजा और स्वर राम गोपाल का है।
1: संतों और विद्वानों का कहना है कि धरती में बहुत बड़ी सहन शक्ति है। समग्र विश्व के लोग उसकी कोख से उत्पन्न खाद्य पदार्थों के द्वारा अपना पालन पोषण करते हैं। जमीन पर कोई कुआं खोदता है, कोई मकान बनाता है, कोई गड्ढे खोदता है। धरती से सबको सब तरह का आराम मिलता है, किंतु वह किसी को भला बुरा नहीं कहती। जमीन पर बगीचे लगाओ अथवा कांटे लगाओ, धरती की ओर से किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। अर्थात धरती सबका आदर संभाव से करती है। जैसे मृत शरीर यानी शव को जहां भी रखो, जमीन में दफनाओ या जलाओ अथवा नदी में प्रवाहित कर दो, वह कुछ भी नहीं कहती। एक संत ने कहा है, शीश कान मुख नासिका ऊंचे ऊंचे नाव, सहजो नीचे कारने सबको पूजे पांव। मनुष्य के शरीर के अंगों में सिर, मुंह, नाक, कान ये उच्च पद पर स्थित हैं, परंतु पांव नीचे होने के कारण सब कोई पांव की ही पूजा करता है। चरणोदक और चरण रेणु ही सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इसी प्रकार कबीरदास जी ने कहा है, ऊंचे पानी ना टिके नीचे ही ठहराए, नीचा होय सो भर पिवे ऊंचा प्यासा जाए। इस प्रकार जिसने नम्रता ग्रहण की वही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। कबीर ने ही कहा है, कबीरा नबे सो आपको परको नबे न कोय, घाल तराजू तौलिए नबे सुभारी होय। बादल में उदारता का गुण सर्वश्रेष्ठ है। जैसे बादल निःस्वार्थ भाव से सब जगह पानी बरसाता है, बादल के लिए बंजर भूमि, पहाड़ी, चट्टानी, मैदानी, तालाब, नदी, नाले सब बराबर हैं। बादल में एक विशेषता यह भी है कि समुद्र से खारा पानी लेकर मीठे जल के रूप में बरसता है। सब्र का सबक आतिश ने पढ़ाया, हवा ने लफ्ज आजादी सुनाया। सब्र कहते हैं संतोष और धैर्य को। आतिश का अर्थ है आग। जिस प्रकार आग में ईंधन डालने पर वह उसे जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार हमें ज्ञान रूपी अग्नि को जलाकर उसमें तृष्णा, लोभ, क्रोध और घमंड को ईंधन के रूप में झोंक देना चाहिए, ताकि वे इस अग्नि में जलकर राख हो जाएं। हवा कहती है कि जैसे मैं स्वतंत्र हूं, तुम भी अपनी रूह को बंधनों से मुक्त करो। अर्थात हवा ने हमें विकृतियों के बंधन से आजाद रहने का संदेश दिया है। मुरब्बत का सबक लिया शजर से, तराजू से अदल का हुनर पाया। मुरब्बत का अर्थ है हमदर्दी और शजर कहते हैं वृक्ष को। वृक्ष, तालाब, नदी, मेघ तथा संतजन ये संसार में परमार्थ के लिए ही आते हैं। तराजू सबको न्याय सिखाता है। दूसरों के साथ न्याय करो, किसी को अपने से हीन मत समझो। करो इखलास सबसे एक जैसा, मेहताबा ने यह नुस्खा पढ़ाया। जैसे चांद सबको समान

0: भाव से रोशनी तथा ठंडक प्रदान करता है, उसी प्रकार हमें भी चांद की तरह पथ प्रदर्शक बनकर दूसरों के साथ निःस्वार्थ भाव से व्यवहार करना चाहिए।
1: आप सुन रहे थे अभी चिंतन बिंदु क्रम में प्रकृति के प्रेरक गुण संबंधी ये विचार, आलेख महेश चंद्र तनेजा और स्वर रामगोपाल का था। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण।

पार्वती की हस्त रेखाएं देखकर देवर्षि नारद ने भविष्यवाणी की कि उनका पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला होगा। देवर्षि ने कहा, हे हिमवान, विधाता ने जो ललाट पर लिख दिया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। फिर भी एक उपाय है। मैंने वर के जो भी दोष बताए हैं वे सभी शिवजी में विद्यमान हैं, और यदि पार्वती का विवाह उनसे हो जाए तो सभी दोष गुण में परिवर्तित हो जाएंगे।

चरितमानस गान से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण। गायक स्वर कविता कृष्णमूर्ति और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज रात्रि 10:30 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत ध्रुपद धमार गायन। कलाकार होंगे आनंद कुमार मलिक। शाम 7:31 पर सुनिएगा शाम सुहानी। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम और श्रोताओं के ही व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप दिन में भी सुन सकते हैं 12:00 बजे।

संध्या 6:45 पर सुनिएगा भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन। संध्या 7:05 पर आज आप सुनेंगे ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रज काव्य सुधा में पूनम शर्मा का काव्य पाठ। संध्या 6:15 पर कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण प्रसारित किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी स्वरोजगार अपनाएं विश्व मधुमक्खी दिवस के संदर्भ में। और इसी कार्यक्रम में सुनिएगा बीनू कुमार से देवराज कृष्ण दीक्षित की ली गई भेंट वार्ता, विषय होगा लाभकारी है मधुमक्खी पालन।

युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 5:30 का। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा सुमित्रा नंदन पंत जयंती विषय पर और विश्व मधुमक्खी दिवस पर चर्चा और युवा कलाकार से भेंटवार्ता पूजा माहौर से डॉक्टर लिली खन्ना की ली हुई। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का प्रसारण समय रहेगा 2:30 का। बहने कार्यक्रम सुनेंगी वनिता लोक दिन में 1:15 पर। आज इस कार्यक्रम में अंजू शर्मा वार्ता प्रस्तुत करेंगी, विषय होगा गर्मियों में सौंदर्य सुरक्षा और साथ ही कुछ घरेलू टिप्स भी बहने इसी कार्यक्रम में सुन सकेंगी। ब्रज लोकगीत कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 12:30 पर। आज इस कार्यक्रम में कलाकार होंगे रामेश्वर दयाल शर्मा। श्रोताओं के पसंद पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम फोन इन हेलो आकाशवाणी का प्रसारण समय पूर्वाह्न 11:00 का होगा। NCERT एवं CIT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा उमंग सुबह 10:00। ब्रज दर्पण का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा सुबह हमेशा की तरह 9:30 पर। कार्यक्रम आवो हवा सुबह 9:25 पर सुनिएगा और आज इस कार्यक्रम में राजीव कपूर जानकारी देंगे वृक्षारोपण और पर्यावरण विषय से संबंधित। सुबह 9:00 का समय रहेगा हिंदी वार्ता में। आज आप सुनेंगे ओपी सिंह की विकेश निझावन से ली गई भेंट वार्ता, कहानी जीवन का यथार्थ है इस विषय से संबंधित। ब्रज माधुरी कार्यक्रम प्रातः 7:31 पर सुनिएगा। आज इस कार्यक्रम में ब्रज की माटी तोहे प्रणाम में आप जानकारी लेंगे श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर के बारे में, प्रस्तुति होगी रश्मि शर्मा की। पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनेंगे आप प्रातः 7:00। ये था आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है खेती की बातें। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में आज धान की

0: सुगंधित प्रजातियों के बारे में जानकारी डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत से।
1: किसान भाइयों, कल हमने आपको धान की शीघ्र पकने वाली प्रजातियां और मध्य देर से पकने वाली प्रजातियां और देर से पकने वाली प्रजातियों की चर्चा की थी। आज हम जो सुगंधित प्रजातियां हैं, ऊसर भूमि के लिए जो धान की प्रजातियां हैं और संकर धान की जो प्रजातियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सुगंधित प्रजातियों में टाइप 3 जो प्रजाति है वो 125 से 140 दिन में तैयार होती है, 30 से 35 क्विंटल उपज इससे मिलती है और इसका जो चावल होता है महीन लंबा सफ़ेद होता है। कस्तूरी जो किस्म है 115 से 125 दिन में तैयार होती है, 30 से 40 क्विंटल तक इससे उपज मिल जाती है, इसका दाना भी महीन लंबा सफ़ेद होता है। PV1 जो किस्म है 135 से 140 दिन लेती है, सुगंधित किस्म है ये भी, और 35 से 45 क्विंटल तक इससे उपज मिलती है, महीन लंबा सफ़ेद इसका भी चावल होता है। हरियाणा वास 1 जो किस्म है 140 से 145 दिन तैयार होने में ले लेती है, 35 से 45 क्विंटल तक उपज मिल जाती है इससे। बासमती 370 जो प्रजाति है 135 से 140 दिन तैयार होने में लेती है और इससे उपज सिर्फ 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलती है, इसका दाना लंबा पतला होता है। कस्तूरी जो किस्म है 115 से 125 दिन लेती है, 30 से 40 क्विंटल तक इससे उपज मिलती है, महीन लंबा सफ़ेद इसका दाना होता है। ऊसर भूमि के लिए कुछ अलग प्रजातियां निर्धारित की गई हैं, इनको ऊसर क्षेत्र में लगाने से उपज इनसे अच्छी ली जा सकती है, साथ ही ऊसर सुधार के काम में भी ये मदद करती है। इसमें किस्म है ऊसर धान 1 जो कि 140 से 145 दिन तैयार होने में लेती है और इससे उपज 45 से 50 क्विंटल तक ली जा सकती है, चावल छोटा मोटा और सफ़ेद होता है। CSR 10 भी ऊसर प्रजाति के लिए उपयुक्त किस्म है, 115 से 120 दिन तैयार होने में लेता है, 50 से 60 क्विंटल तक इससे भी उपज मिल जाती है, और CSR 13 जो किस्म है 110 से 115 दिन में तैयार हो जाती है, इससे भी उपज 50 से 60 क्विंटल तक ली जा सकती है। नरेंद्र ऊसर 2 जो प्रजाति है वो 125 से 130 दिन में तैयार हो जाती है, 45 से 50 क्विंटल तक इससे उपज ली जा सकती है, इसका जो दाना इसका जो चावल होता है लंबा गोल और सफ़ेद आकार का होता है। सोना महसूरी ये भी ऊसर क्षेत्र के लिए अच्छी प्रजाति है, 155 से 160 दिन में तैयार हो जाती है, 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इससे उपज ली जा सकती है, छोटा पतला सफ़ेद इसका चावल होता है। और ऊसर क्षेत्र में के लिए अगर इसको रोपना है इन प्रजातियों को तो पौध करीब 30 से 35 दिन की हो जानी चाहिए और एक स्थान पर 3 या 4 पौध लगानी चाहिए, तभी आप भरपूर उपज ले सकते हैं। जहां तक संकर धान की सवाल है संकर प्रजातियों का, उसमें पंत संकर 1 प्रजाति है जो 115 से 120 दिन तैयार होने में लेती है, 60 से 65 क्विंटल तक उपज देती है। नरेंद्र संकर 2 125 से 130 दिन तैयार होने में लेता है और 60 से 65 क्विंटल तक उपज दे देता है। PHB 71 जो किस्म है संकर धान की 115 से 120 दिन में तैयार हो जाती है और 65 से 68 क्विंटल तक इससे उपज मिल जाती है। और एक किस्म है RH 10 सुगंधित किस्म भी है ये संकर धान की, 120 से 130 दिन में ये तैयार होती है और 60 से 65 क्विंटल तक इससे उपज ली जा सकती है।
0: आप सुन रहे थे भी कार्यक्रम खेती की बातें के अंतर्गत धान की सुगंधित प्रजातियों के बारे में ये जानकारी दे रहे थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। और वक्त हो चुका है संस्कृत समाचारों का, तो बस अब से कुछ देर में।

0: प्रधानमन्त्री श्रीमोदी ह्यः नार्वेदेशस्य राजधान्याम् ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिस्सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं सम्बोधयन् घोषणामेतां कृतवान्।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमन्त्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे वदन्तः नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विकव्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमे अन्तिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरम् आगतवान्। भारतस्य समृद्धकला परम्परायाः उत्सवे भव्य सांस्कृतिक सन्ध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोप्तः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्। लोकसभायाः अध्यक्ष ओम बिरला निगम विधि संशोधन विधेयक 20-26 इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान्। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता समितेः अध्यक्षरूपेण नियुक्त वर्तते। समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमारः, उज्ज्वल निकाम इत्येतैः सह राज्यसभायाः 9 सदस्याः कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा, डॉ निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्न सदनस्य सदस्याः च सन्ति। भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति, यद्धि 73.8 शताधिक 79,000 किलोमीटर तः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिकरूपेण स्वस्य ब्राड्गेज जालस्य पूर्णविद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीय संघस्य, युनाइटेड किंग्स, अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख रेल व्यवस्थाभ्यः अग्रस्थितं वर्तते। मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिवः अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्यसर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र हस्तकरघ परम्पराणि प्रवर्तयितुम् अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुं च कार्यं कुर्वन् अस्ति। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं 7:30 कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।

प्रस्तुत है पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का यह पहला गीत साथियों आप सबकी नजर इस गीत के साथ है। जी हाँ, आज सुबह हम आपके लिए लेकर आए हैं खुशनुमा कुछ प्यारे से गीत और गीतों का ये सुरीला सफर। तो बस मुस्कुराइए, एक सुबह का जो है मुस्कुराते हुए स्वागत कीजिए गीतों के साथ।

आपने सुना अभी लता मंगेशकर, आमिर बाई, कर्नाटकी की आवाज़ में राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गीत को और संगीतबद्ध किया था सी रामचंद्र ने। फिल्म सगाई का आपने अभी सुना ये गीत। और अब आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम का अगला गीत।

शमशाद बेगम साथियों की आवाज़ में आपने सुना अभी शवा फिल्म के इस गीत को शब्द रचना शकील बदायूं की थी और संगीत नौशाद साहब का था। साथियों इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीतों का। और अगला गीत सुनने से पहले कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। आपके विशेष अनुरोध पर आपके पत्रों एवं फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम आपके पत्र आपके फोन का प्रसारण पुनः किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 12:30 से होगी। कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा रविवार दोपहर 1:30 पर। आपको हमारे कार्यक्रम केंद्र के जो है वो कैसे लगते हैं, आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में और क्या बदलाव चाहते हैं, अपने सुझाव टेलीफोन नंबर 25:30-135 पर फोन करके या पत्र के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता हैं, स्टडी कोड अवश्य लगाएं 0565। पत्र भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम आपके पत्र आपके फोन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मथुरा वृंदावन निकट गायत्री तपोभूमि मथुरा। पिन कोड है 2810-03। सूचना समाप्त हुई और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अब ये अगला गीत।

गूंज उठी शहनाई, आपने सुना भी इस फिल्म के गीत को। लता मंगेशकर की आवाज़ में शब्द रचना गीतकार भरत व्यास की थी, संगीत बसंत देसाई का था। और अब आइए साथियों सुनते हैं ये अगला गीत।

आपने सुना अभी सुरैया की आवाज़ में फिल्म अनमोल घड़ी का ये गीत। लिखा था तनवीर नकवी ने इस गीत को, और संगीत से संवारा था संगीतकार नौशाद साहब ने। साथियों, आइए अब सुनते हैं ये अगला गीत।

आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में असली नकली फिल्म के गीत को, और साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हमारा अगला प्रसारण बस आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर में।

0: छू प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सामूहिक संकल्प को और अधिक सशक्त करेगा ये मंच। कल से करीब 90 पैसे प्रति लीटर

0: बढ़ गए पेट्रोल और डीजल के दाम। तेल विपणन कंपनियों ने राज्य में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बताते हुए लोगों से अनावश्यक अतिरिक्त खरीदारी न करने की अपील की। सर्वोच्च न्यायालय ने खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की दी अनुमति। लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने जारी किया भीषण लू का रेड अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जन कल्याण, सुशासन और क्षेत्रीय विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष तौर से चर्चा की गई। बैठक से संबंधित एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने इसे सहकारी संघवाद, समन्वित विकास और राज्यों के मध्य बेहतर तालमेल को नई दिशा देने वाला मंच बताया। श्री योगी ने कहा कि ये मंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सामूहिक संकल्प को और अधिक सशक्त करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कल से लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में पेट्रोल की कीमत 98.40 रुपये प्रति लीटर से लेकर 98.91 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 98.73 रुपये से लेकर 92.21 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। एक रिपोर्ट।
1: यह बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जल डमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। इस बीच प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। तेल विपणन कंपनियों ने स्पष्ट किया कि राज्य में ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी प्रकार की घबराहट या अतिरिक्त खरीदारी की जरूरत नहीं है। एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति भी सामान्य बनी हुई है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: प्रदेश सरकार ने कहा है कि प्रदेश में किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। इस समय राज्य में 13.28 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 5.23 लाख मीट्रिक टन डीएपी सहित कुल 27.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की उपलब्धता है। एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश में उर्वरक की उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में 3.13 लाख मीट्रिक टन अधिक है। कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए अनुदान पर सभी प्रकार के उर्वरकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुदानित उर्वरक का दुरुपयोग रोकने के लिए शासन ने किसान पहचान पत्र उपलब्ध कराने वाले किसानों को उनके अभिलेखों के आधार पर ही उर्वरक देने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि उर्वरकों की अत्यधिक खरीद और अनावश्यक प्रयोग से बचें। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ओडिशा के भुवनेश्वर में हुए एक कार्यक्रम में कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार देश में किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। श्री चौहान ने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की अनुमति दे दी है। एक रिपोर्ट।
3: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने कहा कि उन

0: क्षेत्रों में कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिया जा सकता है, जहां कुत्तों की आबादी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है और जहां कुत्तों के लगातार काटने और आक्रामक हमलों की घटनाओं से जन सुरक्षा खतरे में पड़ रही हो। न्यायालय द्वारा ये आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान के मामले में जारी किया गया है। इस बीच शीर्ष न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थल भेजने और नसबंदी करने के अपने पहले के आदेश को वापस लेने की मांग से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
1: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। उन्होंने बछरावा में सांसद निधि से बने बारात घर का उद्घाटन किया। श्री गांधी ने रायबरेली में पीएससी के 25वीं बटालियन के सामने 66 फीट रोड का भी उद्घाटन किया। कांग्रेस सांसद आज भी अपने संसदीय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल लखनऊ में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को सही समय पर और उचित मात्रा में बीज उपलब्ध कराए जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि हर हाल में 31 मई तक सभी विक्रय केंद्रों तक बीज पहुंच जाने चाहिए। सभी प्रमाणित बीज किसानों को 50% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वो अनुदान पर बीज प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन करें, जिससे बुआई का कार्य सुगमता और समयबद्धता के साथ संपन्न हो सके। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। प्रदेश के कई जिलों में पारा 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार तीसरे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। रातें भी असामान्य रूप से गर्म हो गई हैं और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। दिन चढ़ते ही सड़कें सूनी हो जा रही हैं और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की तादाद बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी।
1: भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेटों, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग और संबंधित सभी राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में हुए मुकाबले में कल राजस्थान रॉयल्स की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। कल शाम को हुए मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। इसके बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 220 रन बनाए। जवाबी बल्लेबाजी में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 19 ओवर और एक गेंद पर 3 विकेट खोकर 225 रन हासिल कर अपनी जीत दर्ज कर ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सामूहिक संकल्प को और अधिक सशक्त करेगा ये मंच। कल से करीब 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए पेट्रोल और डीजल के दाम। तेल विपणन कंपनियों ने राज्य में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बताते हुए लोगों से अनावश्यक अतिरिक्त खरीदारी न करने की अपील की। सर्वोच्च न्यायालय ने खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की दी अनुमति। लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने जारी किया भीषण लू का रेड अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार आपसे थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को

0: प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

0: बजने दे जरा।
1: जी हाँ, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
2: सही उपाय अपनाएं, लू से खुद को बचाएं।
3: जी हाँ, बाहर निकलते वक्त गमछा, टोपी, चश्मा एवं छाती का प्रयोग करें। चेहरे, सिर और गर्दन पर गीला कपड़ा रखें।
2: छाछ, लस्सी, नमक, चीनी का घोल, नींबू पानी और आम के पना का सेवन करें तथा संतुलित हल्का व नियमित भोजन करें।
3: बार बार पानी पिएं, ठंडे पानी से नहाएं, हल्के सूती कपड़े पहने, दिन में खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें।
2: चाय, कॉफी जैसे गर्म पेय का सेवन न करें। तेज धूप में बाहर न निकले। चक्कर या घबरा हटाने पर डॉक्टर को दिखाएं।
3: पालतू जानवरों को छांव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने दें।
2: ये सूचना उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
3: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
2: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
3: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
2: अधिक व्यायाम ना करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
3: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
2: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
3: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।

श्रोता साथियों, आप सब कैसे हैं? बढ़िया हैं? और देखो, अच्छा ही रहें तो हम तो ये राधे रानी से कामना कर रहे हैं कि सब राजी खुशी रहें, स्वस्थ रहें, सब खुश रहें, है ना। और जब सब खुश रहेंगे तभी जो है आनंद हो वो जीवन में, है ना। और आप देखो महसूस कर ही रहे होंगे कि गर्मी जो है वो दिनों दिन जो है बढ़ती जा रही है ना। और हम सब उनको जो है सावधान रहना है और अपना बचाव रखना है, और जहाँ तक है सके तो अपने आप को जो है धूप में निकरवे से बचावें। और ख़ासकर जो हमारे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, बिना तो बहुत ही जो है सावधानी की ज़रूरत है, बिनको खास ध्यान रखना है। तो जो परिवार हैं, घर हैं, तो बिन में जो छोटे बच्चा हैं बिनको विशेष ध्यान रखना है। जो अभी जैसे नवजात शिशु हैं, है ना, उन बिन की पहली गर्मी है। और वैसे वो बच्चा तो बच्चा हुए हैं हम, यानी कि स्वास्थ्य तो देखो सभी को जो है प्रभावित हो गए हैं, मौसम चाहे को हो। गर्मी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ऐसी चटक गर्मी कि

कहा गए वो बहुत ज़्यादा जो है परेशानी है रही है, तो बस पानी खूब पिए है ना, और ठंडी ठंडी जो चीज़ें हैं यानी पेय पदार्थ हैं, लस्सी है, मट्ठा है ना, दही को सेवन है, बढ़िया पुदीना को सेवन आप करें, रायता वो करें, पराठा कैसे करें पर करें, और अमिया को पना है वो आप बनावें और अपने खुद भी खा लें और अपने परिवार में सबन को दें। तो यानी कि सूती वस्त्र पहने, रेशमी वस्त्र वस्त्र को जो है प्रयोग करवे थे, बचें अपने आप को बचाए के रखें, तो जहाँ तक है सके अपने सुरक्षित रखें। तो फिर ये तो देखो हमारी आपकी रही बातचीत, और अब एक लोक गीत सुन लियो जाए।

0: बिजली को, अरे हम बे पंखा बिजली को लगवाए दे भर तार, महीना आयो गरीबी।
1: तो श्रोता साथियों, लोकगीत को जो है अभी हमने हम सबों ने सुनो, आनंद लियो और अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ें। ब्रज की माटी तोहे प्रणाम कार्यक्रम में आज हम सब जानकारी लेंगे श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर वृंदावन के बारे में। या को प्रस्तुत कर रही हैं रश्मि शर्मा, प्रस्तुत करता है विजय सिंह नौलखा।

जय श्री कृष्णा। ब्रज की माटी तोहे प्रणाम कार्यक्रम सुनवे वाले सभी श्रोतान को हमारी जय श्री कृष्णा। आज के या अंक में हम आपको लिए चल रहे हैं श्री वृंदावन धाम, और आज आपको जानकारी देंगे श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर के संदर्भ में।

यहाँ की माटी में रच बस गई। वृंदावन को कण कण राधा और कृष्ण की अलौकिक प्रेम लीला को बखान करे है।

वृंदावन में जहाँ पग पग पे मंदिर बने भए हैं, इन्हीं मंदिरों में विशेष स्थान है यहाँ के सप्त देवालयन को। वृंदावन के सप्त देवालयन में ठाकुर राधा श्याम सुंदर मंदिर भी है जो कि अनूठा है। यहाँ की प्रतिमा चमत्कारी है।

वृंदावन के सप्त देवालयन में सम्मिलित ठाकुर राधा दामोदर मंदिर से करीब 100 मीटर की दूरी पर लोई बाजार क्षेत्र में ठाकुर राधा श्याम सुंदर जी को मंदिर स्थापित है।

मंदिर में गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य बलदेव विद्याभूषण के सेवियर ठाकुर राधा श्याम सुंदर मुख्य सिंहासन पर विराजमान हैं।

मुख्य सिंहासन की बाईं ओर श्री राधा रानी के हृदय कमल ते प्रकटित तथा राधा रानी द्वारा श्यामानंद प्रभु को प्रदत्त श्याम सुंदर और भरतपुर के महाराजा के कोष भंडार ते स्वयं प्रकटित राधा रानी प्रतिष्ठित हैं। इनको सन 1850 में भरतपुर के महाराजा ने मंदिर बनवाए के श्याम सुंदर के संग बसंत पंचमी पे बिन को पाणी ग्रहण कर दान कर दियो। मुख्य सिंहासन के दाई ओर ब्रजानंद देव गोस्वामी को नंदगाम ते प्राप्त राधा कुंज बिहारी जी की मनमोहनी विग्रह सेवित हैं।

के 2 महीनन में निरंतर ठाकुर जी को फूल बंगला, कार्तिक नियम सेवा, प्रतिदिन होवे वारी चंदन से श्री विग्रह की पत्रावली को श्रृंगार तथा अक्षय तृतीया को हैवे वारी अंग चंदन श्रृंगार दर्शन यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। मंदिर के महंत कृष्ण

0: मंदिर के महंत कृष्ण गोपालानंद देव गोस्वामी के अनुसार श्याम सुंदर को श्री विग्रह स्वयं राधा रानी ने अद्वैत महाप्रभु के भावेशावतार श्यामानंद प्रभु को प्रदान करो। बसंत पंचमी सन 1578 को श्याम सुंदर को प्राकट्य भयो। श्यामानंद प्रभु को आगमन यहाँ श्री वृंदावन में कैसे भयो, पहले आपको या संदर्भ में जानकारी देंगे।
1: आपने अक्सर सुना होगा वृंदावन को 6 गोस्वामी मंदिर के अलावा 7 गोस्वामी टेम्पल भी बोलते हैं, 7 गोस्वामी मंदिर। तो सप्तम गोस्वामी श्यामानंद पंडित को माना जाता है। तो श्यामानंद पंडित वृंदावन में इसी स्थान पर एक बार जब वो झाड़ू सेवा कर रहे थे, जिसको सोनी सेवा भी कहते हैं, तो उन्हें नुपुर की प्राप्ति हुई थी। किसकी नुपुर? राधा रानी की नुपुर। श्यामानंद पंडित पहले बंगाल में अंबिका कालना में रहते थे, वहाँ वे सेवा करते थे। तो संसार के दुख कष्ट को देखकर उनके अंदर वैराग्य था और उनका नाम था दुखी कृष्णदास, क्योंकि वह हर वक्त दुखी रहते थे। फिर उनको दीक्षा मिले उनको गुरुदेव हृदय चैतन्य से, और उन्होंने उनका नाम रखा सुखी कृष्णदास। उनके गुरुदेव ने कहा कि आज से तुम दुखी नहीं, सुखी बन जाओ, बी हैप्पी। तो वह सुखी बन गए, तो उनका नाम हुआ सुखी कृष्णदास। फिर उनके गुरुदेव ने देखा कि ये सुखी कृष्णदास बहुत बुद्धिमान है और इसको और भी शिक्षा की जरूरत है। तो उनके गुरुदेव ने उन्हें वृंदावन में जीव गोस्वामी के पास भेजा पढ़ने के लिए, क्योंकि उस दौरान जीव गोस्वामी बहुत पंडित व्यक्ति थे और वो बहुत वक्तों को शिक्षा देते थे, उनको गाइडेंस देते थे, उनको व्याकरण, पब्लिक स्पीकिंग, संस्कृत, बहुत सारे चीज़ों से शिक्षित करते थे। उनके अन्य शिष्य रहे नौतम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित रहे, और भी श्रीनिवास आचार्य, ये सब उनके शिष्य रहे।
0: मंदिर के समीप श्री राधा दामोदर व राधा श्याम सुंदर मंदिर के बीच में ही राधा रानी को नूपुर प्राप्ति स्थल भी है, जहां राधा रानी के निर्देश पे श्यामानंद प्रभु को उनको नूपुर मिलो। मंदिर में श्यामानंद प्रभु नरोत्तम ठाकुर की पदावलियों सायकाल को गाई जामे हैं। श्यामानंद प्रभु को वृंदावन में आए के श्री जी की कृपा कैसे प्राप्त भई, या क्यों एक रोचक कथा है।
1: यहाँ पर जब श्यामानंद पंडित झाड़ू दे रहे थे, तो उन्हें एक नुपुर की प्राप्ति हुई। नुपुर को स्पर्श करते वो समझ गए कि ये नुपुर कोई साधारण नुपुर नहीं है। इस दौरान एक प्यारी सी छोटी सी लाली आई, एक बच्ची आई और बोली, बाबा आपको क्या यहाँ पर कोई नुपुर की प्राप्ति हुई, आपको क्या कोई नुपुर मिला। तो श्यामानंद पंडित ने बोला, हाँ लाली मिला तो है। और तो बोला कि बाबा मुझे दे दो। तुम्हें दे दूँ, क्यों? तो कहा कि बाबा वो ना नुपुर मेरे सखी की है, वो मेरे सखी यहाँ पे आई थी फूल चुनने मेरे साथ, उस दौरान वो गिर गया, तो अब वो गिर गया। तो श्यामानंद पंडित ने कहा, ठीक है तो जाके अपने सखी को बुला के लाओ, मैं उसे दे दूंगा। तो सखी ने कहा, बच्ची ने कहा कि बाबा वो उसने ना नुपुर खो दिया ना, तो उसके माता पिता उस पर बहुत गुस्सा है, तो उन्हें आने नहीं दे रहे घर के बाहर, तो इसलिए उसने मुझे भेजा है, तो आप ना मुझे दे दो, मैं उसको दे दूंगी, तो उसके मम्मी पापा शांत हो जाएंगे, माता पिता शांत हो जाएंगे, माँ बाबा। तो बोले दे तो दो, पर हो सकता है तुम्हारे हाथ से खो जाए, कहीं गिर जाए, तो इससे अच्छा है मैं इसको रखता हूँ, या फिर तुम मुझे वहाँ लेके चलो। तो बाबा भी नाछोड़ बंदा थे, छोड़ने वाले नहीं थे, तो उन्होंने बोला, अच्छा ठीक है चलो मेरे साथ। तो वो जो सखी थी वो थी ललिता सखी। तो ललिता सखी उसको बोले कि बाबा आपने वो झाड़ू की सेवा की ना, तो आपके शरीर में वो धूल लग गई है, तो ये कुंड है, सेवा कुंज के अंदर ये कुंड है, इस कुंड में अपना डुबकी लगा लो। तो उस बच्ची जो थी उनके कहने पर श्यामानंद पंडित ने वहाँ डुबकी लगाई, और डुबकी लगाते उनका स्वरूप गोपी के समान हो गया, वो एक सुंदर प्यारी लड़की बन गई। और फिर ललिता सखी उन्हें लेके गए सेवा कुंज में, रास मंडल में, जहाँ पर राधा रानी अपने समस्त सखियों के बीच बैठी थी। राधा जी को दर्शन करके श्यामानंद प्रभु गदगद हो गए, और उन्होंने वो जो नुपुर थी वो राधा रानी को दी। राधा रानी ने उस नुपुर से श्यामानंद प्रभु को तिलक बना दिया, और ललिता सखी से कहा कि आप इन्हें दीक्षा दो। और उसके बाद राधा रानी के अपूर्ण हृदय से एक सुंदर श्याम सुंदर प्रकट हुए छोटा विग्रह, तो उन्होंने श्यामानंद पंडित को दिया।

कि तुम इनकी सेवा पूजा करना, और आज से तुम्हारा नाम है श्यामानंद पंडित। और कहा, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये बात तुम किसी को नहीं बताना। तो श्यामानंद पंडित ने ये बात किसी को नहीं बताई। उनका जो तिलक था वो परमानेंट तिलक था, वो एकदम नहीं मिटता था। और उनके अन्य लोगों ने सोचा कि ये ना अपने गुरुदेव को छोड़ चुका है, अपने संप्रदाय को छोड़ चुका है, और इस तरह से उसको उनके ऊपर ना लोग थोड़ा लालछन लगाने लगे। पर श्यामानंद प्रभु कुछ नहीं बोले। ये बात उनके गुरुदेव को भी पता चली, हृदय चैतन्य को। हृदय चैतन्य बंगाल से वृंदावन आए और उन्होंने श्यामानंद प्रभु को बहुत डांटा, पर तब भी श्यामानंद प्रभु ने ना इस बात का उजागर नहीं किया। उधर राधा रानी श्यामानंद प्रभु पंडित के जो गुरुदेव हैं हृदय चैतन्य, उनके स्वप्न में आए और उनसे कहा कि मैंने ही श्यामानंद को कहा था यह बात किसी को ना बताए, मैंने ही उसे यह विग्रह और यह तिलक दिया है।

मंदिर में मध्य में बड़े विग्रह श्री श्री राधा श्याम सुंदर के हैं, जिन्हें श्रील बलदेव विद्याभूषण द्वारा स्थापित और पूजित किया गया। दाहिने ओर श्री श्री लाला लाली, जिन्हें छोटे श्री राधा श्याम सुंदर भी कहे जाए हैं, वे श्रीमती राधा रानी जी ने अपने हृदय कमल ते बिनकू प्रकट करो और श्री श्याम सुंदर जी के यह दिव्य विग्रह को श्री श्यामानंद प्रभु ने बसंत पंचमी के दिना सन 1578 में पूजा अर्चना हेतु भेंट करो।

भरतपुर के राजा को अपने खजाने में उपलब्ध अमूल्य रत्नन में श्रीमती राधा रानी जी को स्वयंभू विग्रह प्राप्त भयो। वे श्रीधाम वृंदावन में श्यामानंद प्रभु के कुंज में आए और श्री श्याम सुंदर जी के संग बिन को विवाह संपन्न करायो। राजा ने दिव्य युगल के काजे या भव्य मंदिर को निर्माण करवायो और श्यामानंद प्रभु की भूमिगत पूजा कुटिया ते या मंदिर में स्थानांतरित है गए। बाई ओर राधा कुंज बिहारी को दर्शन है। इन्हें श्री ब्रजानंद देव ने नंदग्राम में पायो और उनके बाद इन देवतान को श्रील बलदेव विद्या

भूषण द्वारा वृंदावन में लायो गयो और श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर में सुशोभित करो गयो। वैसे तो प्रमुख रूप से यहाँ वर्ष भर में विशेष उत्सव ठाकुर जी के मनाए ही जाए हैं, विशेष मनोरथ हुए हैं, किंतु बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से यहाँ उत्सव आयोजित किया जाए है। यह प्रकार थी यह मंदिर भक्तन के मनोरथन को पूर्ण करने वालों और उनके चित्त को प्रसन्नता प्रदान करने वालों है।

ब्रज की माटी तोहे प्रणाम। अभी जो है आप कार्यक्रम जो सुन रहे हते और या में आज हम सबन ने जो है बढ़िया सी जानकारी लेनी श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर वृंदावन के बारे में। और प्रस्तुति हती रश्मि शर्मा के, प्रस्तुत करता हते विजय सिंह नौलखा। और अब साथियों सुन ले एक और लोकगीत।

0: तो शालिनी शर्मा की आवाज़ में आप सुन रहे थे अभी इस लोकगीत को, जय लोकगीत के संग आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम यहीं विश्राम ले है। तो आप सबन को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रजमाधुरी FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक

0: कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
4: India is accelerating towards universal health coverage.
5: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक

0: स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध
1: है।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
0: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत न हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
5: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरे तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
2: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
6: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
7: IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
2: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
8: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द, नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख, दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
2: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing

जी हाँ, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय

0: पत्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: RBI कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

ये आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी साहब की फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस के इस गीत में। गीतकार थे शैलेंद्र, संगीत शंकर जयकिशन का था। साथियों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आपने सुना अभी चोर चोर फिल्म के इस गीत को एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाज़ में लिखा था एल मिश्रा ने और संगीत दिया था एआर रहमान ने। साथियों, अगला गीत सुनने से पहले एक सूचना सुन लीजिए। आपके विशेष अनुरोध पर आपके पत्रों एवं फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम आपके पत्र आपके फोन का प्रसारण पुनः प्रारंभ कर रहे हैं हम। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 12:30 से होगी। कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा रविवार दोपहर 1:30 पर। श्रोताओं, आपको हमारे केंद्र के कार्यक्रम कैसे लगते हैं? आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में क्या बदलाव चाहते हैं? तो ये सभी आप अपने सुझाव टेलीफोन नंबर 25-30-135 पर फोन करके या फिर पत्र के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता एसटीडी कोड 0565 अवश्य लगाएं और पत्र भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम आपके पत्र आपके फोन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मथुरा वृंदावन निकट गायत्री तपोभूमि मथुरा पिन कोड है 28100 3। सूचना समाप्त हुई और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दो झूठ, आपने सुना भी इस फिल्म के गीत को, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज में, लिखा था विट्ठल भाई पटेल ने और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। और अब साथियों आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर के गाए फिल्म धनवान के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं आज कार्यक्रम हिंदी वार्ता के अंतर्गत विकेश निझावन से ली गई ये बातचीत। विषय है कहानी जीवन का यथार्थ है और इस विषय पर इनसे बात कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: जीवन किसी एक घटना का नाम नहीं है, जीवन चलने का नाम है। एक समय था जब कहानियाँ जीवन को संवारने में, जीवन में शिक्षा देने में, संस्कारों के संवाहक के तौर पे हमारे और आपके बीच में कही जाती थी, सुनी जाती थी, पढ़ी जाती थी। इतिहास इस बात का गवाह है, इस बात का साक्षी है कि कहानियों ने जीवन को बदलने में बहुत बड़ा योगदान निभाया है। और जब साहित्य में कहानियाँ आती हैं तो वो सीख भी लेकर के आती हैं, संस्कार भी लेकर के आती हैं, और समय और काल की उस अवधारणा को भी हमारे सामने रखती हैं जिसको जानना और समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो कहानी हमारे जीवन की, संस्कारों की संवाहक कैसे हो सकती है, ये आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक वरिष्ठ साहित्यकार विकेश निझावन साहब हैं। मैं निझावन साहब, आपका अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और जानना चाहता हूँ कि साहित्य से जुड़ाव के साथ साथ जो कहानियों से आपका नाता जुड़ा, वो कैसे आपके जीवन में चल के आया? वो रोचकता के साथ कोई घटना विशेष रही हो, या फिर एक आपका स्वाभाविक उसके साथ जुड़ाव था, ये हमारे श्रोताओं के लिए बताएं।
2: जैसा कि आपने भी ये बात कही कि कहानियाँ हमारे जीवन से, साहित्य से, हमारे संस्कारों से ही हमें मिली हैं।
1: जी
2: मुझे अपना ही याद आ रहा है, छोटी उम्र में से ही, जब मेरा ख्याल मैं 6वीं 7वीं कक्षा में पढ़ता था, मैंने साहित्य काफ़ी पढ़ा छोटी उम्र में ही। घर में बड़े भाई बहन थे, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें सभी साहित्य से जुड़े हुए थे, तो मैंने भी उस उम्र में पढ़ना शुरू किया। साहित्य काफ़ी मन में बैठा मेरे। हालांकि शुरुआत मैंने छोटी छोटी कविताओं से की थी, लेकिन जल्दी ही मेरा रुझान कहानी की तरफ मुड़ा। कुछ दिग्गज लेखक जैसे मुंशी प्रेमचंद, उस समय निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, धर्मवीर भारती, इन लेखकों को मैंने बहुत पढ़ा। बस वो मेरे अंदर बैठते चले गए
1: जी
2: और अनायास मैं कहानी की तरफ मुड़ा। और सबसे बड़ी बात जो मुझे याद आ रही है, 7वीं क्लास में हमारे इंग्लिश के सिलेबस में रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ कहानियाँ थी जो हमारे अध्यापक उसका अनुवाद करते थे, हम सुनते थे, तो उन्होंने बहुत छुआ मेरे को। मुझे याद आती है टैगोर जी की कहानी द पोस्ट मास्टर, होम कमिंग और काबुली वाला। इन कहानियों ने बहुत प्रभावित किया। मेरी कलम जब कहानियों की तरफ मुड़ी तो एक दो छुटपुट कहानियाँ लिखी मैंने, लेकिन जल्दी ही मैंने एक लंबी कहानी लिखी जाने और लौट आने के बीच। मेरी वो कहानी सन 1973 में सारिका पत्रिका में छपी थी। उन दिनों कमलेश्वर उसके संपादक थे और सारिका बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका थी उन
1: पत्रिका
2: दिनों,
1: थे।
2: और उस कहानी के प्रकाशन होते ही मेरा नाम मेरी कहानी चर्चा में आ गई। और वो कहानी कम से कम 8-10 भाषाओं में अनुवाद हुई और प्रकाशित हुई।
1: यानी आप कहानी पढ़ते पढ़ते एक पाठक से खुद एक कहानीकार हो गए, एक
2: जी
1: साहित्यकार हो गए, और उस
2: जी
1: जगत में आप का पदार्पण हुआ जिससे आप बचपन से जुड़े हुए थे। एक कहानीकार के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब एक कहानी का जन्म होता है, एक साहित्य की भी जैसे कहते हैं कि एक प्रसव पीड़ा होती है, तो कहानी जब कोई लेखक लिखता है, कोई साहित्यकार जब उसको पाठकों के लिए लेके आता है, तो उसकी जो पृष्ठभूमि होती है, वो जो एक प्लॉट जो चुराता है, वो कहीं से कोई एक घटना, कोई एक दृश्य या कोई भी एक विचार जब उसके अंदर खोदता है, तो उसको एक मूर्तिकार के तौर पे जब उसको गढ़ता है कहानी को, उसके चाहे उसके पात्र हो, चाहे उसकी पृष्ठभूमि हो,

0: चाहे उसका संवाद हो या फिर वो पूरा एक मैसेज जो देना चाहता है उसमें, तो कहाँ से शुरुआत होती है उसकी उसमें?
1: देखिए, कहीं ना कहीं कहानी का जो भाव होता है या उसका कथानक सारा तो नहीं हम कह सकते, जो उसकी विशेष घटना होती है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ी होती है। कहीं ना कहीं कोई दृश्य, कोई बात, कोई घटना हम देखते हैं, सुनते हैं, हमारे अंतर्मन को छू जाती है तो हम कहानी बुनने बैठते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि उसका अंत या उसका क्लाइमैक्स हमारे जहन में हो
0: उस समय हो जब
1: उस
0: लिखना
1: समय हो।
0: शुरू करते
1: हाँ,
0: हैं।
1: और कहानी ज़बरदस्ती नहीं लिख सकते हम। कहानी भी एक कविता की तरह है। अच्छी कहानी अपने आप बहती है, कलम किधर
0: जब
1: चली जाए।
0: शुरुआत होती है तो वो कहाँ जाके एक नदी की तरह,
1: हाँ, जो
0: वो
1: विशेष घटना है वो तो मन में होती है,
0: जी
1: हम
0: जी
1: उसको उठाते हैं, लेकिन कलम आगे अपने आप चलती है, पात्र अपने आप बोलने लगते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: कहानी तभी सजीव बनती है। और इसी तरह मैं अपनी कहानी के बारे में कहूँ, जैसा कि पहली कहानी जाने और लौटाने के बीच शुरुआत मैंने की और उसका मेन मुद्दा मेरे सामने था, बट वो कई समस्याओं से जुड़ती चली गई। दहेज समस्या, नारी समस्या, जीवन की जो प्रताड़नाएं हैं हम सहते हैं, और क्लाइमेक्स के बाद अंत अनायास ही हो जाता है कई बार कहानी के मुताबिक।
0: तो आपकी जैसे कहानियों का जो संदर्भ रहता है, आपकी जो कहानियों का
1: हाँ
0: दायरा
1: जी,
0: रहा, वो क्या समाज रहा, समाज के संबंध रहे, उसका अंतर्द्वंद रहा, कि जैसे आपने कहा कि आपकी कहानी में दहेज भी चल करके आ गया, आपकी कहानियों का जो संदर्भ है वो कहाँ से आप
1: देखो,
0: लेते?
1: कहानियों की शुरुआत मेरी पारिवारिक मुद्दों से लेके ही हुई थी, पारिवारिक रिश्ते, लेकिन समाज की कई स्थितियों को मैंने देखा, महसूस किया। मैं सोचता हूँ कहानी एक यात्रा है, बाहर से भीतर तक की और फिर भीतर से बाहर तक।
0: बाहर तक की
1: हम
0: जी
1: जो देखते हैं उसको महसूस करते हैं, महसूस करते हुए हमारी अंदर की यात्रा, जो द्वंद्व चलता है, विशेष रूप से मैं उसे कहानी मानता हूँ। जो हमारा बाहर का है वो सब दिखाई देता है।
0: मतलब मेरी अपने मन की पीड़ा, मेरे अपने मन की घटनाएं, मेरे अपने जो तजुर्बे हैं, वो समाज से जब सरोकार बिठाते हैं या
1: बिल्कुल,
0: समाज को उसे जोड़ते हैं, वो
1: हाँ
0: कहानी होती है
1: बिल्कुल, वो ही होती है।
0: जी।
1: और मैंने बहुत अब तक लगभग 300 कहानियां लिखी हैं, मेरी 11 पुस्तकें कहानियों की छप चुकी हैं, और मैंने बहुत विषय उठाए, सामाजिक व्यवस्था को लेके भी लिखा। मेरी काफ़ी कहानियाँ पुरस्कृत हुई राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर।
0: यहाँ मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि शुरुआत में जैसे पारिवारिक
1: हाँ
0: संदर्भ आपके रहे, भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो जनमानस है, वो हमेशा से, बल्कि हम तो अपने देश की और समाज की बात नहीं करते, हम तो सारी दुनिया को ही अपना देश और समाज मानते हैं। समेकित जीवन यहाँ रहा है, समेकित सोच रही है, सबके भले कल्याण की बात हम करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो वो सभ्यता और संस्कृति आज कहीं संकीर्णता की ताप जा रही है। हम अपने स्वार्थों में सिमटते जा रहे हैं, अपने दायरों में सिमटते जा रहे हैं। तो जो हमारी एक बड़ी थाती थी संस्कारों की, सामूहिकता की, बल्कि पंजाबी संस्कृति में तो साझा चूल्हा भी चलता है उसमें, तो जब हम साझेपन की बात करते हैं, तो अब जो छूट रहा है हमारे, चाहे वो संस्कार छूट रहे हैं, चाहे हमारे अपने मूल्यों की बात हम करें, वो छूटते जा रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें कई बार हमको अलग होने के लिए विवश कर देती हैं। ये बात अलग है कि कई बार रोजी रोटी और जीविका हमको दूर ले जाती है, लेकिन ये बात भी है कि आज छोटी सोच और स्वार्थ भी इस अलगाव को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये जो बिखराव है, कहीं आपकी उन कहानियों में आया, या कभी ऐसी कोई कहानी बनी हो जिसमें इन चीज़ों को आपने भरोया हो?
1: निस्संदेह है, ये बिखराव तो आया ही आया है। अब शुरू में जो कहानियाँ लिखी
0: जी
1: उनमें संबंध, रिश्ते सब जुड़े हुए होते थे, लेकिन धीरे धीरे समाज में, परिवार में, व्यवस्था में ये बिखराव आए, तो स्वभावतः वो कहानियों में भी वो उतरते चले गए। कहानियां जीवन का आईना ही है,
0: जी जी,
1: जो हम जी देखते हैं, जो जी रहे हैं, जो महसूस करेंगे वही हम लिख पाएंगे।
0: तो अब कुछ समाधान आपको ऐसा लगता है कि अब

0: हम इस दौड़ में दौड़ तो पड़े हैं, लेकिन कोई पड़ाव ऐसा आएगा जहाँ हम सब रुक के सोचेंगे कि नहीं हम ऐसी दौड़ दौड़ रहे हैं जिसका कोई ना परिणाम है ना कोई
1: देखिए,
0: अंत
1: कई
0: है।
1: बार हम सोचते हैं कि हम एक रास्ता दिखाएं कहानी में, एक आदर्शवादिता बताएं पाठक को, पर ज़रूरी नहीं है आज का पाठक उसको माने। मेरा ये विशेष रहा है कि मैं कहानियों में जो हम देख रहे हैं उसको दिखाएं पाठक को, ताकि वो रास्ता अपने आप चुने। एक गलत चीज़ वो देखेगा तो अपने आप वो उसको महसूस करेगा। हमारे रास्ता दिखाने से शायद वो नहीं मानेगा। मैं चाहता हूँ वो खुद माने, उसको पहचाने कि वो कहाँ गलत है। समाज, व्यक्ति, परिवार में हर जगह यही स्थितियाँ बनी हुई हैं। परिवार टूट रहे हैं, उसका असर समाज पे हो रहा है, पूरी व्यवस्था पे हो रहा है।
0: जी, आप पंजाब के और हरियाणा के उस इलाके में रहते हैं जहाँ देश की आज़ादी के समय बंटवारे का भी
1: हाँ
0: एक
1: जी,
0: दंश लोगों ने झेला, वहाँ से लोग चल करके आए, तो आपकी किसी कहानी या साहित्य की किसी रचना में वो चीज़ भी उभर करके आई
1: हाँ
0: जो
1: जी,
0: एक विस्थापन की एक दर्द था, एक समस्या थी, हालांकि अब तो समय काफ़ी गुजर चुका है और समय ने उन चीज़ों को भर भी दिया है।
1: जब माता पिता से सुनते थे बाहर से, जब विभाजन के समय में उन्होंने कैसी स्थितियां झेली, वो यहाँ आए कैसे स्थापित हुए, उसमें मैंने बहुत कुछ दिया है,
0: जी,
1: तो मुझे लगता है कि वो
0: पाठकों को वो अच्छा लगेगा। चलते चलते मैं ये जानना चाहूंगा कि कहानी हमारे यहाँ दादा दादी के माध्यम से, नाना नानी के माध्यम से, बतकही के रूप में, बहुत सारे क्षेत्रीय उसमें उसके नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन कहानी जीवंत रही, कहानी लोग कहते रहे, कहानी के माध्यम से बातें आगे होती रही। जब भी लोग बच्चे ही नहीं बल्कि बुजुर्ग लोग चौपालों पे और अलाव के पास बैठते थे तो वहाँ भी बतकही शुरू हो जाती थी, तो एक इतना अभिन्न अंग आज हमसे कहीं छूटता जा रहा है। बल्कि
1: बिल्कुल
0: कोई बच्चा भी अगर हमसे ये कहता है कि मुझे कहानी सुना दो तो शायद हम सुना नहीं पाते, झिझक जाते हैं, जबकि ये पहले एक स्वाभाविकता थी
1: बहुत
0: और उसके माध्यम से
1: स्वाभाविकता है।
0: हम बहुत सारी बात भी कह देते थे।
1: अब जैसे मैंने बताया कि कहानियाँ या साहित्य पढ़ के मैंने लिखना शुरू किया,
0: जी
1: सिर्फ ऐसा नहीं है,
0: हाँ
1: माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, हमने बहुत कुछ सुना। हमारी बड़ी बुआ थी, वो हमें बहुत कहानियाँ सुनाती थी। वो सब अंतर्मन में, वो ही संस्कार हमें
0: जी
1: मिले,
0: जी
1: हमारे अंदर बैठे। लेकिन आज की पीढ़ी को हम सुना ही नहीं पाते, आज की पीढ़ी सुनना ही नहीं
0: बल्कि जो नई
1: चाहती।
0: पीढ़ी आ रही है उसको जब हम कहते हैं कि पैर छुओ, हाथ जोड़ के नमस्ते करो, मतलब उन चीजों को बोलना पड़ता है,
1: हमें कहना
0: उनको
1: पड़ता है
0: कहना
1: बार बार।
0: पड़ता है।
1: हमारे समय में नहीं कहते थे माता पिता, हम खुद सीख जाते थे।
0: तो कहानी के माध्यम से अगर शायद हम संस्कारों को आने वाली पीढ़ी में रोपें तो हमारा काम हो सकता है, फिर शायद
1: बहुत
0: हमें ये कहना नहीं पड़ेगा कि बेटा नमस्ते करो या पैर
1: जी,
0: छू लो।
1: बिल्कुल नहीं कहना पड़ेगा। कहानी के माध्यम से हम बहुत कुछ दे सकते हैं। हम आज भी खुद ले रहे हैं, अभी तक ले रहे हैं, और बच्चों को तो शुरुआत है, उनको हम दे सकते हैं।
0: जी, कुछ और कुछ कहना चाहें श्रोताओं से चलते चलते में।
1: मैं नवोदित लेखक को यही कहना चाहूँगा कि कहानी लिखे और बड़ी ईमानदारी से लिखे, कुछ कहने से घबराएं नहीं, डरे नहीं। जो सच्चाई है, मन की बात है, उसको कहानी में लाएं।
0: तो शायद वो सुनने वाले को भी अपील करेगी,
1: बिल्कुल
0: उसको भी
1: बिल्कुल
0: जोड़ेगी। तो श्रोता बंधु, आप थे श्री बीकेश निजामन साहब जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बहुत सारी राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में पिछले 30 साल से लिखते रहे हैं, आपकी कहानियाँ आपके परिचय को देती हैं। आप आए और जो जानकारी और जो अनुभव आपने हमारे श्रोताओं के साथ बांटे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
2: तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे ये भेंट वार्ता विकेश निझावन से ली गई, विषय था कहानी जीवन का यथार्थ है, और इस विषय पर इनसे भेंट कर रहे थे ओपी सिंह।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 9:15 होने का है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अगला प्रसारण।

0: महोबा जिले की हलचल, आलेख और स्वर है अमित श्रोतीय का।
1: महोबा जिलाधिकारी गजल भरद्वाज की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता तथा आगामी कार्य योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक के दौरान डीएम ने कहा कि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि टीकाकरण, जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान कार्ड, मातृ शिशु स्वास्थ्य, संक्रामक रोग नियंत्रण एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। डीएम ने अस्पतालों में साफ सफाई, दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकों की नियमित उपस्थिति तथा मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की भी गहन समीक्षा की। महोबा में सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी और गाली देने के मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने सांसद और उनके अज्ञात समर्थकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध प्रदर्शन कर सांसद का पुतला फूंका था और जिला मीडिया प्रभारी की तहरीर के बाद यह कार्रवाई हुई। सपा सांसद का वीडियो वायरल होने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए सांसद ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने दावा किया कि वायरल वीडियो पूरी तरह से फर्जी है और एआई तकनीक के जरिए उनके शब्दों से छेड़छाड़ कर उन्हें बदनाम करने की साजिश रची गई है। महोबा जनपद के प्रसिद्ध देसावरी पान को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जिलाधिकारी गजल भरद्वाज ने राठ रोड स्थित एपीओ जैविक बाजार का फीता काटकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विशेष रूप से देसावरी पान से जुड़े नवाचारों को सराहा और पान उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने पर जोर दिया। डीएम ने मयंकता चौरसिया द्वारा स्थापित अच्युतम ऑर्गेनिक एंड हर्बल्स पान प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया। इस प्रतिष्ठान में देसावरी पान से निर्मित मुखवाश, पान लड्डू, पान शरबत, पान चॉकलेट सहित कई आकर्षक उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। डीएम ने नवचारों को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को ब्रांडिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए बाजार में नई पहचान दी जा सकती है। उन्होंने जैविक सब्जियों एवं अन्य उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि सभी एफपीओ एवं स्वयं सहायता समूह अपने उत्पाद यहां विक्रय करेंगे तथा जिनके उत्पादों का जैविक प्रमाणीकरण नहीं हुआ है वे शीघ्र प्रक्रिया पूर्ण करा लें। महोबा के इस जैविक बाजार में अब तक कुल 12 एफपीओ एवं स्वयं सहायता समूहों को दुकानें आवंटित की जा चुकी हैं। यह बाजार नगर पालिका परिषद महोबा द्वारा जिलाधिकारी के नेतृत्व में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में उद्यान विभाग द्वारा स्थापित हाईटेक नर्सरी किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस आधुनिक नर्सरी में तैयार किए गए उच्च गुणवत्ता वाले तरबूज और खरबूज के पौधे लगाकर किसान भारी मुनाफा कमा रहे हैं। महोबा के जैतपुर में स्थापित यह हाईटेक नर्सरी किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यहाँ की प्रमुख विशेषताएं और किसानों को होने वाले फायदे इस प्रकार हैं। जिला उद्यान अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि पारंपरिक खेती के मुकाबले तरबूज और खरबूज की बागवानी में कम समय में प्रति एकड़ लाखों रुपए तक का मुनाफा कमाया जा सकता है। हमारे यहाँ ऑटोमेटिक मशीनों और आधुनिक तापमान नियंत्रण प्रणाली से यहाँ हाईब्रिड और रोग मुक्त पौधे तैयार किए गए थे जिससे किसानों को अब अच्छा मुनाफा हुआ है। उन्होंने कहा
2: तरबूज की और खरबूजा की खेती लगभग 1400 हेक्टेयर की जाती है। एक हेक्टेयर में आराम से 3-4 लाख रुपए किसानों को 3-4 महीने मिल जाती है। कुछ किसान ने बताया कि 8-10 किलो के तरबूज तैयार है और किसान बड़े खुश हैं कि यहाँ का जो पौधा है अच्छा है और उत्पादन अच्छा हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना देश के करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत पात्र लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। महोबा जिले में कुल 4,25,310 आयुष्मान लाभार्थियों के सापेक्ष अब तक 2,79,612 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। जिलाधिकारी गजल भरद्वाज ने शेष पात्र लाभार्थियों से जल्द अपना आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पात्र लोग जिला अस्पताल के महिला एवं पुरुष आयुष्मान कक्ष सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचकर आयुष्मान मित्र की सहायता से निशुल्क कार्ड बनवा सकते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में CHO, ANM एवं आशा संगिनी द्वारा भी यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि आयुष्मान कार्ड बन जाने से जरूरतमंद परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता मिलेगी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।

0: महोबा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मुजफ्फरनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रणवीर सिंह सैनी का।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में इसी महान नुमाइश ग्राउंड के मैदान में एक रोजगार मेले का उद्घाटन किया, जिसमें लगभग 200 कंपनियों ने भाग लिया और भारी संख्या में युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र भी बांटे गए। सांकेतिक रूप से लगभग 10 युवक युवतियों को मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिए। कार्यक्रम में केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी शामिल रहे। श्री चौधरी ने मंच से बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कराए जा रहे देश हित और प्रदेश हित के विकास कार्यों की जमकर सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर को नगर निगम का दर्जा दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने गन्ना किसान, गन्ने का भुगतान, सुगर मिल के साथ साथ किसानों की जमकर तारीफ की। चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया। श्री योगी ने कहा कि वह कभी जातिवाद के पक्षधर नहीं रहे। मुजफ्फरनगर जिले में बीते एक माह से लगातार आंधी तूफान और ओलावृष्टि के कारण कई पेड़ उखड़ कर गिर गए। वहीं ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। विद्युत आपूर्ति भी जनपद में आंधी तूफान से लगातार बाधित रही। उत्तर भारत की पौराणिक तीर्थस्थली मुजफ्फरनगर के सुखतीर्थ स्थित हनुमत धाम के पीठाधीश्वर स्वामी केशवानंद जी महाराज का बीमारी के चलते निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे। उनके निधन से तीर्थ के साधु संतों में शोक की लहर दौड़ गई। स्वामी केशवानंद जी महाराज को हनुमत धाम के प्रांगण में भू समाधि दी गई। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से आए साधु संतों के साथ बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी मौजूद रहे और उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा मुजफ्फरनगर में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भाजपा शासित सभी राज्यों में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। रेलवे के दोहरीकरण, रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यकरण और विद्युत आपूर्ति में बड़े स्तर पर सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। श्री शर्मा ने कहा कि वर्ष 2029 में भाजपा की सरकार बनने के बाद महिलाओं की राजनीति में अधिक भागीदारी देने के लिए महिला आरक्षण से जुड़े बड़े कदम उठाए जाएंगे, जिससे महिलाओं को 50% से अधिक प्रतिनिधित्व मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट विकास की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 22,000 से अधिक वाद प्रकरणों को निस्तारण किया गया। इस दौरान जिला जज ने कहा कि लोक अदालत विवादों को सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित करने का बड़ा माध्यम है। यह त्वरित न्याय को अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। इस दौरान मोटर दुर्घटना के 56 वादों का निस्तारण कर 6,11,00,000 रुपए प्रतिकर प्रदान किया गया। विभिन्न न्यायालयों के 6,190 सामान्य फौजदारी वादों का निस्तारण कर 7,27,000 रुपए का अर्थदंड वसूला गया। 33 दीवानी वादों का निस्तारण किया गया। 138 NIA एक्ट के 31 वादों के निस्तारण में 2,97,00,000 रुपए का अर्थदंड वसूला गया। राजस्व के 15,876 मामलों का निस्तारण कर 4,54,00,000 रुपए का राजस्व वसूला गया। विभिन्न बैंकों के द्वारा 384 बैंक ऋण मसलों का निस्तारण कराकर लगभग 5,62,00,000 रुपए का सेटलमेंट किया गया। पारिवारिक न्यायालयों के द्वारा 64 मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। लोक अदालत के नोडल अधिकारी अपर जिला जज रवि कुमार दिवाकर ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत विवादों को सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित कराने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। मुजफ्फरनगर जिले में इस समय स्वय जनगणना का कार्य चल रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि 7 मई से प्रारंभ होकर 21 मई 2026 तक होने वाली स्वय जनगणना में जनपद के सभी नागरिक स्वयं की जनगणना पोर्टल पर अपनी सूचनाएं दर्ज कराने का कार्य करें। मुजफ्फरनगर में महिला आरक्षण बिल पास न होने पर विशाल शक्ति प्रदर्शन किया गया। हिंद मजदूर किसान समिति के बैनर तले जुटी हजारों महिलाओं ने पैदल मार्च निकालकर संदेश दे दिया कि अब देश की आधी आबादी अपने हक के लिए जाग चुकी है। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर नारे लगाती ये महिलाएं प्रकाश चौक पहुंची, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा एवं राष्ट्र हित में किए गए आह्वान के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अपने निजी गाड़ी के स्थान पर मेट्रो का उपयोग किया। कपिल देव ने गोरखपुर से लौटते समय निजी वाहन का उपयोग न करते हुए दिल्ली हवाई अड्डे से मोदीपुरम तक मेट्रो एवं रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के माध्यम से यात्रा कर जनमानस को ऊर्जा संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा का प्रेरणादायी संदेश दिया।
0: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

0: बजने दे जरा।
1: जी हाँ, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम आबो हवा के अंतर्गत। जानकारी विषय है वृक्षारोपण और पर्यावरण, और जानकारी दे रहे हैं इस विषय पर राजीव कपूर।
3: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के विकास के दौर के अंदर आदमी ने अपनी अंधी भाग दौड़ के अंदर पर्यावरण का काफी नुकसान किया है विकास के नाम पर, और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये हुआ है कि विकास के नाम पर हमने वन क्षेत्र थे उन पर धीरे धीरे अतिक्रमण कर वहाँ विकास के कार्य करवाने शुरू कर दिए हैं। एक लिमिट तक तो ये ठीक था, परंतु जैसे जैसे हमारे वन क्षेत्र घट रहे हैं हमारा पर्यावरण असंतुलन बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण असंतुलन बिगड़ने से हम देख रहे हैं कि कहीं पर बाढ़ आ रही है तो कहीं पर सूखा पड़ रहा है। इन सब से बचाव के लिए जो एकमात्र उपाय है वो है वृक्षारोपण किया जाना। हम सब पर्यावरण की रक्षा एवं प्रदूषण से बचाव के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। हम वृक्षारोपण कहाँ कर सकते हैं यह एक समस्या है, क्योंकि सबके पास खेत नहीं होते। आप अपने घर के पास, अपने दफ्तर के पास, अपने स्कूल के पास, जहां पर भी संभव हो वहां 5 से 10 वृक्ष अवश्य लगाएं। वृक्ष लगाएं ही नहीं, उन वृक्षों की लगातार सुरक्षा भी करें जब तक कि वो इतने बड़े ना हो जाएं कि उनको आगे कोई नुकसान हो सके। अब प्रश्न आता है कि हम वृक्षारोपण करें तो किन पौधों का करें। हमको वृक्षारोपण उन्हीं पौधों का करना चाहिए जो कि हमारे जलवायु में तालमेल रखते हों। यहाँ हमको नीम, बड़, पीपल, फलदार वृक्ष आदि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि ये सभी वृक्ष हमारे जीवन के लिए आवश्यक प्राणवायु तो देते ही हैं, अन्य कई सारे पशु पक्षियों की शरण स्थली भी बनते हैं। एक बड़ या पीपल का पेड़ कई हजारों पक्षियों का शरणगाह होता है, और उस वृक्ष के नीचे सुबह और शाम जब हम पक्षियों की मधुर वाणी सुनते हैं तो ये हमारे को एक बहुत सुकून देती है। अगर आपके पास खेत हैं तो खेत की मेड़ पर आप अधिक से अधिक पौधे लगाएं, जिससे कि उन पर पक्षी बैठ सके, क्योंकि पक्षी जितना अपना दाना खेत में से लेते हैं उससे ज्यादा फायदा हमारे को उस खेत में चूहों आदि से होने वाले नुकसान से बचा करके हमको वापस भी दे देते हैं। इसी प्रकार गाँव में भी जहाँ हमारे कुएं आदि के आसपास वृक्ष लगे होते हैं वहाँ आप पाएंगे कि वहाँ का तापमान और गांव का तापमान जहाँ बस्ती बसी है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। हमारे विकास के साथ साथ हम वन क्षेत्र को कम करते जा रहे हैं, उससे बचाव का एकमात्र उपाय ये है कि हम अगर अपने किसी भी विकास के काम के लिए, मकान बनाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, किसी अन्य कार्य के लिए अगर हम वृक्ष काटते हैं तो जितने हमने काटे हैं उससे ज्यादा कम से कम दुगने पेड़ हम अवश्य वृक्षारोपण करें, और पर्यावरण में जो असंतुलन आ रहा है उसको रोकथाम करने की अपना प्रयास करें। अतः पुनः निवेदन है कि आप सब अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और पर्यावरण को बचाने में अपना सहयोग प्रदान करें।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा के अंतर्गत। ये जानकारी विषय था वृक्षारोपण और पर्यावरण, जानकारी दे रहे थे राजीव कपूर। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: आज इस कार्यक्रम को आपके समक्ष लेकर आ रही हैं सुरभि शर्मा।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: संयोजक हैं ओपी सिंह।

0: आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम में, जिसका करते हैं आप बड़ी बेसब्री से इंतजार। इस कार्यक्रम में न केवल दी जाती है आपको सही और सटीक जानकारी, करवाया जाता है प्यारे प्यारे गीतों से आपका मनोरंजन भी। श्रोता, हर दिन एक नई शुरुआत करें। जो बीत गई सो बात गई। अपने जीवन में आने वाले हर दिन से एक नई सीख लें। पीछे की तरफ मुड़कर बिल्कुल ना देखें। हर दिन एक नई शुरुआत एक नए उमंग और उल्लास के साथ आपके समक्ष आता है। उसको स्वीकार करें, अपनी गलतियों से सबक लें और एक नई शुरुआत करें, और ये सोच लें कि आप जीवन में आगे ही बढ़ेंगे। अब सुनवाते हैं हम आपको ये उपयोगी जानकारी, क्योंकि आज है विश्व मधुमक्खी दिवस।
1: आप जानते हैं आज है विश्व मधुमक्खी दिवस, यानी कि एक दिन ऐसा जब हमें मधुमक्खी के बारे में जानकारी मिलती है, उनका क्या महत्व है किसी के जीवन, मानव जीवन में। मधुमक्खी एक छोटा सा प्राणी, कहीं ना कहीं इसका जो महत्व हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में है, एक दिवस ऐसा क्यों मनाया जाता है, इन्हीं सारे विषय को लेकर हमने बातचीत करी। हमारे साथ है,
2: नमस्कार है साथियों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा हूँ, जो भारतीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत।
1: सर, आज विश्व मधुमक्खी दिवस, विश्व मधुमक्खी दिवस, मधुमक्खी एक बहुत ही छोटा सा जीव है हमारी प्रकृति का, इस दिवस से हमारा क्या अभिप्राय है?
2: हाँ, देखिए साथियों, ये जो 20 मई का जो आज का दिन है, ये पूरे विश्व में विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यह दिन हमें मधुमक्खियों और अन्य परागण करने वाले जीवों के महत्व को समझाने के लिए समर्पित है। मधुमक्खियाँ केवल शहद बनाने का कार्य नहीं करती है, बल्कि वो जो कृषि उत्पादन होता है, जैव विविधता होती है और पर्यावरण संरक्षण है, उसकी एक तरह से आधारशिला है। और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि भाई इसका क्या अभिप्राय है, तो आज के दिन लोगों को मधुमक्खियों के महत्व के प्रति जागरूक करना तथा यह समझाना कि यदि मधुमक्खियां सुरक्षित रहेगी तो हमारा भोजन, पर्यावरण और भविष्य भी सुरक्षित रहेगा, ये इस दिवस का महत्व है। आज दुनिया में लगभग 75% खाद्य फसलें किसी न किसी रूप में परागण पर निर्भर है। फल, सब्जियां, तिलन, मसाले और कई औषधीय पौधों की जो उत्पादकता है वो मधुमक्खियों की वजह से ही बढ़ती है। यदि मधुमक्खियां ना हो तो खाद्य उत्पादन, पौधों की विविधता और प्राकृतिक संतुलन पर गंभीर संकट आ सकता है, इसलिए इस दिवस को पूरे विश्व में मनाया जाता है।
1: सर, आप बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, परागण। हमारे एक सीधे साधे व्यक्ति के लिए इसका क्या मतलब है?
2: जी देखिए, परागण का मतलब ये होता है कि हमारे प्रकृति के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं, तो वो क्या होता है कि जैसे उसमें मेल और फीमेल होता है, जब उनकी क्रॉसिंग होती है तभी बीज बनता है, इसको हम परागण कहते हैं। यानी कि जो मेल पार्ट थे फीमेल पार्ट के ऊपर में, तो ये क्या होता है कि जो यहाँ के एंथर्स होते हैं वो एक फूल से दूसरे फूल पे ले जाने के लिए, जैसे मधुमक्खी एक फूल पर बैठती है तो उनके पैरों पर वो चिपक जाते हैं, फिर वो जब दूसरे फूल पे चले जाती है तो वो वहां पर ट्रांसफर हो जाते हैं, इसको ही हम पर परागण बोलते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही पौधे के ऊपर होते हैं। मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो जो अलग अलग भी पौधों के ऊपर होते हैं, तो वैसे तो हवाओं से भी होता है, लेकिन मधुमक्खियों का बहुत रोल रहता है कि ये चूंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर, आपने देखा होगा फूलों पर मंडराती रहती है, तो वहां से वो एक मेल पार्ट ले जाके फीमेल पार्ट पे जाके जो क्रॉसिंग कराते हैं उसे कोई परागण बोलते हैं, जिससे बीज बनता है और इससे क्वालिटी में भी सुधार होता है और जो उत्पादन के अंदर बढ़ोतरी होती है। क्योंकि पौधे का एक प्रकृति होती है कि जब मधुमक्खियां जाती है तो वो अच्छे परागण को ही ग्रहण करते हैं जो उसके फीमेल पार्ट होते हैं, तो वो अच्छे बीज का निर्माण होता है। ये मुख्य एक परागण की

0: क्रिया को हम बोलते हैं। आप
1: इस दिवस का इतिहास क्या है?
0: देखिए, इसका शुरुआत वैसे तो मधुमक्खी पालन बहुत सालों से हमारे भारत देश में भी की जाती रही है, और किसी ना किसी रूप में भले ही एक बहुत बड़े व्यापक रूप में इसका कॉमर्शलाइजेशन नहीं किया गया हो, लेकिन ये हर देश में मधुमक्खी पालन में किया जाता रहा है, ज्यादातर आदिवासी के क्षेत्रों में, इलाकों के अंदर है। लेकिन एक विश्व मधुमक्खी दिवस मनाने की शुरुआत एक स्लोवेनिया देश की पहल से हुई थी। इस देश ने क्या किया था कि 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव दिया था, इनके प्रस्ताव के आधार पर 20 मई को वर्ल्ड बी डे घोषित किया गया था, और 20 मई का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इसी दिन जो आज हम बोलते हैं आधुनिक मधुमक्खी पालन के अग्रदूत है, या हम उनको फादर ऑफ मधुमक्खी पालन, मॉडर्न मधुमक्खी पालन भी बोल सकते हैं, वो एंटोन जांसा थे, एक व्यक्ति जिनका जन्म हुआ था आज के दिन 20 मई को। और उन्होंने क्या किया था कि वो अपने देश स्लोवेनिया के प्रसिद्ध मधुमक्खी पालक थे, और उन्होंने वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बहुत बढ़ावा दिया था। इसके बाद से पूरे विश्व में दिवस बड़े उत्साह से मनाया जाता, तो ये इस तरह का इसका इतिहास।
1: इस दिवस का उद्देश्य क्या है, क्यों ऐसा महसूस हुआ कि एक दिन एक छोटे जीव के नाम करना चाहिए?
0: जैसा कि आपने कहा कि छोटा जीव है, लेकिन ये छोटा जीव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिवस का उद्देश्य केवल मधुमक्खियों की रक्षा करना ही नहीं है, बल्कि लोगों को ये बताया जाता है, जैसे आप देख रहे हैं कि आज हर जगह इस बात की चर्चा हो रही है, तो लोग ये जाने कि मधुमक्खियां बहुत छोटा जीव भले ही हो, लेकिन वो हमारे खाद्य सुरक्षा की आधारशिला है, कृषि उत्पादन बढ़ाने में उनका विशेष योगदान है, जैसे मैंने कहा पर परागण की क्रिया को बढ़ा देती है, उससे कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, और जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण में वो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर पर परागण की क्रियाएं नहीं होगी तो बहुत सारे हमारे जो प्लांट हैं, पौधे हैं, उनमें बीज नहीं बनेगा, वो नष्ट हो जाएंगे। साथ के साथ में इस मधुमक्खी पालन को करके हमारे जो किसान भाई हैं, युवा हैं, वो आय बढ़ाने का साधन भी इसको बढ़ा सकते हैं, ग्रामीण रोजगार सृजन में भी मधुमक्खी पालन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और आज के समय में चूंकि रासायनिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग होने लगा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, प्राकृतिक आवासों की कमी के मधुमक्खियों की संख्याएं घट रही है, इसलिए इस दिवस के माध्यम से मधुमक्खियों के संरक्षण का एक संदेश दिया जाता है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है।
1: अगर हम आज से तकरीबन 20-25 साल पहले जाएं तो ऐसा देखा जाता था कि हर कम से कम 4 में से 3 या 2 पेड़ों पर मधुमक्खियों का छत्ता जरूर नजर आता था, लोग कहते थे जरा बच के निकलो मधुमक्खियां हैं, लेकिन आज के समय में मधुमक्खियों की संख्या बहुत ज्यादा घट गई है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है और इसको हम कैसे बचा सकते हैं?
0: हाँ देखिए, ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है और ये बात बिल्कुल सही है कि जो पहले हमारे यहाँ भारतीय मधुमक्खी के छत्ते होते थे, और ये सब कम इसलिए होते गए कि जो जलवायु परिवर्तन का एक कारण रहा, दूसरी बात जो खेतों के अंदर ये जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो अंधाधुंध इसका हम लोग प्रयोग करने लगे, उसकी वजह से क्या हुआ कि ये मधुमक्खी जो है वो मरने लग गई, उनके वो पेड़ों में जहरीलापन आ गया। और जब मधुमक्खी किससे पोषण लेगी, आपके इन्हीं फूलों से लेती है, जो फसलें होती है उसके ऊपर हमने रासायनिक जो अपने पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, इनका इतना छिड़काव किया कि वो मधुमक्खियों को भोजन मिलना ही बंद हो गया है। तो इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ कि जो प्राकृतिक मधुमक्खियां जो पलती थी, हमारे जो भारतीय मधुमक्खी थी, वो सब धीरे धीरे खत्म हो गई है। अब जो मधुमक्खी आ रही है वो एक यूरोपियन मधुमक्खी है, एपिस मेलिफेरा के नाम से है, जो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले इसको लाया गया था, और वहां पर ये देखा कि ये मधुमक्खी जो भारतीय जलवायु है उसके अंदर ये बहुत अच्छी तरह से पनप जाती है, और इसको एक तरह से ह्यूमन फ्रेंडली बोलते हैं कि इसको आसानी से आप पाल सकते हैं, ये पल जाती है। तो आज जो भी मधुमक्खी पालन किया जा रहा है वो 90% इसी मधुमक्खी से किया जा रहा है, एपिस मेलिफेरा से। और ये जो बढ़ोतरी अब कर रहे हैं, तो जब इसको एक सिस्टमेटिक रोजगार के रूप में करने लग गए, मधुमक्खी के बॉक्स रखने लग गए, तो वह किसानों को भी जागरूक करते हैं कि वो अपनी फसलों के ऊपर रासायनिक छिड़काव कम करें तो सुबह सुबह करें, मतलब दोपहर के बाद करें, क्योंकि सुबह सुबह मधुमक्खियां उनसे परागण लेती है। तो ये सब चीजों के कारण

0: हैं जिससे हमारे भारतीय मधुमक्खी के जो प्राकृतिक छत्ते खत्म हुए हैं, और अब चूंकि एक इसको कॉमर्शलाइज तरीके से हम लोग विकसित करने की प्रेरणा दे रहे हैं, तो ये मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने का ये उद्देश्य है आधुनिक मधुमक्खी पालन।
1: अगर कोई मधुमक्खी किसी व्यक्ति को काट जाती है तो लोगों के मन में ये डर बैठ जाता है, इसका जहर शरीर में फैल जाएगा, इसका डंक निकाल दो,
0: जी
1: इसको मार दो, क्या ये सही है?
0: नहीं, ये बिल्कुल एक गलत धारणा लोगों की। देखिए क्या है, प्रकृति ने हर जानवर को अपने बचाव के लिए कुछ मैकेनिज्म दिया है। अगर आप छोटे से कीड़े चींटी है आपकी, अगर चींटी को भी आप थोड़ा सा रखेंगे तो चींटी भी आपको काट जाती है, वो थोड़ी देर तक आपके दर्द का महसूस होता है। इसी तरीके से प्रकृति ने मधुमक्खी पालन को भी उसका एक मैकेनिज्म दिया है बचाव के लिए कि वो एक डंक मारती है, तो वो एक्चुअली वो जहर नहीं कह सकते उसको, ये बोल सकते हैं कि उनका एक मैकेनिज्म है जो हमारे शरीर में जब जाता है थोड़ी देर सूजन आ जाती है, और उसके बाद में सूजन की वजह से हमें दर्द महसूस होता है, लगता है कि वो जहर है, तो आपको वो ऑटोमेटिक एक दिन दो दिन के बाद में वो आपकी सूजन वो कम हो जाती है, यानी कि उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो इस वजह से तो मधुमक्खी को ना मारे। हाँ ये जरूर है कि बचाव अवश्य रखें, कि अगर मधुमक्खियां बहुत सारी आपको एक साथ काट लेगी तो आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है, जानलेवा भी हो सकती है, क्योंकि एक साथ ही अगर आपको इस तरीके से तो मधुमक्खियां काटेगी, एक साथ उनके डंक आएंगे, तो वो माइनर जहर है, लेकिन वो जहर ऐसा नहीं है कि जिससे कोई आदमी की मृत्यु हो जाए। अगर कोई दो चार मधुमक्खियां काटती है तो वो एक उसका प्राकृतिक मैकेनिज्म है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। वो जो मधुमक्खी पालक है जो कर रहे हैं उस चीज के लिए, तो उसके लिए बचाव के लिए जालीदार मास्क है और दस्ताने हैं, इन सब का उपयोग करके ही मधुमक्खी पालन करते हैं वो लोग, तो उससे कोई विशेष घबराने की आवश्यकता नहीं है अगर वो काट लेती है।
1: 2026 की थीम क्या निर्धारित की गई है और इससे हमारा क्या अभिप्राय है?
0: देखिए 2026 में जो थीम निर्धारित की गई है वो है बी टुगेदर फॉर पीपल एंड द प्लेनेट, ए पार्टनरशिप दैट सस्टेन्स अस ऑल। इसका मतलब ये हो गया कि लोगों और पृथ्वी के लिए मधुमक्खियों का साथ बहुत जरूरी है, एक साथ है हम लोग, तो एक साझेदारी है जो हम सभी को पोषित करती है, यानी कि अगर मधुमक्खियां नहीं रहेगी तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो इंसान का जीवन नहीं रहेगा। तो इस थीम का संदेश बहुत गहरा है और ये हमें बताती है कि मनुष्य, प्रकृति और मधुमक्खियां एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि हम मिलकर पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देंगे तभी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, ये मधुमक्खियां सुरक्षित रहेगी और हम सब मिलके इस हमारी पृथ्वी को बचा सकते हैं। ये इसका मुख्य थीम है 2026 का।
1: क्या मधुमक्खी पालन एक स्वरोजगार का रूप है? अगर हमारे देश का ये युवा इससे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े, और सही और सटीक जानकारी उनको कहाँ से मिल सकती है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर किसी रोजगार की तलाश में निकलता है तो उसका मन भटकाने के लिए उसे कई सारे ऐसे मीडिएटर्स होते हैं जो उसे गलत जानकारी देते हैं। सही और सटीक जानकारी के लिए आज का युवा कहाँ जाए?
0: जी देखिए, आपका बिल्कुल सामयिक सवाल है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मधुमक्खी पालन प्राकृतिक रूप से फसलों की वृद्धि, फसलों में उत्पादन में वृद्धि करती है पर परागण के माध्यम से, लेकिन साथ के साथ में एक स्वरोजगार का भी माध्यम है, और स्वरोजगार का माध्यम ऐसा है कि इसके लिए आपको कोई विशेष मशीनरी की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत अलग से कोई जमीन की आवश्यकता नहीं होती है, कोई बहुत बड़ा आपको कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आप कोई भी व्यक्ति इस काम को शुरू कर सकता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, वो कोई भी इस काम को आसानी से कर सकता है। सबसे बड़ी बात एक और है इस काम को करने के अंदर है कि आप शुरुआत कम से कर सकते हैं, यानी कि आप 5 बक्सों से शुरू कर सकते हैं या 10 से कर सकते हैं, और जब आप उसको पूरा सीख लेते हैं, आपको उसका पूरा ज्ञान हो जाता है, तब हमारे जो भी मधुमक्खी पालक है वो 10 के 20 बक्से कर सकते हैं, 20 के 40 कर सकते हैं। और ये जरूर देखना है कि भाई इसमें लागत भी कम लगती है, भूमि में भी आप सड़क के किनारे रख सकते हैं, आपकी फसल के किनारों पर इसको रख सकते हैं, वो सीमित संसाधन है, बहुत ज्यादा आपको संसाधनों की इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये गांव के लिए स्वरोजगार का तो एक उत्कृष्ट वो स्वरोजगार है। और अपना किसान भाई अगर करते हैं तो अपनी फसलों के साथ साथ

0: क्या है कि उससे दोहरा लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे क्या है, फसल की उत्पादकता बढ़ती है, साथ के साथ जैसे शहद हो गया और अन्य उत्पाद हो गए, उससे अतिरिक्त आय भी मिलती है। और आज के द्वारा क्या है, विभिन्न योजनाएं चल रही है भारत सरकार की, राज्य सरकारों की, जिसके माध्यम से प्रशिक्षण, अनुदान और तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। बस ये जरूर आप ध्यान रखें कि जो कोई प्रमाणित संस्थान है, अगर कोई हमारा युवा या किसान अगर इसको करना चाहता है, तो एक जो प्रमाणित संस्थान है या विभाग है उसी से जानकारी प्राप्त करें। यानी आपके हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हर आपके जिले के अंदर कृषि विभाग के अंतर्गत एक उद्यान विभाग होता है, आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा परियोजना के अंतर्गत भी आपको इसकी जानकारी मिल सकती है। साथ के साथ राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है, यहाँ से आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आपको जो अनुदान मिलेगा वहाँ सब इनकी जानकारी मिलती है और ये आपको उसके लिए सहायता भी करेंगे। और इसके साथ साथ समय समय पर ये संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं, जहाँ पर मधुमक्खी का पालन कैसे किया जाए, शहद उत्पादन कैसे किया जाए, विपणन कैसे किया जाए, इसकी जानकारी भी दी जाती है। और अगर आजकल हमारे युवा चाहें तो ऑनलाइन माध्यम भी है, कई यूट्यूब चैनल है, मोबाइल एप्स है, उनके जरिए भी आप तकनीकी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी आप एक बार इन संस्थानों में जरूर मिलके इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें, तभी इस स्वरोजगार को शुरू करें।
1: स्वरोजगार यानी कि खुद का बिजनेस या कोई ऐसा रोजगार जो व्यक्ति खुद शुरू करना चाहे, जब किसी के मन
0: जी
1: में आता है तो सबसे पहला प्रश्न आता है इसमें पूंजी कितनी लगेगी। और अगर बेरोजगार व्यक्ति के पास पूंजी का सबसे बड़ा अभाव होता है, क्या छोटी सी पूंजी से ये रोजगार शुरू किया जा सकता है या कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, जैसे राशन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, कोई फॉर्म फिल करना पड़ता है? और हमारे जनपद
0: जी
1: इसकी जानकारी किसी व्यक्ति को कहाँ से मिलेगी?
0: देखिए, जैसा मैंने ये कहा कि आपको जानकारी तो आपके जो उद्यान विभाग है, आत्मा परियोजना है, कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विश्वविद्यालय, कहीं से भी ले सकते हैं। और जहाँ तक आपने पूंजी की बात करी, तो जैसे आपका एक मधुमक्खी की पूरी कॉलोनी और जो बी बॉक्स है वो 5 या 6 हजार के अंदर एक बक्सा आ जाता है। तो यदि आप, और इसके ऊपर सरकार अनुदान देती है अलग अलग वर्गों के अंदर, कहीं 40% तक अनुदान है और कहीं पर अधिक अनुदान है। तो आप जिस श्रेणी में आते हैं, सामान्य श्रेणी में आते हैं कि जो SC श्रेणी में आते हैं, महिला श्रेणी में आते हैं, तो वहां से आपको अनुदान भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप अनुदान भी नहीं लेते हैं तो 5 से 6 हजार रुपये में एक बक्से से आप इसके कारोबार को शुरू कर सकते हैं, सीख लेंगे। अब आपने मान लीजिए 10 बक्से ले लिए तो 50-60 हजार रुपये के अंदर भी आप इस जो स्वरोजगार को शुरू कर सकते हैं। तो इतनी कम पूंजी के अंदर मुझे नहीं लगता कि आज के समय में कोई दूसरा स्वरोजगार आप कर सकते हो। फिर सबसे बड़ा फायदा इसके अंदर ये भी है कि आप धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। यानी कि आपने 10 बक्से से शुरू किया, आपके पास अगर कुछ पैसा और आ गया तो आपने 5 बक्से और खरीद लिए, फिर कुछ और पैसा आ गया तो आपने 5 और खरीद लिए। क्योंकि ये ऐसा स्वरोजगार है कि जिसमें एक साथ आपको पूंजी नहीं लगानी है कि कोई एक मशीन आएगी 5 लाख की, 2 लाख की, उसको पहले खरीदना पड़ेगा, चाहे आपके पास 2 बक्से हो चाहे 3 बक्से हो, या एक मिनिमम ऐसा है कि आपको 1 एकड़ जमीन लेनी पड़ेगी, वो भी नहीं है। आप अपनी स्थिति को बिना चेंज किए, यानी कि आप ना खेती बंद करेंगे, इससे खेती करते हुए किनारे किनारे पे बॉक्स अगर आप रखते हैं उसी से ही आपको इसके अंदर फायदा हो जाएगा। तो इतनी कम पूंजी के अंदर से आप इसको शुरुआत कर सकते हैं और 40% तक भारत सरकार इनके ऊपर एक बॉक्स के ऊपर अनुदान भी देती है। 2 हजार रुपये तक करीब आपको अनुदान भी मिल जाएगा। अनुदान की प्रक्रिया सीधी है, आप उद्यान विभाग में संपर्क करें, वहां पे ऑनलाइन अप्लाई करें और वहां पे आप जितना अपना एक बॉक्स के लिए डिमांड करेंगे तो उनका एक क्राइटेरिया, उसके हिसाब से आपको अनुदान मिल जाता है।
1: क्या विशेष प्रकार की जलवायु मधुमक्खी पालन के लिए जरूरी होती है, या ठंडी जलवायु में, गर्म जलवायु में, राजस्थान में बहुत अधिक टेम्परेचर होता है, आज के समय में जो हमारी 45-40 डिग्री तक गर्मी जा रही है, बहुत ठंडी जलवायु
0: जी
1: यहाँ पे हमारे पहाड़ों पर जो मौसम होता है, क्या हर जगह मधुमक्खी पालन संभव है?
0: नहीं, देखिए, मधुमक्खी पालन हर जगह संभव है, लेकिन ये जरूर है कि बहुत अधिक सर्दी से भी मधुमक्खियों को नुकसान होता है और बहुत अधिक गर्मी से भी मधुमक्खियों को नुकसान होता है। तो दो बातों का एक तो ध्यान रखना है कि मधुमक्खी पालन आप वहीं पे कर सकते हैं जहाँ पर फूल वाली फसलों का या पेड़ों की बहुतायत हो।

0: यानी कि अधिक फूल होंगे वहीं से वो पराग लेंगे और उसी शहद बनाएंगे, तो पहला है। दूसरा क्या होता है कि जब जैसे अभी राजस्थान में बहुत गर्मी है तो मधुमक्खी के अंदर एक समस्या ये भी आती है, जो हमारे जो भी इस काम को करना चाहते हैं वो जरूर इस चीज को दिमाग में रखें कि आपको कहीं पर भी एक जगह पूरे साल भर के लिए मधुमक्खी पालन का मौसम या उसका जो फ्लोरा है फूल है वो नहीं मिलेंगे, तो इसमें माइग्रेशन करना पड़ता है यानी कि बक्सों को दूसरी जगह पे ले जाना पड़ता है।
1: ये आप बहुत उपयोगी जानकारी आपने श्रोताओं को दी कि एक फसल के साथ ये पालन संभव नहीं है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल है। आपको जैसे अब राजस्थान में मैं एक उदाहरण दूं कि जब सरसों की खेती बहुत आप से होती है, तो जब आप सरसों की खेती से जब फूल आना शुरू हो जाते हैं उसके बाद से आप रख के यहाँ पे जनवरी अंत तक फूल चलते हैं, तो आप यहाँ से शहद प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद में अब जैसे यहाँ पे फ्लोरा कम हो गया तो यहाँ जो मधुमक्खी पालक है वो दूसरी जगह जहाँ पे मान लो कोई धनिया हो रहा है, शीशम हो रही है, जो भी क्रॉप हो रही है, अभी जैसे यहाँ पे कुछ जो हमारे मधुमक्खी पालक है वो लीची के आमों के इधर माइग्रेट कर जाते हैं, तो ये एक तरह से उनको थोड़ा मौसम भी ठीक मिल जाता है, बहुत अच्छा वो नहीं है, मधुमक्खी बच जाती है। और जब जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया या आपके जम्मू कश्मीर हो गया, जब बहुत बर्फबारी सी होती है, जब आपका ये बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो वहां के मधुमक्खी पालक इधर आ जाते हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर, तो इस तरीके से माइग्रेशन करके आप अपने मधुमक्खी की कॉलोनियों को सुरक्षित रख सकते हैं। और ये माइग्रेशन इसका एक मुख्य मतलब कार्य भी है कि उसके बिना आप मधुमक्खी पालन को एक तरह से लाभदायक नहीं बना सकते हैं। तो हमारे ये जो किसान भाई या जो भी युवा इसको करना चाहते हैं ये ध्यान रखें और एक समूह बना लें कि जैसे मान लीजिए कोई आपके दूसरी जगह से माइग्रेट होके सीजन में आपके यहाँ आता है, आप उसको अपने साथ में रखें, और जब यहाँ का आपका मौसम खराब हो जाता है तब आप उसके साथ उसके गांव में उसके डिस्ट्रिक्ट में मधुमक्खियों को रखते हैं। इस तरीके से ये मधुमक्खी पालक लोग कार्य करते हैं।
1: सर, क्या जो पीली मक्खी, पीली जो ततैया होती है और जो मधुमक्खी होती है, क्या इन दोनों में फर्क होता है? दोनों का कार्य एक ही होता है?
0: नहीं, देखिए ततैया तो एक अलग चीज हो गई है। ततैया तो एक तरह से मधुमक्खी का दुश्मन होता है
1: जी।
0: वो नुकसान करता है, लेकिन मधुमक्खियों में अभी इंडिया के अंदर आप ये मान के चलिए कि 3-4 तरह की एक मधुमक्खी होती है यहाँ पे। और जैसे एक एपिस सिराना नाम से एक मधुमक्खी थी जो हमारे यहाँ पे भारतीय मधुमक्खी भी हम उस लोगों को बोलते हैं, लेकिन इसमें क्या होता शहद कम होता था, इसको पालना भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। इसकी जो कार्य प्रणाली थी मधुमक्खी की वो ऐसी थी कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं थी। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि एक यूरोपियन मधुमक्खी के नाम से विदेशी है ये एपिस मेलिफेरा एक मधुमक्खी है, जो आजकल आप देखते होंगे जितने भी बॉक्स वगैरह लगते हैं वो एपिस मेलिफेरा के नाम से ही लगते हैं। फिर एक डोरसेटा नाम से आती है, वो बड़ी मधुमक्खी जिसको आप बोल रहे हैं। तो इनको एक दूसरे से, इनके आपस में ये कह सकते हैं कि लड़ाई झगड़ा तो होता ही है। तो जब मधुमक्खी पालन अगर एक प्रजाति की मधुमक्खियों को कहीं पर रखते हैं तो ध्यान रखें उसके आसपास में दूसरी प्रजाति की मधुमक्खियां ना, वरना उनके अंदर आपस में टकराव की स्थिति रहती है, फिर एक दूसरे को नुकसान होता है। तो पालने के लिए अभी जो भी है किसान भाई वो एपिस मेलिफेरा जो मधुमक्खी है उसी का चयन करें
1: जी। जब किसान मधुमक्खी पालन भी करते हैं, कोई और व्यक्ति मधुमक्खी पालन करता है, तो जो खेतों की फसल का उत्पादकता बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स का, केमिकल्स का भी प्रयोग करता है, तो इसका बुरा प्रभाव मधुमक्खी पालन पर पड़ेगा, तो ये सामंजस्य किस प्रकार बिठाया जाता है?
0: हाँ देखिए, ये क्या है कि आपने ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक तो कुछ किसानों के मन में ये धारणा है कि मधुमक्खी से फसलों को नुकसान होता है, तो एक तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा हमारे किसान भाइयों से, युवाओं से, कि इस गलत धारणा को अपने दिल से निकाल दें और मधुमक्खी आपके फसल उत्पादन में सहायक है। तो अगर कोई किसान खुद नहीं कर रहा है और उसके आसपास में अगर कोई दूसरे मधुमक्खी पालन अगर बॉक्स रख रहा है तो आप उसका स्वागत करें, उससे लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि वो आपकी फसल के उत्पादन को बढ़ाएगा। तो आपके तो फसल उत्पादन में बढ़ोतरी ऑटोमेटिक हो रही है बिना कुछ आपको काम किए हुए, और उससे जो शहद ले रहा है उससे मधुमक्खी पालक का काम चल रहा है। अब आपको सामंजस्य से ये बिताना है कि जितना कोशिश करें आप, विशेषकर छिड़काव के समय जो आप रासायनिक खाद डाल रहे हैं वो तो एक अलग बात है, शुरू में डाल लेते हैं, लेकिन जब भी कोई आप कीटनाशक या फफूंदी नाशक का छिड़काव करें तो पहले तो ये ध्यान रखें कि ऑर्गेनिक का ही छिड़काव करें। जैसे नीम आधारित आजकल पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड आने लगते हैं, अगर आपके यहाँ कोई मधुमक्खी पालक है तो आप रासायनिक कीटनाशकों के छिड़काव को टालने की कोशिश करें। यदि आपका बहुत

0: जरूरी है वो। तो आप छिड़काव से पहले उस मधुमक्खी पालक को जरूर एक सूचना दें कि भाई हम ये मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, तो अपने बक्सों को बोरी के तार से एक दो दिन के लिए वो ढक देते हैं, जिससे अंदर जो उनके पास शहद होता है उसी से मधुमक्खी अपना भोजन दो एक दिन के लिए ले लेती है, और शाम के समय इसका छिड़काव करें। तो ये आपस में बातचीत करके अगर सामंजस्य बनाते हैं तो मधुमक्खी पालक को भी नुकसान नहीं होता है और जो किसान को तो इसमें फायदा हो ही रहा है, तो किसान को इसमें एक तरह से फायदा मिलेगा। तो इस तरीके से सामंजस्य बिठाए।
1: क्या कहना चाहेंगे सभी से अंत में?
0: देखिए, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि किसान भाइयों, जैसा कि आज ये विश्व मधुमक्खी दिवस है, तो ये बहुत सोच समझ के एक विश्व के अंदर मनाया जाता है, तो ये यही एक साबित करता है कि जीव भले ये छोटा सा है,

0: ये यही एक साबित करता है कि जीव भले ये छोटा सा है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये मधुमक्खियां केवल शहद बनाने वाला ही छोटा सा जीव नहीं है, बल्कि हमारी खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संतुलन और एक जीवन चक्र की महत्वपूर्ण कड़ी है। यदि हमें स्वस्थ पर्यावरण, सुरक्षित भोजन और समृद्ध किसान चाहिए तो हमें मधुमक्खियों और परागण करने वाले सभी जीवों की रक्षा करनी होगी। तो आज मैं चाहता हूं कि हम सभी ये संकल्प लें कि रासायनिक दवाओं का संतुलित उपयोग करेंगे, फूलदार पौधे लगाएंगे, जैव विविधता को बढ़ावा देंगे और मधुमक्खी पालन को रोजगार एवं पर्यावरण संरक्षण के माध्यम के रूप में अपनाएंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि हमारी मधुमक्खियों का संरक्षण हो। जब मधुमक्खियां सुरक्षित होगी तभी प्रकृति और मानवता दोनों सुरक्षित रहेगी। तो मैं हमारे किसान भाइयों से यही संदेश देना चाहता हूँ।
1: अब डालते एक नजर आज के समाचार पर। उफ, ये गर्मी, पारा 45 पार, लू की 20 रही रफ्तार। भीषण गर्मी में घर और घड़ियों के एसी भी हो रहे फेल। कूलर दे रहे गर्म हवा, मौसम विभाग ने चेताया अभी और बढ़ेगा पारा। मौसम विभाग की वेबसाइट के अनुसार कल से 3 डिग्री तापमान और बढ़ने की आशंका है। अब डालते एक नजर आज के इतिहास पर। 1498 में पुर्तगाली नाविक और खोजकर्ता वास्को डिगामा भारत के मालाबार तट पर स्थित कालीकट पहुंचे। वे समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय बने। वहीं 1862 में अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने होमस्टेड अधिनियम पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य संघीय भूमि को आम लोगों की खेती और स्वामित्व के लिए उपलब्ध कराना था। वहीं 1873 में सैन फ्रांसिस्को के व्यवसायी लेवी स्ट्रॉस और दर्जी जैकब डेविस को दुनिया की पहली मजबूत डेनिम जीन्स बनाने के लिए पेटेंट मिला। वहीं 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी। वहीं 1900 में हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ और महान कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ। 1977 में भारतीय रेडियो प्रसारण ने एक नए युग में प्रवेश कर लिया। भारत में FM सेवा की शुरुआत हुई, जिसने रेडियो सुनने के अनुभव को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या करें क्या ना करें के अंतर्गत बातचीत करते हैं विषयों के बारे में जो होते हैं आम बन जाते हैं खास, क्योंकि हम उन पर ध्यान नहीं देते। गर्मी का प्रकोप जारी है, इस भीषण गर्मी में आप खुद को बचाने के लिए छोटे छोटे नियमों का पालन कीजिए। जब भी घर से बाहर निकलें तो खाली पेट ना निकलें, पानी पीकर और कुछ भोजन करके घर से बाहर निकलें। अपने सर को ढककर निकलें और पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखकर चलें। 12 से 4 के बीच में प्रयास कीजिए घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि उस समय गर्मी अधिकतम चरण पर होती है। छोटे बच्चों का, बुजुर्गों का इस मौसम में विशेष ध्यान रखें और अपने आसपास कहीं भी पानी ना इकट्ठा होने दें, जिससे किसी भी तरह के मक्खी मच्छरों के पनपने की समस्या उत्पन्न हो। और विशेष तौर पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अक्सर गर्मी के मौसम में गर्मी बहुत ज़्यादा होने से हम चीज़ें इधर उधर बिखेर देते हैं। ऐसे में आप ये प्रयास कीजिए कि जितना आप साफ सफाई का माहौल रखेंगे, अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे, अपने घर को साफ सफाई रखेंगे, उतना ही आप खुद को बचा सकेंगे। हमेशा यही प्रयास कीजिए कि आपका कोई भी कार्य ऐसा ना हो जिससे कहीं ना कहीं किसी दूसरे को समस्या उत्पन्न हो। 12 से 4 का समय जो होता है वो भीषण गर्मी का समय होता है। ऐसे में घर से बाहर ना निकलें, और अगर घर से बाहर निकलें भी तो अपने साथ ज़रूरी सामान लेकर ही बाहर जाएं। बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं और वो विशेष तौर पर ज़िद करते हैं कि उन्हें बाहर खेलने जाना है, ऐसे में उनका विशेष ध्यान रखिए। सदा प्रसन्न रहें और खुश रहें। और इसी के साथ स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज दर्पण। प्रस्तुति सुरभि शर्मा की और कार्यक्रम के संयोजक ओपी सिंह थे। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT एवं CIT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी।
3: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अकरम आसमा फकीर।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
2: जी,
3: तो विमलेश जी अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी, श्रोताओं, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
3: जी जरूर श्रोताओं, अपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
2: जी
3: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
2: श्रोताओं, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
3: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षा वन से मिलता है।
2: जी,
3: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में।
2: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलम्बिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
3: और श्रोताओं, जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
2: दूसरा है गोल्डन मंकी, बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है, जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
3: और आपने श्रोताओं एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है, जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
2: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है, जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
3: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं, अमेजन का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
2: जी
3: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेजन वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी।
2: जी, एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेजन वर्षा वन ज्यादातर अमेजन नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेजन

0: नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेज़न नदी उफान से भरी रहती है।
0: जी।
1: इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
0: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
1: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेज़न नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की जानकारी अमेज़न वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
1: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम द क्रो।
0: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जांच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जांच लेना चाहिए।
2: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program The Crow.
3: Hello children.
4: Hello ma'am.
5: Hello ma'am.
3: Hello, hello. How are you all?
4: We are fine ma'am.
5: I am fine ma'am.
6: How are you ma'am?
3: I am good. Thank you so much Vanya. All right. So children, today I am going to share something with you. Are you ready?
4: Yes ma'am.
5: Okay, ma'am.
3: All right. You all know that pets are special members of our family, isn't it?
4: Yes ma'am.
5: Pets are so lovely.
3: Right, Soham.
7: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
3: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
7: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
3: Wow, that's good. And what about you, Navya?
8: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
3: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
9: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
3: Oh, that's so exciting, isn't it?
4: Yes ma'am.
3: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?
4: Yes ma'am.
3: Can you name some birds?
5: Sparrow.
3: Okay, Vanya. Good. That's a beautiful small bird. Okay, Soham, you tell.
5: Peacock. It dances so well. It looks so pretty.
3: Yes, peacock is a colorful bird.
5: Ma'am, parrot.
3: Oh, yes. Parrot is a mimic bird. But, children, you have missed a bird. Do you know which bird is missing?
10: Any guesses?
3: Okay, I'll give you a clue. It calls... Absolutely right. Children, I remember a lovely story of a crow. Would you like to listen?
4: Yes, ma'am.
5: It will be fun.
3: So, I'll narrate the poem. Repeat after me. There once was a crow. He was black. As you know.
4: How to be beautiful.
3: He wanted to know. Colorful feathers. He wanted to grow. He found one peacock feather. He stuck it. In his tail.
4: Then he found another.
3: He picked up

0: और एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी
2: दीदी
1: अरे राजू स्कूल से आ गए तुम।
2: हाँ दीदी।
1: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
2: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
1: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए, क्या ये सच है राजू?
2: दीदी वो तो मैंने।
1: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
2: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है, मगर
1: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
2: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है।

0: जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
1: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं। हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
0: भोजन और पानी?
1: हाँ राजू।
0: हम्म,
1: तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ।
0: हाँ दीदी, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
1: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
0: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: हाँ अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी अभी खोदता हूँ, नई खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: मालिका का, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ मालिका का, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
2: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
2: हाँ।
0: देखभाल? वो कैसे?
2: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
2: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
2: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
0: जी धन्यवाद मालिका का।
2: अरे बेटा
1: चलो बेटा
2: जी।
0: चलिए दादाजी।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
1: अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
2: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
3: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
4: हाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
3: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा।

0: क्या, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं? दीदी कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
1: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
0: हाँ दीदी,
1: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
0: दीदी ये तो बहुत ही गलत काम है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।

साथियों, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुन लीजिए। आपके विशेष अनुरोध पर आपके पत्रों एवं फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम आपके पत्र आपके फोन का प्रसारण पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 12:30 से होगी। कार्यक्रम का प्रसारण समय रविवार दोपहर 1:30 पर होगा। श्रोताओं, आपको हमारे केंद्र के कार्यक्रम कैसे लगते हैं? आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में और क्या बदलाव चाहते हैं? अपने सुझाव टेलीफोन नंबर 2530-135 पर फोन करके अथवा पत्र के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता हैं वो स्टडी कोड अवश्य लगाएं 0565। और पत्र भेजने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम आपके पत्र आपके फोन, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी मथुरा वृंदावन, निकट गायत्री तपोभूमि मथुरा, पिन कोड संख्या है 281003। सूचना समाप्त हुई।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। साथियों, प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

आपने सुना भी लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म महबूब की मेहंदी का ये गीत। लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दो रास्ते, आपने सुना भी इस फिल्म के गीत को, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। शब्द रचना है आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

आपने सुना भी निकाह फिल्म के गीत को महेंद्र कपूर और सलमा आगा की आवाज़ में। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आपने सुना अभी धूम 3 फिल्म के गीत को, सिद्धार्थ महादेवन शिल्पा रॉय की आवाज़ में। लिखा था गीत को समीर अंजान ने, संगीत दिया था प्रीतम ने। और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

आपने सुना अभी अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म छिछोरे का ये गीत, और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आप अभी सुन रहे थे जोजो और नज्म सरस की आवाज में फिल्म हंटेड का ये गीत। आज का ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम इसी गीत के साथ ही यहीं पर संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: तो आखिर आप भी आ ही गए।
1: आइए, आपका इंतजार था।
0: तो जनाब, जब हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम ने आपके दिल की धड़कनें बढ़ा ही दी हैं, तो फिर सोचना कैसा।

0: अरे अरे घबराइए मत, मैं बीमार नहीं आपका इलाज करने आई हूँ, क्योंकि अब आपका इलाज होगा आप ही के पसंदीदा गीतों के साथ और हमारे साथ की गई प्यारी प्यारी बातों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन श्रोता हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
1: विसावर से विजय कुमार कैसे बोल रहा हूँ जी। नमस्ते।
0: नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: हाँ मैं तो बढ़िया हूँ, आप सुनाइए, आप कैसी हो दीदी?
0: बिल्कुल बढ़िया। और विसावर का क्या फेमस है ये बताइए?
1: विसावर का पायल फेमस है बहन जी, पायल। हाँ, जो पैरों में पहनते हैं।
0: अच्छा, तो आप... क्या मतलब चांदी अच्छी बनती है या डिजाइनिंग बहुत अच्छी होती है पायलों की, क्या खास बात होती है विसावर की पायल?
1: डिजाइने भी होती है और घुंघरू भी बनते हैं, जो बीचों में डाले जाते हैं वो वाले घुंघरू।
0: अच्छा, तो बिसावर में मुख्य रूप से चांदी का काम अच्छे से होता है, जैसे यहाँ मथुरा में होता है, तो अच्छा काम है पायलों का।
1: हाँ अच्छा काम है। हाँ हम भी पायल ही बनाते हैं बहन जी।
0: चलो बहुत बढ़िया बात है, पायल बनाते रहिए और हमारी ब्रज की गोपियों के ही नहीं बल्कि पूरे भारत की नारियों के पैरों में आपकी बनाई पाजेब ऐसे ही छनकती रहें और हर घर में आपकी सेवा पहुंचती रहे, ऐसी हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। क्या पसंद रहेगी आपकी?
1: मुझे गाना सुनना है, वो वाला गाना है, फिल्म का नाम तो मुझे याद नहीं है। गाने के बोले धूप में लिखना न कलो रूप की रानी, गुआर निकाला न पर जाए।
0: अरे वाह वाह वाह, आपने तो मतलब जो मूल आवाज है उसको भी मात दे दी, क्या बढ़िया गाया आपने, वाह जोरदार तालियां। चलिए अपनी पसंद का सुनिए ये गीत।
1: बजा, तालियां बजाओ।
0: हाँ बजा लीजिए, तालियां बजा दीजिए, वही तालियां।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो, नमस्कार बहन
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? परिचय दे दीजिए।
1: जी। ग्राम सनोतिया, जिला गुना, मध्य प्रदेश से आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ बहन
0: जी, स्वागत है कार्यक्रम में मांगीलाल जी। कैसे हैं आप?
1: जी। बस दीदी, आपकी दुआ और भगवान की कृपा से मैं बढ़िया हूँ,
0: जी
1: और ईश्वर से आशा करता हूँ कि आप भी बढ़िया होंगे
0: बिल्कुल बढ़िया हैं। और क्या
1: जी।
0: हाल है आपके यहाँ मौसम का?
1: बहन जी, मौसम की तो कुछ मत पूछो। टेम्परेचर दिन का ये मान लीजिए 40-45 के लगभग चल रहा है।
0: तो सुबह बैंगन अगर रख दें टोकरी में भर के, तो शाम को भरता बना बनाया मिलेगा।
1: सही कहा आपने, सही
0: सही कहा ना?
1: कहा,
0: हाँ
1: सही कहा,
0: हाँ
1: सही।
0: और कच्चा पापड़ रखने
1: वो
0: बाहर, तो शायद वो भी सिक जाएगा।
1: भी
0: तो चलिए, मौसम
1: जाएगा।
0: है, मौसम को
1: सही
0: तो
1: है, सही
0: अपने
1: है,
0: रंग दिखाने ही हैं,
1: दिखाने हैं उसको तो।
0: है
1: सही
0: ना?
1: है,
0: बस
1: सही है,
0: हमें
1: सही है।
0: अपना सुरक्षा, हमें अपना बचाव कैसे करना है,
1: बस वो अपना काम है, वो अपन करते
0: वो अपना करते
1: रहो।
0: रहे। तो चलिए, हमारा काम फिलहाल
1: फिल्म
0: ये है कि हम आपको आपकी पसंद का गीत सुनवा दें। तो बताइए क्या
1: फिल्म
0: सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम रहेगा मदर इंडिया, और गाने के बोल रहेंगे, ना मैं भगवान हूँ ना शैतान हूँ, दुनिया चाहे कुछ भी समझे, मैं एक इंसान हूँ।
0: जी, चलिए सुनिए पसंद का ये गीत।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी मैडम, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
1: मैडम जी, मैं गांव उस पार से वीरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ, बिरजी रोड के श्रोता मित्र।
0: जी स्वागत है कार्यक्रम में, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है, प्यारी जी का आशीर्वाद है। आप बताओ, हमारी आकाशवाणी टीम ठीक है?
0: बिल्कुल बढ़िया, सब आनंद मंगल। और आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: पिंजड़े के पंजीरे तेरा दर्द ना जाने कोई,
0: ठीक है,
1: और हम बिरजी श्रोता मित्रों का नाम लेना चाहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: चौधरी महेंद्र सिंह जी हैं, शारदा प्रजापति जी हैं, यादराम जी उसपे, और राजू राजू लवानिया खनौली आगरा से।
0: ठीक।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: आज नहीं है दीदी, सादर नमस्कार।
0: नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: दीदी मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, रेडियो सुनने में रहता व्यस्त हूँ। आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल बढ़िया हूँ और स्वागत है आपका कार्यक्रम में प्रजापति जी। और इस समय देखिए गर्मी बहुत पड़ रही है और ऐसे में सभी को अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ख़ास ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिएगा, अन्यथा अपने घर में ही आराम करें और इस गर्मी के प्रकोप से बचे रहें। शीतल पेय पदार्थों का सेवन करते रहें, पानी की कमी शरीर में बिल्कुल ना होने दें। तो आज क्या पसंद रहेगी आपकी?
1: जी जी जी बिल्कुल आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। घर के बाहर मैं धूप में निकलता ही नहीं हूँ, घर के अंदर रहते हुए ठंडे शीतल पेय पदार्थों का सेवन करता हूँ और आकाशवाणी मथुरा वृंदावन के कार्यक्रम सुनते रहता हूँ।
0: जी, तो आज क्या सुनेंगे?
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है मिशन काश्मीर।
0: जी
1: शंकर महादेवन एवं साथियों ने गीत को गाया है। आया हूँ मैं प्यार का ये नगमा सुनाने, आया हूँ मैं प्यार का ये नगमा सुनाने। बहुत ही सुंदर प्यारा गीत, आपसे जरूर करना चाहता हूँ।
0: जी

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? परिचय दे दीजिए।
1: बिल्कुल, मैं ग्राम पजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया।
0: जी, स्वागत है कार्यक्रम में। और सत्येंद्र जी, क्या करते हैं आप?
1: जी, हमारा वैसे खेती किसानी का काम है और किराने की दुकानदारी भी है साथ में।
0: बहुत बढ़िया। तो खेती बाड़ी में इस समय क्या चल रहा है?
1: अब इस समय खेती बाड़ी में कुछ भी नहीं है और हम अभी जमीन को सुखा रहे हैं, और मैंने थोड़ा वो गहरी उसकी जोताई करा के प्लाव से, और अब उसको बिल्कुल उसमें गर्मी जो जब धूप पड़ रही है तो जितनी वो जमीन तपेगी, आने वाली फसल हमारी ऊपर वाली की कृपा से उतनी ही अच्छी होगी।
0: तो आने वाली फसल में क्या प्लान किया है, क्या लगाएंगे?
1: हाँ, आने वाली जो फसल में जो आपने बात कहा है उसमें हम ज्वार बाजरा बोएंगे, और उसके बाद जब समय आएगा तो फिर मटर बोएंगे।
0: अच्छा, तो ये कब रोपण इसमें होगा, कब इसमें बीज डाले जाएंगे?
1: बाजरा का तो जी हो जाता है जैसे अभी जो जब आषाढ़ के बाद आषाढ़ में जो वर्षा होगी तो ये फसल उस समय बो दी जाती है, और विशेषकर तिली भी बोई जाती है।
0: जी, चलिए, बहुत बढ़िया। और आपकी आने वाली फसल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: अरे वाह, इसके लिए आपको धन्यवाद तो दे दे। आपको इतना याद रहा, इतनी बात करने के बाद आपको इतना याद रहा कि हमारा श्रोता किसानी से संबंधित है, वो किसानी की बात है कि उसको धन्यवाद दिया जाए।
0: जी, और अब आपकी पसंद जानना चाहूंगी।
1: इक्का राजा रानी, मेरे सावरे सावरिया, मुझ पे सौतन को क्यों लाए।
0: ठीक है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति रश्मि शर्मा की थी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

कुणाल गंजावाला, सोनू निगम और साथियों को आपने सुना फिल्म चुपके चुपके में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म दीवाना मस्ताना से। इस गीत को अपने स्वर दिए हैं विनोद राठौर, अलका याज्ञिक और उदित नारायण ने।

श्रोताओ, आज दिन में कार्यक्रम गीत बात और SMS पे हमारा आज का विषय रहेगा, मोबाइल ने हमें जोड़ा या दूर कर दिया। जी हाँ, इस संदर्भ में अपनी प्रतिक्रियाएं व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाइएगा। नंबर वही 94 122 25 575।

धूम थ्री में आपने सुना सुनिधि चौहान को। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले आपको बता दें कि आज कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में दिन में 12 बजे हम बात करेंगे इस विषय पर, मोबाइल ने हमें जोड़ा या दूर कर दिया। जी हां श्रोताओं, आपकी प्रतिक्रियाएं ही इस कार्यक्रम को उत्तम बनाती हैं और इस कार्यक्रम का मजा भी आपकी प्रतिक्रियाओं के बिना अधूरा है। तो अपने विचार, अपने प्रतिक्रियाएं व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से इस कार्यक्रम में जरूर भेजें। हमारा नंबर है 94-122-25-575। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दिल तेरा आशिक। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याज्ञिक के स्वरों में। जी हाँ श्रोताओ, आपका दिल आशिक है हमारे कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस का भी, तो देखिए आशिकी निभानी है तो पूरी तरीके से निभाइएगा। जैसा कि मैंने आपको आज का टॉपिक पहले ही बता दिया है, आज का टॉपिक है मोबाइल ने हमें जोड़ा या दूर कर दिया। तो इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में दिन में 12 बजे से 12 बजे

कर 30 मिनट के मध्य हम तक जरूर भेज दीजिएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं से ही तो ये कार्यक्रम सजेगा, संवरेगा और निखरेगा। तो बस जल्दी से उठाइए अपना मोबाइल फोन, और नंबर तो आपको पता ही है ना, 94-122-25-575। तो बस SMS करिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर पहुंचाइए।

डर्टी पिक्चर इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान के स्वरों में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत बात और SMS।

नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ आपकी अपनी आरजे रश्मि और आज जरा दिल से बातें करेंगे। एक समय था जब घर की छत पर बैठकर हमारा परिवार बातें करता था और आज सब साथ बैठकर भी मोबाइल में खोए हुए हैं। तो बताइए, मोबाइल ने रिश्ते मजबूत किए हैं या दूर? तो बस आज का यही सवाल है और इसी सवाल के आंसर आपके व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से हम तक पहुंच रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस।

तो श्रोता, आपके SMS हम तक पहुंच रहे हैं और पहला SMS जिसे मैं ले रही हूं यह आया है मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से। लिखने वाले श्रोता हैं सोपान ताइडे, बसंतराव भोजने और तुषार करांगले। आप लिखते हैं, मोबाइल ने हमें एक साथ जोड़ा भी और दूर भी किया। एक तरफ वीडियो कॉल, मैसेज और सोशल मीडिया से हम पल भर में अपनों से जुड़ जाते हैं, दूर बैठे दोस्त, परिवार और काम सब करीब आ जाते हैं। यानी जानकारी, मदद और मौके अब उंगलियों पर हैं, और दूसरी तरफ साथ बैठकर भी हम स्क्रीन में खोए रहते हैं। आमने सामने की बातचीत, गहरी दोस्ती और परिवार के साथ बिताया समय कम हुआ है। रिश्तों में मौजूदगी तो है पर गहराई घट रही है। मोबाइल सिर्फ एक जरिया है, जोड़ना या दूर करना हमारे इस्तेमाल पर निर्भर है। संतुलन रखेंगे तो मोबाइल रिश्ते बनाएगा वरना तोड़ेगा। तो बहुत ही प्यारा सा SMS, बहुत ही खास।

हमारे ये सभी श्रोताएं जो हमें SMS लगातार भेज रहे हैं और लगातार स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए और हमारे श्रोताओं के हम SMS फटाफट से ले लेते हैं। दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से हैं गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, सुशील येले और शेरी वर्णेर अकोला से हैं अरुणा बलदेव दामोदर, आदित्य दामोदर और इनके परिवारजन। लिखते हैं, मोबाइल ने हमको जोड़ा भी और कुछ चीजों से दूर भी किया। आज के डिजिटल युग में हर किसी के मन में आता है, मोबाइल ने हमको जोड़ा भी है और दूर भी किया है, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। मोबाइल ने हमको कैसे जोड़ा, दूरियों को खत्म किया, और आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, वीडियो कॉल या मैसेज के जरिए परिवार के साथ पल भर में जुड़ जाते हैं, दोस्तों के साथ जुड़ जाते हैं। सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स की मदद से हम अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों के संपर्क में रहते हैं। इंटरनेट के जरिए आप किसी भी विषय की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं और दुनिया भर के लोगों के विचारों को भी जान सकते हैं। बिल्कुल सही बात, हम दुनिया भर के रिश्तों को भी जान सकते हैं और मोबाइल ने रिश्ते दूर किए हैं, ये कहना है कुमार गली श्रीरामपुर के इन श्रोताओं का। लिखने वाले श्रोता हैं अशोक दले, सविता, अनिकेत, ऋषिकेत, जीविका और सोनिका। पुनावले से हैं अजय, सोनवने, करिश्मा, अविका और विशाखा। ये SMS हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार ने। आप लिखते हैं, मोबाइल ने रिश्तों में गहरा प्रभाव डाला है, इसने दूरियों को कम करके संपर्क आसान किया है, लेकिन साथ ही फबिंग यानी फोन में व्यस्त रहकर पास बैठे व्यक्ति को नजरअंदाज करना और अत्यधिक स्क्रीन टाइम के कारण आपसी संवाद और भावनात्मक जुड़ाव में कमी भी ला दी है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ऐसा अक्सर कर अब देखने में आ रहा है, क्योंकि परिवार में मोबाइल से दूरियां भी बढ़ रही हैं। और ऐसा ही एक बहुत अच्छा सा हमारा मैसेज हमारे इन श्रोताओं ने भेजा है, मोहाली चंडीगढ़ के हमारे श्रोता हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। आप लिखते हैं, मोबाइल सिर्फ एक साधन है, ये हमारे रिश्तों को जोड़ता है या तोड़ता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसकी कमान किसके हाथ में है। अगर हम अपनों के साथ बैठते समय फोन को एक तरफ रख दें और उन्हें अपना कीमती समय दें, तो मोबाइल कभी भी हमारे रिश्तों के बीच दूरी नहीं बढ़ा सकता। तकनीक का इस्तेमाल रिश्तों को मजबूत करने के लिए करें, उन्हें रिप्लेस करने के लिए नहीं करें। बहुत ही शानदार बात आपने लिख दी है कि तकनीक का इस्तेमाल रिश्तों को मजबूत करने के लिए करें, उन्हें रिप्लेस करने के लिए नहीं। तो बहुत और हमारे श्रोता इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और अपने लगातार SMS हमें भेज रहे हैं। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा और इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। आप लिखते हैं, मोबाइल ने रिश्तों को मजबूत भी किया है और कहीं कहीं कमजोर भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। जहां रिश्ते मजबूत हुए, दूर रहने वाले लोग भी रोज जुड़ पाते हैं, वीडियो कॉल से अपनापन बना रहता है, पुराने दोस्तों रिश्तेदारों से संपर्क आसान हुआ, साथ बैठकर भी लोग स्क्रीन में खो जाते हैं, बातचीत कम और टाइपिंग ज्यादा हो गई, गलतफहमियां जल्दी पैदा होती हैं, और मोबाइल खुद अच्छा या बुरा नहीं है। अगर मोबाइल दिलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो तो रिश्ते मजबूत होते हैं, और अगर वह समय और ध्यान छीनने लगे तो रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। मोबाइल ने दूरियों को कम किया है, लेकिन कई बार दिलों की नजदीकियां भी छीन ली हैं। तो चलिए इसी बात पर हो जाए अब एक प्यारा सा गीत।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: रश्मि झरना राजकोट गुजरात से लिख रही हैं। रश्मि दीदी, मोबाइल ने टेक्नोलॉजी के माहौल में काफी कम समय में बहुत सारे कार्यों को आसान कर दिया है, पर बिन जरूरी मोबाइल का उपयोग करने से परिवार, समाज और अपनों से भी दूरी पैदा कर दी है। ये कतई उचित नहीं है। बिल्कुल नहीं है जी।

0: चला जाए सपनों से आगे कहाँ, जिंदगी कैसी है बहेली।
1: ये SMS समय भेजा है अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी ने, बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से। लिखते हैं, मोबाइल ने हमें दोनों तरह से प्रभावित किया है, कभी करीब लाया है तो कभी दूर भी कर दिया है। करीब लाने के तरीके हैं, दूर बैठे परिवार और दोस्तों से तुरंत संपर्क कर सकते हैं, वीडियो कॉल, मैसेज, सोशल मीडिया से रिश्तों को बनाए रखना आसान हुआ, आपात स्थिति में तुरंत मदद मिलती है, शिक्षा, नौकरी, व्यापार जैसी चीजें आसान हो गई। और दूरियों की बात इन्होंने लिखी है कि लोग पास बैठे इंसानों से ज्यादा मोबाइल में व्यस्त रहने लगे हैं, आमने सामने बातचीत कम हो रही है और सोशल मीडिया पर दिखावटी रिश्ते बढ़े, असली रिश्तों की गहराइयां तो घट रही हैं। जी बिल्कुल घट रही हैं। नशे की तरह मोबाइल पर निर्भरता बढ़ने से परिवार और समाज से दूरी बनती है। और निष्कर्ष में आपने लिखा है, मोबाइल फोन एक साधन है, ये इंसानों को करीब भी ला सकता है और दूर भी कर सकता है। इस बात पर ये निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं।
0: जिंदगी कैसी है बहेली हाय, कभी तो हंसाए।
1: ये SMS हमें भेजा है इन श्रोताओं ने, लिखने वाले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ मुंगेली से हैं मोहम्मद इशफाक, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद अल्ताफ। आप लिखते हैं, मोबाइल ने आकाशवाणी से जोड़ा है, लेकिन आकाशवाणी मथुरा ने बहुत बार हमारा SMS शामिल नहीं किया है। तो भाई ऐसा नहीं है, SMS तो हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा अपने श्रोताओं के SMS शामिल करने की, लेकिन कई बार समय के अभाव में आपके SMS छूट भी जाते हैं। तो चलिए अगला SMS मैं ले लेती हूँ। ये SMS हमें भेजा है मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार ने, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से। और साथ ही साथ ये श्रोता हैं गोल्डन रेडियो श्रोता संघ, राज्य पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा। लिखते हैं, मोबाइल ने हमारे लिए दोनों काम किए हैं, मगर हमारे बिजनेस को मोबाइल ने बहुत आसान कर दिया है, सारा काम बहुत जल्दी हो जाता है। और आप लिखते हैं, मोबाइल के अपने फायदे और अपने नुकसान दोनों हैं। जी हाँ बिल्कुल। और कुछ और हमारे श्रोता हमारे साथ इस संदर्भ में अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ये हमारे श्रोता हैं, सिकंदरा राव।

उसे मुबीन अब्बासी, इशरत परवीन और इनके परिवारीजन और साथ ही साथ और इनके साथ कुछ और श्रोता हमसे जुड़े हैं। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज नवेद हसन, रशीद वारसी, सुहेल अनम अब्बासी, यूसुफ अब्बासी। और आप लिखते हैं मोबाइल के जरिए हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और एक दूसरे की खैरियत जान सकते हैं और इससे हमारे रिश्ते नज़दीक हुए हैं। और देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी राय है और ये हमारे श्रोता हैं एवरग्रीन रेडियो ग्रुप पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना और तुलसी मस्कीन। आप लिखते हैं मोबाइल फोन के जरिए हम अपने सभी परिवारीजनों से और मित्रों से बहुत ही जल्दी और आराम से हम सभी से संवाद कर सकते हैं और कुछ ही क्लिक से हम जो भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो भी हमारे साथ में हो जाती है। हमारे लिए यूज़फुल है मोबाइल। और एक श्रोता हमारे साथ जो जुड़े हैं लिखते हैं आदरणीय प्रसारक जी नमस्कार, मोबाइल ने हमें अपने पुराने दोस्तों से मिलाया है। वाह क्या बात है, जो श्रोता हमें भूल चुके थे वो आज हमारे करीब हैं और इस टेक्नोलॉजी को सल्यूट करते हैं। लिखने वाले श्रोता हैं विजय महोबिया, कविता महोबिया और पेंटर बाबू रामगज खंडवा मध्य प्रदेश से। साथ ही साथ लिखते हैं कि मोबाइल फोन सिर्फ समय समय पर ही इस्तेमाल करें, रात दिन मोबाइल में खो जाना रिश्तों की डोर को कमजोर करता है, किसी अनजान व्यक्ति या लिंक पर नहीं जाएं वरना आप अर्श से फर्श पर आने में आपको समय नहीं लगेगा। बिल्कुल ऐसा भी होता है क्योंकि कई बार मोबाइल के कुछ फेक फ्रेंड्स आपकी दुनिया में जुड़ जाते हैं और फिर आपको धोखा मिलता है। और ऐसे ही कुछ और SMS हम तक इन श्रोताओं ने भेजे हैं जिनके हम SMS अपने कार्यक्रम में लगातार शामिल कर रहे हैं। ये श्रोता हैं हमारे व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्रु भूषण संस्कृति और पौरुष। आप लिखते हैं मोबाइल फोन तन्हाई का अच्छा साथी है, मोबाइल फोन का मतलब दुनिया मुट्ठी में, इसने हमारे कार्यों को बड़ा ही सरल और सहज कर दिया है। हाँ, मोबाइल फोन का एडिक्शन सेहत के लिए नुकसानदेह भी है, इसलिए समझदारी इसी में है कि हम इसका सदुपयोग करें ना कि दुरुपयोग। तो चलिए, बहुत अच्छी बात आपने भी लिखी और हमारे और भी हमारे कई सारे श्रोता कार्यक्रम के दौरान हमसे जुड़े हैं। ये हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। आप लिखते हैं कि मोबाइल के आने से विदेशों या दूसरे शहरों में रहने वाले रिश्तेदारों से भी जुड़ना अब बहुत आसान और हो गया है और इस टेक्नोलॉजी से हम अपने रिश्ते और परिवार से जुड़ सकते हैं। और यहाँ तक कि इसमें कुछ कमियाँ भी हैं जिससे हमारा परिवार पर प्रतिकूल असर भी पड़ता है, यानी एडिक्शन किसी भी चीज़ का बुरा है। और बिल्कुल आपने सही बात लिखी है। और कुछ और श्रोताओं के SMS हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अभी सुनते हैं ये गीत।

ये श्रोता जुड़े हैं सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा, असद अरहम और मोहम्मद आलम हाशमी अजमेर शरीफ से। लिखते हैं, वैसे तो मोबाइल ने काफी हद तक सुविधाएं तो दी हैं, मगर साथ ही पारिवारिक रिश्तों को भी दूर कर दिया है, जिससे रिश्तों में काफी हद तक दिन ब दिन दूरियां बढ़ती जा रही हैं, जो कि एक गंभीर दिशा की ओर अग्रसर हैं।

ये श्रोता हैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, माहेश्वरी देवी जी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बनी, आरुष, शौर्य, दिनेश, आप सभी को कार्यक्रम अच्छा लग रहा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने लिखा है मोबाइल ने तो हमें देश विदेश से अच्छे दोस्त भाई बहन सब से मिलवाया है और रेडियो की भी इसमें अहम भूमिका रही है। थैंक यू सो मच। और ये श्रोता जो हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखने वाले ये श्रोता हैं परीमहल कासगंज से, आबाद खान, नबील खान, मीरा सराय बदायूं से, आफरीन खान, जमीर खान और इनके सभी परिवारीजन, और साथ ही साथ इल्मा खान, एस असलम, सैफी और इनके सभी मित्र लिखते हैं कि सिस्टर आजकल मैं अपने बच्चों को इतना क्या लिखा है अपने समझ नहीं आ रहा, वक्त दे पा रहा हूं क्योंकि मोबाइल से मैंने थोड़ी दूरियां बढ़ाई हैं और इसके कारण परिवार पर अब अच्छा असर आ रहा है, यानी अब मैं मोबाइल से थोड़ी दूरियां बढ़ाकर अपने बच्चों

के साथ समय बिताता हूँ। और ये हमारे श्रोता जो हमारे साथ जुड़े हैं कार्यक्रम में, सुखविंदर सिंह जोड़ा सीटी दीवाना कृष्णा पार्क दिल्ली से, और जनकपुरी से हैं पिंटू दीवाना राजेंद्र सिंह ओबराय, लिखते हैं कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है और विषय आज आपने अच्छा चुना है, मोबाइल ने हमारे रिश्तों को जोड़ा है तो अच्छी बात है जी। और ये हमारे श्रोता जो लिख रहे हैं, मैडम जी आपको हमारा नमस्कार आदाब। बिल्कुल नमस्कार जी, मोबाइल किसी कदर अच्छा भी है लेकिन बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक है। छोटे छोटे बच्चे बहुत ही जिद करते हैं, यहाँ तक कि मोबाइल ना देने पर रोने लगते हैं। बिल्कुल ऐसा भी होता है। और ये कहना है ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही ने हमें SMS किया है, आज़ाद नगर हरिद्वार उत्तराखंड से। और देखिए ये हमारे पास में SMS आया है इन श्रोताओं का, नर्मदा पार्क मंगल वेड़ा से हैं मास्टर आलम पटेल और मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल लिखते हैं, मोबाइल की वजह से पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई है। बिल्कुल आ गई है जी, और काफ़ी कुछ आसान भी हुआ है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इससे कितनी दूरियां बनानी हैं और कितना हमें इससे अपनी जो काम है वो करने हैं, ज़रूरी काम के लिए और परिवार के जो रिश्ते हैं उनको जोड़ने के लिए इसका सही इस्तेमाल करें, ना कि दूरियां बढ़ाने का ही काम करें। तो बी पॉजिटिव और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। और अभी मैं सुनवाती हूँ आपको एक और गीत।

मोबाइल के दुष्प्रभाव की चर्चा के साथ ये SMS आया है नांदेड़ से प्रकाश जैन का, लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन और पीआर जैन का, रश्मि शर्मा दीदी जी नमस्ते, नमस्ते जी। मोबाइल से दुष्परिणाम बताना चाहता हूँ, आँखें, हार्ट और ईयर पे बड़ा असर होता है क्योंकि दिन रात लोग मोबाइल में लगे रहते हैं।

ये SMS आया है भोपालगढ़ राजस्थान से। लिखने वाले श्रोता हैं धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा, पूजा परिहार। लिखते हैं आदरणीय मैडम जी नमस्कार। नमस्कार जी, आज आपने बेहतरीन विषय पर चर्चा की है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, इंसान इंसान से दूर हो गया है और इसका मुख्य कारण मोबाइल है। जब से डिजिटल युग का जमाना आया है, मोबाइल आया है, तो इंसान रिश्तों से दूर हो गया है। मोबाइल ने रिश्तों में बहुत दूरियां बना दी हैं। हर इंसान मोबाइल में खोया हुआ है, ना तो परिवार के साथ वक्त बिता सकता है, ना समाज में कहीं अपना वक्त दे सकता है, ना किसी रिश्तेदार को अपना वक्त दे सकता है। सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में खोया हुआ है और इंसान अपनी आंख तक ऊंची नहीं कर सकता। उसे ये भी नहीं पता कि उसके सामने कौन खड़ा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए पर कुछ समय तक, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयेत। किसी भी चीज की अति बहुत ही हानिकारक होती है, इसलिए रिश्ते में तालमेल बिठाए रखिए और मोबाइल का

यथासंभव थोड़ा प्रयोग कीजिए और उचित प्रयोग कीजिए। बिल्कुल सही बात है। और ये हमारे श्रोता हमें लिख रहे हैं अपना संदेश, लिखते हैं ये श्रोता अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा लिखते हैं, हमारे लिए तो मोबाइल बहुत उपयोगी है क्योंकि इसकी वजह से हम अपने परिवारजनों से वीडियो कॉल के माध्यम से उनके हालचाल पूछ लेते हैं और उनसे बातचीत होती है। तो हमारे लिए मोबाइल अच्छी टेक्नोलॉजी है। और ये कहना है कि मोबाइल की वजह से बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। बर्फ गांव नांदूरा से शिवाजी उगले और राहुल उगले का, और ये एसएमएस हमें भेजा है गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर ने। ये आज का विषय आपने बहुत अच्छा चुना है, मोबाइल से हम। आकाशवाणी मथुरा से अपने अच्छे दोस्तों से भी आपने मिलवाया है, और मोबाइल है तो दुनिया है, हम एक दूसरे के नज़दीक आ गए हैं। बिल्कुल, मोबाइल के कारण हम एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। और ये एसएमएस आया है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा का, मोबाइल के होने के दोनों पहलू हैं, अगर इसको सही इस्तेमाल किया जाए तो इसके जैसा साथी नहीं है, और इसका लिमिट से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो ये अपनों से दूर कर रहा है, परिवार में स्नेह पर असर पड़ता है, बच्चों से दूर रहेंगे तो बच्चों पर भी इसका असर पड़ेगा, उनके भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है, तो थोड़ी सतर्कता जरूरी है। और ये हैं फोटानी चौक नरहन स्टेट से ललन मिश्रा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह मोबाइल के अपने फायदे और नुकसान हैं। संप्रेषण से व्यक्ति न केवल अपनी बातों, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान करता है बल्कि खुद को मानसिक तौर पर सुखद अवस्था में भी पाता है। सामाजिक तौर पर स्वच्छ संबंध का निर्माण करने में मोबाइल अहम भूमिका निभा रहा है, और अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करें। तो चलिए, बहुत सारे संदेशों के साथ अब कार्यक्रम को देते हैं यही विराम, और फिर से किसी और नए विषय के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस, ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ब्रजलोक गीत। कलाकार हैं रामेश्वर दयाल शर्मा।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोकगीत, प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं रामेश्वर दयाल शर्मा के स्वर में कुछ लोकगीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
4: ब्रो, ये फटा है।
5: सुन, कटे फटे या पुराने नोट को
6: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
4: वाओ, नया नोट मिलेगा?
5: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
6: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रजलोकगीत। आज इस कार्यक्रम में आपने रामेश्वर दयाल शर्मा के स्वर में कुछ ब्रजलोकगीत सुने। इसी के साथ कार्यक्रम ब्रजलोकगीत संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज

सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई है। इस बैठक में उन्होंने शी चिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

लीजिए सुनिए हमारी दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आपसे कुछ ही देर में बहने सुनेंगी कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। साथ ही दूसरा विषय रहेगा विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी कार्यक्रम में सुनिएगा वार्ता गर्मियों में सौंदर्य सुरक्षा। वार्ताकार होंगी अंजू शर्मा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं दिन में 1:45 पर। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत पेश किया जाएगा दिन में 2:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी संध्या 5:30 पर कार्यक्रम युववाणी के साथ। आज की बात के अंतर्गत चर्चा के विषय रहेंगे विश्व मधुमक्खी दिवस और सुमित्रा नंदन पंत जयंती। इसी कार्यक्रम में सुनिएगा ये भेंटवार्ता युवा कलाकार से भेंटवार्ता पूजा माहौर से डॉक्टर लिली खन्ना की बातचीत।

चर्चा के विषय रहेंगे स्वरोजगार अपनाएं। साथ ही चर्चा का विषय रहेगा कृषि आधारित उद्योग धंधे। इसी कार्यक्रम में सुनिएगा भेंटवार्ता, लाभकारी है मधुमक्खी पालन। वार्ताकार होंगे बीनू कुमार और इनसे भेंट करेंगे देवराज कृष्ण दीक्षित। भक्ति पर एक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन का समय रहेगा। संध्या 6:45। संध्या 7:05 पर सुनिएगा ब्रज साहित्य कार्यक्रम में ब्रज काव्य सुधा। आज की कवि होंगी पूनम शर्मा। संध्या 7:31 पर सुनिएगा कार्यक्रम शाम सुहानी। रात्रि 8 आप सुनेंगे फिल्म संगीत। एक ही फिल्म से कार्यक्रम पेश किया जाएगा रात्रि 8:30 पर। कार्यक्रम सुहानी तराने लेकर हम हाजिर होंगे रात्रि 9:15 पर। चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 10:00। रात्रि 10:00 सुनिएगा फिल्म संगीत। रात्रि 10:30 पर कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे आनंद कुमार मलिक का ध्रुपद धमार गायन।

अभी आप सुन रहे थे हमारी दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए देशगान।

0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।
1: सही उपाय अपनाएं, लू से खुद को बचाएं।
2: जी हाँ, बाहर निकलते वक्त गमछा, टोपी, चश्मा एवं छाती का प्रयोग करें। चेहरे, सिर और गर्दन पर गीला कपड़ा रखें।
1: छाछ, लस्सी, नमक, चीनी का घोल, नींबू पानी और आम के पना का सेवन करें तथा संतुलित, हल्का व नियमित भोजन करें।
2: बार बार पानी पिएं, ठंडे पानी से नहाएं, हल्के सूती कपड़े पहनें, दिन में खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें।
1: चाय, कॉफी जैसे गर्म पेय का सेवन न करें। तेज धूप में बाहर न निकले। चक्कर या घबराहट हटाने पर डॉक्टर को दिखाएं।
2: पालतू जानवरों को छांव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने दें।
1: ये सूचना उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
2: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम ना करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
2: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
2: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अब बहने सुनेंगी कार्यक्रम वनिता लोक। आज का कार्यक्रम लेकर आपके साथ है अंतिम गौतम।

वनिता लोक कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो बहनों? उम्मीद करते हैं अच्छी ही होंगी, क्योंकि इस समय गर्मी का जो मौसम है वो पूरे तेज पर है। जो सूर्य देव हैं वो अपना प्रकोप दिखा रहे हैं और सभी लोग इस बढ़ते तापमान के कारण बेहाल भी हैं। और बहनों, बढ़ते तापमान और गर्मी के प्रकोप के कारण हमारे प्रशासन ने भी बच्चों के सभी स्कूल बंद करवा दिए गए हैं, अर्थात उनके स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। और छुट्टियां वैसे तो आगे भी होती थी, लेकिन अभी गर्मी के कारण अभी से बच्चों के स्कूल में छुट्टियां पड़ गई हैं। गर्मियों की छुट्टियों का मतलब होता है ढेर सारी मौज मस्ती, न जल्दी उठने की चिंता, न स्कूल कॉलेज जाने की कोई भी परवाह। परवाह है तो बस खेल कूद की, मस्ती की। लेकिन पेरेंट्स को यही ख्याल रहता है कि इस समय जो छुट्टियों का समय है, क्यों ना इस समय का सदुपयोग कर लिया जाए। और ये समय का सदुपयोग हमें कैसा करना है, इसके लिए बहनों हम बात करते हैं कि संसार की सबसे मूल्यवान जो वस्तु होती है वह समय ही होती है, क्योंकि जो समय बीत गया उसे हम दोबारा कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः जो समय हमें छुट्टियों का मिला है उसके महत्व और मूल्य को जरूर समझें। गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग हम कर सकते हैं कुछ ऑनलाइन शॉर्ट टर्म कोर्स करके। इन कोर्सों को हम यदि पूरा करते हैं तो शॉर्ट टर्म कोर्स से हमारी नॉलेज तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ स्किल भी बढ़ता है और इससे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी बढ़ता है। गर्मियों की छुट्टियों को सदुपयोग से व्यक्तित्व विकास के लिए भी किया जा सकता है। और वो कैसे किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में अपने शौक होते हैं, बहुत सी इच्छाएं होती हैं, लेकिन पढ़ाई के दबाव के कारण, समय न मिलने के कारण अपने शौकों को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो बहनों, ये जो हमें छुट्टियाँ मिलती हैं, इन छुट्टियों में हम कोई भी कोर्स कर सकते हैं जो हमें पसंद है, जो हमारा शौक है, जो हमारी हॉबी है। ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे मॉडलिंग है, एरोबिक स्केटिंग है, कोरियोग्राफर है, एक्टिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट का है। और साथ ही साथ खेल कूद की बात करें तो हम हॉकी है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, फुटबॉल है। साथ ही साथ जब बात संगीत की होती है तो हम बहुत से बच्चों को संगीत पसंद होता है, तो इसमें हम अलग तरीके से संगीत भी सीख सकते हैं, बाद संगीत सीख सकते हैं, नृत्य, डांस, इसके साथ साथ हम भांगड़ा भी सीख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज इस समय गर्मियों की छुट्टी में चलाए जाते हैं, जिससे बच्चे अपनी हॉबी को जागृत कर सकें और कुछ नया सीख सकें। क्योंकि ये छुट्टियों में आपने देखा होगा बहनों, बहुत जगह पर नए नए कोर्सों का आयोजन होता है। और वो जो कोर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि दोपहर के समय हों, वो सुबह के समय और शाम के समय कोर्सों का आयोजन होता है, जिससे बच्चे गर्मी से भी बच सकें और अपने शौक भी पूरा कर सकें। बहनों, ये सब शौकों के बावजूद भी इन गर्मियों की छुट्टी में हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए, और वो है कि हम बच्चों को कहीं ना कहीं घुमाने के लिए अवश्य ले जाएं। और ख़ास तौर पर तो हम यही कहेंगे कि अपने पैतृक गांव में बच्चों को अवश्य ले जाएं, जिससे बच्चे गांव की संस्कृति से भी जुड़ेंगे, वहां की परंपराएं जानेंगे, वहां की हर चीज़ से बच्चे जुड़ेंगे। और जब ये सब चीज़ से जुड़ेंगे तो हमारी जो परंपरा है, हमारे जो संस्कार हैं, उनकी जानकारी भी उन्हें मिल ही जाएगी। तो बहनों, ये समय है मौज मस्ती का, खेल कूद का, तो आप भी कुछ समय के लिए बच्चों के साथ बच्चे ही बन जाएं और पूरी मस्ती इन छुट्टियों का आनंद लें।

0: बनो, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और गर्मियों की छुट्टी में बच्चों को घुमाने जरूर लेना चाहिए। और यदि आप ले भी जा रहे हैं बच्चों को गर्मियों की छुट्टी में कहीं घुमाने, मान लीजिए पैतृक गांव ही ले जा रहे हैं, तो ऐसे में एक चीज़ का विशेष ख्याल रखें कि गर्मी का समय है, गर्मी से बचने के लिए आप स्वास्थ्य की दृष्टि से और सौंदर्य की दृष्टि से अपने पहनावे का, अपने खान पान का विशेष ख्याल रखें। यदि आप बाहर जा भी रहे हैं तो अपने साथ खास तौर पर पेय पदार्थ अर्थात पानी या नींबू वगैरह अवश्य लेकर ही जाएं। और यदि जा भी रहे हैं तो कॉटन के कपड़े अर्थात सूती वस्त्रों का उपयोग करें और खास करके ढक कर जाएं। अपना चेहरा है, सिर है, उसको ढक कर अवश्य जाएं, क्योंकि गर्मियों में सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है हमारी त्वचा, हमारा सौंदर्य। जैसे ही हम धूप में निकलते हैं तो जो सूरज की परावैक्टी जो किरणें हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं हमारी त्वचा को, स्किन को। तो बहनों, ऐसी ही वार्ता आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, गर्मियों में सौंदर्य सुरक्षा। वार्ताकार हैं अंजू शर्मा।
1: आजकल गर्मियों का मौसम है। सूर्य देवता की प्रचंडता का प्रभाव पेड़ पौधों, पशु पक्षियों व पूरी प्रकृति पर पड़ रहा है। ऐसे में नारी सौंदर्य भी सूर्य की तपती रश्मियों से अछूता नहीं रहा है। गर्मी के मौसम में आप अपने सौंदर्य की रक्षा किस प्रकार करें, आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ। गर्मी का सबसे ज्यादा असर आपके चेहरे और बालों पर ही पड़ता है। सिर खुला होने की वजह से तेज धूप और धूल मिट्टी का सामना सबसे पहले बालों को ही करना पड़ता है। इस मौसम में बालों में पसीना आता है, जिसके कारण बाहर जाने पर सिर में धूल मिट्टी जम जाती है। अक्सर डैंड्रफ की शिकायत भी बढ़ जाती है और बाल झड़ने लगते हैं। कई बार गंदगी की वजह से गर्मी के मौसम में सिर की त्वचा में इन्फेक्शन भी हो जाता है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने बालों की क्वालिटी को अच्छी प्रकार पहचानें। अगर आपके बाल ऑयली हैं तो सप्ताह में कम से कम 3 बार शैम्पू करें। ड्राई हेयर हैं तो 2 बार शैम्पू करें। शैम्पू से पहले बालों में तेल से अच्छी तरह मालिश करके भाप लें और बालों को धो लें। इससे सिर की त्वचा अच्छी तरह साफ हो जाएगी और आम तौर पर गर्मी के मौसम में बालों में होने वाली खुजली और इन्फेक्शन की शिकायत भी दूर होगी। इसके अतिरिक्त जब भी आप गर्मी के मौसम में बाहर जाएं, अपने बालों को ढक कर रखें, सिर पर स्कार्फ बांधें या फिर छाता लेकर चलें। इसके अतिरिक्त अपने खान पान का भी ध्यान रखें। प्रोटीन युक्त चीजों का अधिक इस्तेमाल करें। गर्मी से बचने के लिए कोल्ड ड्रिंक की बजाय ठंडा दूध, जूस, लस्सी अधिक पिएं। आप गर्मी के मौसम में मेथी भिगाकर बारीक पीस लें। इसे आधे घंटे तक अपने सिर पर लगाकर छोड़ दें, फिर धो दें। यह गर्मी के मौसम में बालों के लिए बेहतरीन कंडीशनर है। इसके नियमित इस्तेमाल से बाल भी लंबे होते हैं और उनमें चमक भी आती है। प्रत्येक स्त्री की तमन्ना होती है कि वह सुंदर दिखाई दे, परंतु गर्मियों में सूर्य का तेज अच्छे खासे दिखने वाले व्यक्तित्व को कांतिहीन बना देता है। गर्मी के मौसम में आप अपने चेहरे की किस प्रकार सुरक्षा करें, अब यह मैं आपको बताती हूँ। कहा जाता है कि खूबसूरती देखने वाले की आंखों में बसती है, लेकिन यह भी सच है कि खूबसूरती इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप किस सावधानी से अपने प्राकृतिक सौंदर्य की देखभाल करती हैं। गर्मी के मौसम में आप अपने चेहरे को दिन में कम से कम 4 बार अवश्य धोएं। जहां तक हो सके साबुन से परहेज रखें। साबुन की बजाय आप अपने चेहरे को बेसन में कच्चा दूध या मलाई मिलाकर धो सकती हैं, या फिर बेसन को प्राकृतिक स्क्रैप की तरह

जैसे भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे चेहरे पर जमी धूल मिट्टी हट जाएगी और आपका चेहरा एक अनोखी आभा से चमक उठेगा। जब चेहरे पर जमी धूल मिट्टी हट जाएगी तो आपको मुहासों या गर्मी के मौसम में चेहरे पर निकलने वाले गर्मी के दानों से भी निजात मिल जाएगी। यदि आपकी त्वचा ऑयली है तो आप जेल क्लींजर का प्रयोग कर सकती हैं। टोनर केवल अल्कोहल रहित ही लगाएं। क्लींजर के बाद में इसका प्रयोग करें। सनस्क्रीन से परहेज ना करें, चाहे त्वचा आपकी किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। स्त्रियों को चाहिए कि जहां तक हो सके अपने आप को 10 बजे से लेकर 3 बजे तक की धूप से बचाएं। परंतु ऐसा असंभव है। कामकाजी महिलाओं को ही नहीं बल्कि घरेलू महिलाओं को भी अपने सौंदर्य को बरकरार रखने का समय नहीं मिल पाता। घरेलू महिलाएं पूरा दिन किचन में काम करती हैं, दोपहर का समय ही उनके पास खाली होता है जब वे अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए बाजार निकलती हैं। उस समय सूर्य देवता अपनी तपती किरणों का प्रभाव उनके चेहरों पर डालने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। आइए अब मैं आपको आपकी किचन में ही आपके सौंदर्य की सुरक्षा के उपाय बताती हूँ, जिसे आप किचन में कार्य करते हुए भी कर सकती हैं। दूध त्वचा के लिए काफी फायदेमंद होता है, खासकर खुश्क त्वचा के लिए। गर्मी के मौसम में कच्चा दूध जल्दी खराब हो जाता है, अतः आप सुबह जल्दी उठकर दूध आते ही उसे गर्म करना रख देती हैं। बस यहीं से आपकी सौंदर्य सुरक्षा भी शुरू हो जाती है। दूध गर्म करने से पहले थोड़ा कच्चा दूध दोनों हाथों से अपने चेहरे पर लगाइए, इससे त्वचा में निखार आता है। दही का प्रयोग गर्मियों में सभी घरों में किया जाता है। आप दही का प्रयोग पूरे शरीर पर टोनर की तरह कर सकती हैं। दही में नींबू का रस मिलाकर लगाने से बेजान त्वचा में भी जान आ जाती है। गर्मी के मौसम में खीरे का प्रयोग सलाद इत्यादि में किया जाता है, परंतु गर्मी के मौसम में हम खीरे के द्वारा अपने सौंदर्य की भी सुरक्षा कर सकते हैं। खीरे को कद्दूकस करके उसका रस चेहरे पर लगाने से चेहरे पर गर्मी से बने धब्बे दूर हो जाते हैं। इसे निचोड़कर कद्दूकस किया हुआ खीरा आंखों पर टिक्की बनाकर लगाने से गर्मी से लाल पड़ गई आंखों को ठंडक पहुंचती है। गर्मी के मौसम में खरबूजा खाने किसे पसंद नहीं आते, अर्थात सभी खरबूजा खाना पसंद करते हैं। खरबूजे के द्वारा भी हम गर्मी के मौसम में अपने चेहरे की सौंदर्य सुरक्षा कर सकते हैं। सर्वप्रथम खरबूजे के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे अच्छी प्रकार से मैश करें, चेहरे व गर्दन पर मलकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। थोड़ी देर बाद ठंडे पानी से धो लें। इससे रंग में निखार आता है और चेहरे पर चमक बढ़ जाती है। खरबूजे का रस चेहरे पर लगाने से धूप से चेहरे पर आया कालापन भी दूर हो जाता है। गर्मी के मौसम में घर से निकलते समय कम से कम 2 या 3 गिलास पानी अवश्य पिएं। तेज धूप का आंखों पर भी बहुत गहरा और घातक असर पड़ता है। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने का एक यह भी कारण है। यदि यहाँ थोड़ा फाउंडेशन लगा लिया जाए तो यह त्वचा के लिए रक्षात्मक होगा। नाखूनों पर भी गर्मी की तपिश का बहुत प्रभाव पड़ता है, वे कमजोर होकर जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं। नाखूनों के नीचे त्वचा छिलने लगती है। इससे स्थिति से बचने के लिए आप हर 2 घंटे बाद इनकी सनस्क्रीन से मालिश कर सकती हैं। अगर इस बात का जरा भी आभास हो कि आपका सिर गर्मी से चकराने लगा है तो तुरंत किसी पेड़ की छाया में जाएं। पानी पास में हो तो मुंह पर पानी के छींटे डालें, पानी पिएं और संभव हो तो जूस इत्यादि का सेवन करें। तेज गर्मी में काफी से काफी दूर रहें। यह गर्मी के मौसम में आपके सौंदर्य व स्वास्थ्य दोनों के लिए ही हानिकारक है। गर्मी के मौसम में घमौरियों की समस्या एक आम समस्या है। घमौरियों से आप अपनी सुरक्षा किस प्रकार कर सकती हैं, अब मैं यह आपको बताती हूँ। आटे को दही में मिलाकर नहाने से पहले प्रभावित जगहों पर लगाएं। सूखने पर हाथ से मलकर

0: डाल दें। बराबर मात्रा में नीम, तुलसी, पुदीना और धनिये की पत्तियों का रस लें और इसे बोतल में भरकर फ्रिज में रख लें। इस लोशन को आप 7 दिनों तक स्टोर कर सकती हैं। गर्मी के मौसम में बाहर से घर लौटने पर इस लोशन को प्रभावित स्थानों पर लगाएं। इससे आपको न केवल घमौरियों से निजात मिलेगी बल्कि आपकी त्वचा भी कोमल होगी।
1: अभी बहने सुन रही थी ये वार्ता, गर्मियों में सौंदर्य सुरक्षा, वार्ता का थी अंजू शर्मा। तो बहनों, ये सही है कि गर्मी इस समय अपने चरम पर है और ऐसे में यदि हमें घर से बाहर जाना भी है, वैसे तो घर से बाहर जाना आप अवॉइड करें, हो सके तो दोपहर में घर से बाहर ना ही निकलें। यदि बहुत ज़रूरी है और हमें घर से बाहर जाना ही है तो अपने साथ पानी की बोतल अवश्य लेकर जाएं, साथ ही साथ छाता भी लेकर जाएं। और पानी में हो सके तो नींबू, नमक और हल्की सी चीनी का उपयोग भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ बहनों, यदि इस मौसम में आप घर से बाहर जा रहे हो तो सूती वस्त्रों का उपयोग करें, अर्थात जो भी आप कपड़े पहने वो सूती हों, साथ ही साथ हल्के रंगों के कपड़े आप उपयोग करें। और बहनों, जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आप अपने मुंह को जरूर ढकें और सिर को भी ढक कर ही जाएं, क्योंकि ये जो धूप है हमारे सौंदर्य के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। और जहाँ तक हम तो यही कहेंगे कि धूप में बाहर निकलना आप अवॉइड ही करें, बाहर आप निकले ही ना, और यदि निकलना ही पड़ता है तो अपना ख्याल विशेष रखें। यदि आप अपना ख्याल रखेंगे तभी तो आप सभी का ख्याल रख पाएंगे।

बेनो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 20 मई है और आज हम मना रहे हैं विश्व मधुमक्खी दिवस। बेनो, मधुमक्खी आप सभी जानते हैं कि जो मधुमक्खी होती है, ये सब छोटे छोटे जीव हमारे पर्यावरण और हमारे पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये छोटे जीव जो होते हैं, जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र और स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, साथ ही साथ जितने हमारे कीटनाशक के जो प्रयोग हो रहे हैं, उनके प्रयोग के कारण इनका निवास स्थान को नुकसान हो रहा है और मधुमक्खी का जो अस्तित्व है वह खतरे में है। यह दिन इन जीवों की रक्षा करने के लिए विश्व स्तर पर कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करता है। बहनों, मधुमक्खी दिवस जो है, मधुमक्खियों के व अन्य परागकणों की महत्व को उजागर करने और जैव विविधता के संरक्षण और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। यह दिवस आधुनिक मधुमक्खी पालन तकनीक के अग्रदूत एंटोन जांसा की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिनका जन्म 20 मई 1734 को स्लोवेनिया में हुआ था। तो बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि मधुमक्खी का हमारे जीवन में कितना महत्व है, मधुमक्खी से ही हमें कितनी सारी चीजें प्राप्त होती हैं। शहद के विषय में तो आप जानते ही हैं कि शहद हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ मधुमक्खी से हमें मोम की प्राप्ति भी होती है। और बहनों, सबसे बड़ी बात, हम मधुमक्खी से एक चीज सीखते हैं कि संयुक्त रूप से रहना, एक होकर रहना। आप ये जो संदेश है हमें मधुमक्खियों से ही मिलता है कि हमें एकता को बनाए रखना है। और मैंने घड़ी की सुई हमें संकेत कर रही है कि हम वनितालोक कार्यक्रम समाप्त करने की आपसे अनुमति लें। तो वनितालोक कार्यक्रम समाप्त करने की अंतिम गौतम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम वनिता लोक। आज का कार्यक्रम लेकर आपके साथ रही अंतिम गौतम। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

अलका याज्ञिक और उदित नारायण को आपने सुना फिल्म गुप्त में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: To Congolese health authorities, the country has recorded 543 suspected cases and 32 confirmed infections, while neighbouring Uganda has reported 2 confirmed cases. On to sports. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders will take on Mumbai Indians at the iconic Eden Gardens in Kolkata. The match will begin at 7:30 p.m. Yesterday, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in a high-scoring match in Jaipur last night, keeping their playoff hopes alive. Rajasthan Royals overhauled the massive target of 221 runs with 5 balls to spare. Benchmark domestic equity indices were trading marginally lower in the afternoon session. The Sensex dropped 101 points to 75,100, while the Nifty dipped 24 points to 23,594 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome in a short while from now to boost economic cooperation. Prime Minister Modi and Giorgia Meloni outline roadmap for India-Italy strategic partnership, highlight several economic initiatives in a joint article. DRDO completes trials of drone-launched unmanned precision-guided missile. Defence Minister terms it a strategic milestone. Supreme Court rejects petition challenging centre's decision to undertake caste enumeration. Severe heatwave grips north and central India. Temperature breaches 44-degree mark at several places. And in IPL cricket, hosts Kolkata Knight Riders to take on Mumbai Indians at Eden Gardens. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MV3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं

0: भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों के

0: निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तर कन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
1: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
3: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलुओं का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULBGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी हाँ साथियों, चिट्ठी आने का मतलब ढेर सारा प्यार। उस चिट्ठी में हमारे फौजी भाइयों के लिए माँ का आशीर्वाद, बहन की अपने भाई के लिए मंगल कामना, भाई का प्यार, पिता का आशीर्वाद और पत्नी की वो पथराई आंखें जो कब से प्रतीक्षा कर रही हैं कि उनके प्रिया प्रीतम घर कब आएंगे।

जी हाँ साथियों, ऐसी चिट्ठियां जब हमारे फौजी भाइयों को मिलती हैं, हालांकि अब ये संदेश कम हो गए हैं क्योंकि अब चिट्ठियां भी लोग कम लिखते हैं, लेकिन जब भी इन संदेशों को हमारे फौजी भाई पढ़ते हैं या पढ़ते थे, उनकी जो आंखें हैं वो कई बार भर आती थीं, क्योंकि घर की याद तो सबको आती है। लेकिन इससे बड़ी बात ये होती है कि वो परिवार को अपना स्थान अलग रखते हैं, लेकिन जिस सेवा के लिए वो अपनी देश की सेवा के लिए, अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए जहाँ भी वो तैनात हुए हैं, उस तैनाती पर वे फिर उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं, यानी देश सेवा, परम सेवा, और बस इस सेवा में रहकर ही वो एक ऐसे योद्धा बन जाते हैं जिनके लिए हम कई बार अपने हृदय से ऐसे योद्धाओं को नमन करते हैं, वंदन करते हैं।

माँ लक्ष्मी अय्यर को आपने सुना फिल्म फना में, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत जिसे हमने लिया है फिल्म इंडिया फिल्म पीपली लाइव से। स्वर हैं इंडियन ओशियन के।

इंडियन ओशियन को आपने सुना फिल्म पीपली लाइव में। इस गीत के साथ ही सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3 बज चुके हैं, हमारी प्रथम सभा के प्रसारण संपन्न होते हैं। अपनी दूसरी सभा में संध्या 5:30 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

एफएम 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। इस मीटर पर द्वितीय सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा वाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों कहीं परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं और कहीं परीक्षाएं चल भी रही हैं। हमारे कुछ युवा दोस्त अपने परिणाम भी जान चुके हैं और कुछ अपने परीक्षा परिणामों की प्रतीक्षा में है। ऐसे में निश्चित रूप से धड़कने बंधी हुई होती हैं कि उन्हें परिणाम कैसा प्राप्त होगा। तो हमारी शुभकामनाएं हैं और आशा करते हैं कि आपका परिणाम भी बहुत अच्छा होगा और यह भी उम्मीद जता रहे हैं कि आप अपने सभी कार्यों को बड़े अनुशासित ढंग से, लगन से और निष्ठा के साथ कर रहे होंगे। दोस्तों आज विश्व मधुमक्खी दिवस है। इस अवसर पर आज हम बात करेंगे प्रकृति के उन छोटे से जीवों की जिनके बिना हमारी धरती का जीवन अधूरा हो सकता है, मधुमक्खियां। दोस्तों जब भी हम मधुमक्खी का नाम सुनते हैं सबसे पहले शहद याद आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खियां केवल शहद ही नहीं देती बल्कि हमारी खाद्य व्यवस्था और पर्यावरण की सबसे महत्वपूर्ण संरक्षक भी हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया की लगभग 75% फसलों का परागण मधुमक्खियों और अन्य परागण करने वाले जीवों द्वारा होता है। यानी हमारे खेतों में फल, सब्जियां, दालें और फूलों की अच्छी पैदावार में मधुमक्खियों की बड़ी भूमिका है। यदि मधुमक्खियां न हों तो भोजन का संकट गहरा सकता है। इसी महत्व को समझाने के लिए हर वर्ष आज के दिन यानी 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को मधुमक्खियों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। लेकिन दोस्तों चिंता की बात यह है कि आज मधुमक्खियों की संख्या तेजी से घट रही है। कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और पेड़ों की कटाई इनके अस्तित्व के लिए खतरा बन रहे हैं। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखें, अपने आसपास अधिक से अधिक फूलों वाले पौधे लगाएं, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कम करें और

प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में सहयोग दें। दोस्तों, मधुमक्खियां हमें टीम वर्क और अनुशासन का भी संदेश देती हैं। छोटा सा जीव होकर भी ये पूरी निष्ठा से अपना कार्य करती है और प्रकृति को जीवंत बनाए रखती है। तो आइए इस विश्व मधुमक्खी दिवस पर हम संकल्प लें कि इन नन्हे परिश्रमी जीवों की रक्षा करेंगे और पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएंगे।

0: दोस्तों, इस समय अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र, और प्रोग्राम सुन रहे हैं युववाणी, मेरे यानी अरविंद कुमार के साथ। आइए अब आपको सुनवाते हैं युवा कलाकार पूजा माहौर से डॉक्टर लिली खन्ना की बातचीत।
1: आज हमारे बीच है युवा कलाकार कुमारी पूजा माहौर। पूजा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं?
2: मैं कक्षा 9th में पढ़ती हूँ।
1: अच्छा, 9th में पढ़ती हैं, और क्या क्या सब्जेक्ट हैं आपके पास?
2: मेरे पास तबला वादन है, मैथ है, और
1: अच्छा
2: संस्कृत है,
1: हाँ, और
2: और काफी जो अन्य विषय हैं।
1: मतलब सभी विषय हैं,
2: सभी
1: लेकिन
2: विषय हैं।
1: अच्छा, उसके साथ साथ आप ये बता रही हैं कि आपके पास तबला भी
2: तबला
1: है ना, वाद्य
2: वादन
1: है, तो
2: जी
1: इसका मतलब है कि आपको संगीत में रुचि
2: बहुत।
1: है ना, बहुत रुचि है। तो 9 से ही आपने तबला ले लिया है,
2: हाँ, 9th से ही मैंने
1: और
2: तबला लिया।
1: संगीत गायन नहीं लिया आपने?
2: संगीत गायन मैंने 6th में लिया था,
1: अच्छा, अब
2: नाइन्थ में मैंने वादन लिया है।
1: अच्छा, तो ये बताइए कि आपको ये गाने गायन का और वादन का शौक कहाँ से लगा और कब से है?
2: मैं छोटी सी थी और मेरी मम्मी चरकुला नृत्य करती थी।
1: अच्छा, आपकी मम्मी चरकुला नृत्य करती हैं? हाँ, किस
2: हाँ,
1: नाम से?
2: मेरी मम्मी का नाम है गायत्री देवी।
1: अच्छा, तो आप भी देखती होंगी उन्हें।
2: हाँ, जब जब हम मम्मी को देखते हैं तो हमको भी ये लगता है कि हम भी सीखें और हम भी आगे बढ़ें और हमारा भी आगे चल के नाम रोशन हो, हम ये चाहते हैं।
1: अच्छा, तो आप अब गायन में, आपने संगीत गायन सीख रही हैं, मतलब गाती हैं?
2: गाना तो खैर आता है लेकिन इतना नहीं, कम है, लेकिन डांस में ज्यादा रुचि है।
1: अच्छा, नृत्य में ज़्यादा रुचि है,
2: जी
1: और कक्षा 6 में तो आपने संगीत गायन लिया, और अब आप संगीत वादन तबला लिया हुआ है आपने, तो ये बताइए कि आपने कहीं से प्रशिक्षण भी लिया है?
2: जी नहीं,
1: अच्छा, अपनी घर से ही
2: अपने
1: आपने?
2: मम्मी को देख के हमने।
1: अच्छा, और ये बताइए कि जैसे आप नृत्य करती हैं और गाती भी हैं, कहीं कहीं आपने अपना परफॉर्मेंस दिया है,
2: हाँ,
1: कहाँ पर?
2: काफ़ी जगह दिया है, मथुरा में भी दिया है, जन्मभूमि पे, लखनऊ में,
1: अच्छा, लखनऊ में
2: और
1: कहाँ पर?
2: लखनऊ में राजीव भवन में जन्माष्टमी को वहाँ कार्यक्रम हुआ था,
1: अच्छा,
2: हमने वहाँ पे भी दिया था।
1: तो आपने नृत्य किया था या भजन गाया था?
2: नृत्य किया था हमने,
1: अच्छा
2: होली मयूर, लठामार होली,
1: अच्छा
2: ब्रज की जो होते हैं, और लोकगीत।
1: नहीं, तो आप अकेली हैं या कोई ग्रुप के साथ जाती हैं?
2: हमारा ग्रुप है,
1: अच्छा
2: हम
1: अच्छा
2: ग्रुप के साथ जाते
1: अच्छा
2: हैं।
1: अच्छा तो उसमें आपने लठामार होली और होली पर नृत्य किया था,
2: हाँ,
1: अच्छा, मयूर नृत्य भी किया
2: मयूर
1: था,
2: नृत्य था।
1: नृत्य। और क्या करती हैं, और
2: मैं
1: कहाँ कहाँ कहाँ गई हैं आप?
2: कोलकाता गई हूँ,
1: अच्छा,
2: लखनऊ गई हूँ, बॉम्बे गई हूँ, पटना, बिहार, टाटा नगर भी गई हूँ।
1: इतनी जगह आपने अपना प्रदर्शन किया है
2: जी
1: गायन और नृत्य का,
2: जी
1: है? तो ये हम ये चाहेंगे कि आप हमारे युवा साथियों को भजन या गीत के कुछ पंक्तियां सुना दें, है?
2: प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, क्या भरो

जाएंगे, वादा करके वो हम से मुकर जाएंगे, प्रीत मोहन से की।

0: जाएंगे।
1: बहुत अच्छा। आप ये कह रही थी कि हम नृत्य में रुचि ज़्यादा है, और आपने बताया कि हमने मयूर नृत्य किया और होली नृत्य किया। जैसा कि आपने पहले बताया कि आपकी जो मम्मी हैं वो चरकला नृत्य करती हैं, और ब्रज में चरकला नृत्य का बहुत, तो ये बताइए आपने भी सीख रही हैं?
0: चरकला नृत्य
1: अभी नहीं कर पा रही
0: अभी
1: हैं,
0: नहीं कर
1: लेकिन
0: पा
1: आगे
0: रही,
1: सीखने की,
0: आगे सीखने की मेरी

0: मेरी ये भी इच्छा है कि मैं क्लासिकल डांस सीखूं और उसमें भी मैं आगे बढ़ूं।
1: अच्छा, तो ये बताइए, आप इतनी जगह आपने बताया कि हम लखनऊ भी गए, कैलकटा भी गए, बॉम्बे भी गए, आप पढ़ाई भी कर रही हैं और ये भी कर रही हैं, ये साथ साथ कैसे आप सामंजस्य बिठाती हैं?
0: जैसे कि अगर मैं मथुरा में होती हूँ तो मैं कॉलेज तो जाती हूँ और घर पे भी हम पढ़ते हैं, और जैसे कि हमारा कहीं से कार्यक्रम के लिए फोन आता है तो हम कॉलेज में एप्लीकेशन लगाते हैं और उसके बाद हम चले
1: तो
0: जाते।
1: इसका पढ़ाई पे असर नहीं पड़ता जब आप 2-3 दिन के लिए जाती हैं तो?
0: नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं, हम बुक्स ले जाते हैं वहाँ पे, अगर वहाँ पे बाई चांस हमको समय भी मिलता है तो हम फ्री टाइम में वहाँ पे याद वगैरह कर
1: वहाँ
0: लेते
1: भी
0: हैं,
1: पढ़ती हैं,
0: वहाँ भी
1: है ना?
0: पढ़ते
1: हाँ,
0: हैं
1: क्योंकि पढ़ाई भी आपके साथ चल रही है और आपकी
0: हम,
1: जो कला है
0: वो भी
1: वो।
0: साथ है।
1: ये बताइए कि आपका जहाँ आपने नृत्य किया या गीत भजन गाए, तो वहाँ कोई पुरस्कार या सम्मानित भी हुए हैं कहीं?
0: हाँ,
1: हाँ
0: पुरस्कार हमको मिले हैं, कहीं पे ठाकुर जी की तस्वीर मिली है, सील्ड वगैरह हैं, सर्टिफिकेट हैं, गोल्ड मेडल हैं, और काफी पुरस्कार हमको मिले हैं वहाँ से।
1: अच्छा, तो ये ग्रुप के साथ आप जाती
0: हाँ
1: हैं?
0: जी, ग्रुप के साथ जाते
1: तो
0: हैं।
1: हमें ये बताइए कि और घर के कामों में रुचि है आपकी?
0: हाँ, घर के कामों में भी काफी रुचि है हमारी।
1: क्या क्या कर लेती
0: घर
1: हैं
0: में हम खाना बना लेते हैं,
1: मम्मी के साथ?
0: मम्मी के साथ खाना बना लेते हैं, इटते हैं, और टिकिया भल्ले जो भी कुछ होता है
1: मतलब अब ये
0: उस।
1: सीख रही हैं धीरे धीरे,
0: नहीं,
1: बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपने बता दी हमारे श्रोताओं को, बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए कि जैसा कि आपने कहा कि चरकुला नृत्य की जहाँ हम बात करें, तो उसके लिए कितनी देर प्रैक्टिस करती हैं आप?
0: प्रैक्टिस जैसे पढ़ाई, हमारे हम पहले पढ़ाई करते हैं, अगर पढ़ाई के बाद हमको जो समय मिलता है उसके बाद हम अपनी कला का रिहर्सल करते हैं।
1: तो आगे आपका और क्या भविष्य में क्या योजना है आपकी?
0: मेरी भविष्य में यही योजना है कि मैं आगे और भी डांस सीखूं और आगे बढ़ूं और अपना नाम रोशन करूं, और मेरी जो छोटी या बड़ी बहनें हैं मैं उनके लिए भी यही चाहती हूं कि वो सब ये सीखें और आगे बढ़ें, अपने माँ बापों का नाम रोशन करें।
1: मतलब कि जिनकी भी, जिनको जिस चीज़ में रुचि हो उसमें का भी ध्यान दें, और पढ़ाई तो चली रही है आपके साथ। पूजा, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने अपने जो मन की बात थी, अपनी रुचि के विषय में हमारे युवा श्रोताओं को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुनी लोक कलाकार, युवा कलाकार पूजा माहौर से डॉक्टर लिली खन्ना की बातचीत।

दोस्तों, अब आइए हम बात करते हैं साहित्य के उस महान कवि की जिनकी कविताओं में प्रकृति का संगीत सौंदर्य की मधुरता और मानवीय संवेदनाओं की कोमलता झलकती है। हम बात कर रहे हैं छायावाद के प्रमुख स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत की। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 को उत्तराखंड के कौसानी नामक रमणीय स्थान पर हुआ था। हिमालय की गोद में बसे प्राकृतिक सौंदर्य ने उनके मन को बचपन से ही गहराई से प्रभावित किया। यही कारण है कि उनकी कविताओं में प्रकृति सजीव होकर बोलती हुई प्रतीत होती है। दोस्तों, पंत जी ने हिंदी कविता को नई संवेदनशीलता और सौंदर्य बोध प्रदान किया। उनकी भाषा अत्यंत कोमल, संगीतात्मक और चित्रात्मक रही। उनकी प्रमुख कृतियों में पल्लव, गुंजन, युगांत और चितंबरा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रारंभ में उनकी कविता प्रकृति और सौंदर्य के इर्द गिर्द रही, लेकिन समय के साथ उनकी रचनाओं में मानवता, समाज और प्रगतिशील चिंतन भी दिखाई देने लगा। उनकी कृति चितंबरा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत केवल एक कवि नहीं बल्कि संवेदनशील मानवीय चेतना के स्वर थे। उनकी कविताएं आज भी पाठकों को प्रकृति से प्रेम करना और जीवन की सुंदरता को महसूस करना सिखाती हैं।

तो दोस्तों, अभी आपने सुना उस्ताद सुल्तान खान, शंकर महादेवन और कविता कृष्णमूर्ति के सुरों में हम दिल दे चुके सनम फिल्म का ये गीत। और इसी गीत के साथ ही युववाणी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। वे 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 6 बजने को हैं। अब हिंदी में समाचार होंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाद

0: में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। AI, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानने में के मामले में एकजुट हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षा काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र को एकजुट करने का एक सशक्त माध्यम है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरी टीम के परिणाम पर भी निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण, जिसमें चर्चा के विषय होंगे स्वरोजगार अपनाएं विश्व मधुमक्खी दिवस के संदर्भ में, और दूसरा विषय होगा कृषि आधारित उद्योग धंधे। इसी कार्यक्रम के तहत भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी, लाभकारी है मधुमक्खी पालन। वार्ताकार होंगे बीनू कुमार, जो एक मधुमक्खी पालक हैं, और इनसे बातचीत करेंगे देवराज कृष्ण दीक्षित। संध्या 6:45 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन प्रसारित किया जाएगा।

संध्या 7:05 पर कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक का समय होगा। संध्या 7:31 पर श्रोता सुनेंगे अपने व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्में गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी। रात्रि 8 बजे आप फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे। इस कार्यक्रम को रात्रि 9:15 और रात्रि 10 बजे भी सुना जा सकेगा। देशगान के प्रसारण का समय होगा रात्रि 8:20। रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे साजन का घर फिल्म के कुछ गाने। रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आनंद कुमार मल्लिक का ध्रुपद और धमार गायन प्रसारित किया जाएगा। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों के बारे में। श्रोताओं, आपके विशेष अनुरोध पर, आपके पत्रों एवं फोन कॉल्स पर आधारित आपके कार्यक्रम, आपके पत्र, आपके फोन का प्रसारण पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 12:30 से होगी। कार्यक्रम का प्रसारण रविवार दोपहर 1:30 पर होगा। श्रोताओं, आपको हमारे केंद्र के कार्यक्रम कैसे लगते हैं? आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में और क्या बदलाव चाहते हैं? अपने सुझाव टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके या पत्र के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। टेलीफोन करने से पूर्व मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। पत्र भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम आपके पत्र आपके फोन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र मथुरा वृंदावन निकट गायत्री तपोभूमि मथुरा पिन कोड है 2810003। सूचना समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संबंधी सूचना। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:10 हुए हैं। समय हो रहा है कार्यक्रम देशगान का। आइए सुनते हैं समवेत स्वरों में ये देशभक्ति परक रचना।

समवेत सुरों में अभी आप सुन रहे थे ये देशगान। इसी के साथ देशगान का ये कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रिजेस ग्रामीण। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं ममता रानी।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनन को हमारी राम राम। भैया देखो, आपको पता है ना, आज है 20 मई और आज के दिन हम अपने एक बहुत बड़े किसान भैयन के जो मित्र कीट हैं, बको नाम है मधुमक्खी, तो विश्व मधुमक्खी दिवस को मनावे हैं। जो किसान भैयन है का हमारे भाई रोजगार के रूप में वो अपनाए सके ना, क्योंकि जो हमारे किसान भैया हैं जो खेती कर रहे हैं, फल की फूल की या फसल है उनकी खेत में ठाड़ी भई हैं, तो वहाँ ते जी मधुमक्खी है का हमें शहद प्रदान कर दिए हैं। वो बक्सा से धर देते हैं खेतन के किनारे हैं, और बिन में मधुमक्खी आए के शहद लेके आमते माते पर परागण ते, और उनके तैयार है जातो वहाँ में रख जातो है, और फिर बाय हम अपनो व्यवसाय के रूप में अपनाए सकते हैं। देखो भैया कितने बढ़िया बात है, आपको कछु भी ना करना जाके काज है, पर आप जा रोजगार को अपना स्वरोजगार जरूर बनाए लो, क्योंकि खेती तो हर का कहते हैं आप करो ही हो खेतन में कछु ना कछु की, तो आपको मधुमक्खी पालन को जरूर करना चाहिए। और जाए रोजगार को हमारी बहने हैं और जो किसान भैया हैं जहाँ में अपनों बहनें खूब सहयोग कर सकते हैं, और जाके काजे हमारी जो बहन है जो है का ट्रेनिंग ले सकते हैं, और फिर जाकू सफल है सकत हो है कि ना है। अरे कोई पेट में ते सीख के ना आ मत है, कर कर के तो सब सीख जाते हैं और सब पाल लग जाते हैं। तो जाके काजे भैया, और सबसे उचित जो समय है वो है सितंबर ते अक्टूबर को। अगर आपको बक्सा रखनी है, आपको अपना व्यवसाय शुरू करना है, तो बाकी काजे उचित समय है सितंबर और अक्टूबर के बीच में कर सकते हैं जी महीना अतकाए। और जाके काजे कम से कम आपको 100 ते 200 बक्सन ते शुरुआत करनी चाहिए। अगर एक भैया ना कर पाते हैं, हमारी बहन कर सकते हैं, दो जने मिलकर कर सकते हैं, जैसे तुम्हारा हिसाब बैठ जाए। और जाके काजे आपको उद्यान विभाग में जा के जरूर संपर्क कर लेना चाहिए अधिकारी से, क्योंकि क्यों वहाँ पे सब्सिडी और ऐसी योजना चलते हैं जाके काजे, और धन की आवश्यकता हो तो भैया खादी ग्रामो उद्योग से आपको पूरी मदद आपको अवश्य मिल जाएगी। तो भैया हम तो ये कहें कि देखो हमारा जो है का रोजगार भी चलता रहे, व्यवसाय जरूरी है, क्योंकि देखो खर्चा तो भैया आए दिना बढ़ते रहते हैं घर परिवार में। तो जाके का यही है कि देखो जा में कछु खर्चा ना है, बस नेक आपको मेहनत करनी है, दिमाग लगाना है, ध्यान रखना है बस। और जैसे गर्मी का समय भैया, और जहाँ पे नहर है बम्बाए अपने ब्रज क्षेत्र में, और जहाँ पेड़न की छाया है वहाँ बक्सा रख दो, वहाँ पे तो अच्छी खासी जो है का फसल उमत है, जहाँ पे पानी की व्यवस्था है कि ना, तो जरूर करो भैया, हो जाए जा रोजगार को जरूर अपनाओ और सफल बनाओ, और फिर जाते लाभ ही लाभ हैं। तो फिर अब देखो भैया हम आई आपकी तो बातचीत होते हैं, एक और तकनीक तरह से जाकू की हो जाए आजकल का नए सुधार भए हैं, तो बाकी का जो तो विशेषज्ञ की जानकारी जिनने जे काम को कर रखो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, तो उनकी बातचीत से ही हम जाको पूरा लाभ ले सकते हैं बैठे बैठे अपने रेडियो पे। बीनू कुमार रावत से बातचीत है देवराज कृष्ण दीक्षित की, लाभकारी है मधुमक्खी पालन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज है 20 मई का दिन और 20 मई का दिन हम मनाते हैं विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और खेती यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। और अगर बात करें कीट पतंगों की, तो किसानों के मित्र कीट के रूप में हम सभी मधुमक्खियों को जानते हैं। पर परागण की बात करें तो मधुमक्खी इस कार्य में किसानों की बहुत मदद करती हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम

0: मधुमक्खियों की ही बात करेंगे और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं बीनू कुमार रावत जी, जो कि काफी समय से मधुमक्खी पालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार सभी श्रोताओं को।
0: रावत जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि मधुमक्खियों की हमारे किसान भाइयों के लिए या फिर यूं कहें कि आम जनमानस के लिए क्या उपयोगिता है।
1: मधुमक्खी पालन के विषय में आज अगर हम बात करें या मधुमक्खियों के बारे में बात करें तो किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये है कि किसान की फसल का या जो भी वनस्पति हैं हमारे वातावरण में पाई जाने वाली जंगली वनस्पति या किसान की जितनी फसलें हैं उनमें पर परागण का कार्य करते हैं कीट पतंगे या मधुमक्खियां करती हैं।
0: जी जी।
1: और जंगली मधुमक्खियां भी होती हैं, जैसे कि विशेष तौर पर 4 या 5 प्रकार की मधुमक्खियां जो शहद बनाती हैं।
0: जी।
1: और हम जो मधुमक्खी पालते हैं जिसको एपिस मेलिफेरा बोलते हैं, जो कि साधारणतः स्वभाव उसका एग्रेसिव नहीं होता और हम मधुमक्खी पालन करके अपनी आमदनी तो बढ़ाते ही हैं व्यवसाय के रूप में, दूसरा किसानों के भी परोक्ष रूप से अत्यंत लाभदायक है क्योंकि फसलों का पर परागण करने का काम मधुमक्खियां बहुत अच्छे तरह से करती हैं।
0: जी रावत जी, जैसा कि आप काफी समय से इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और मधुमक्खी पालन करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, अच्छी आय कमा रहे हैं इस समय, तो मधुमक्खी पालन अगर कोई करना चाहता है तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे मधुमक्खी पालन हम क्यों करें, दूसरा कि अगर कोई इस व्यवसाय को शुरू करना चाहता है तो शुरुआत में क्या किसी प्रशिक्षण की या स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, क्या कुछ किया जाए?
1: मधुमक्खी पालन करने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसानों के लिए यह है कि आम जनमानस के पास अब उपज की जो जोतें हैं बहुत छोटी रह गई हैं।
0: जी जी।
1: और आमदनी इससे घटी है किसानों की, क्योंकि जोत नहीं है तो हमारे पास पर्याप्त फसल नहीं है कि जिससे बिक्री करके हम सुचारू रूप से अपना घर परिवार चला सकें।
0: जी।
1: अब सहयोग के रूप में पशुपालन जैसे करते हैं उसी तरह मधुमक्खी पालन का कार्य भी हम कर सकते हैं।
0: जी।
1: और प्रशिक्षण की बात रही तो इस कार्य को करने से पहले प्रशिक्षण बहुत ही आवश्यक चीज है।
0: जी।
1: अगर किसी रूप में देख के या सुन के या कि मधुमक्खी पालन अगर कार्य आपने स्टार्ट कर दिया किसी भी किसान भाई ने, तो उसमें तो निश्चित है कि लाभ होगा ही नहीं।
0: जी।
1: क्योंकि ये बारीक कीट का कार्य है और कई सारी परिस्थितियां ऐसी हैं कि इसको लेना तो बहुत आसान है लेकिन इनको मैनेज करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, और प्रशिक्षण विशेष रूप से उद्यान विभाग के द्वारा भी समय समय पर दिया जाता है। जो भी किसान इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं या जानकारी मधुमक्खी पालन में रखते हैं या लेनी है तो उद्यान विभाग मथुरा से संपर्क कर सकते हैं ब्रजवासी हैं तो, या अपने जिले के किसी भी उद्यान विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
0: जी।
1: इसके अलावा जैसे मधुमक्खी पालन का किसान, जैसे मैं स्वयं करता हूं, पिछले 23 साल से मैं मधुमक्खी पालन का कार्य करता हूं।
0: जी जी।
1: बहुत सारे किसान हमारे पास आते हैं, महीने 2 महीने हमारे फार्मों पर रुकते हैं और हमसे मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और उसके बाद कार्य शुरू करना चाहिए।
0: जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली जाए, तब उसी के अनुसार अगर कार्य किया जाए तो हमें सफलता मिलती है। अगर हमारे जो ग्रामीण युवा बेरोजगार हैं इसको अपनाते हैं, इस व्यवसाय को, मधुमक्खी पालन के व्यवसाय को, तो वे भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें करना केवल इतना है कि जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय जाकर के संपर्क करना है और कहां कहां पर कैसे कैसे और कब कब वो इसके बारे में प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। रावत जी, जैसा आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है तो गर्मियों के मौसम में जो मधुमक्खियों का रखरखाव है वो किस प्रकार से किया जाता है, कैसे करते हैं आप?
1: गर्मियों में मधुमक्खी को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये है कि इस वक्त फूल की उपलब्धता कम हो जाती है और मौसम बहुत ज्यादा गर्म है, क्योंकि छोटा कीट है और अगर आप खुले में बॉक्सेस को रख देंगे तो गर्मी के कारण या तेज हवाओं के कारण मधुमक्खी के बॉक्स को बहुत नुकसान पहुंच सकता है, मधुमक्खियां मर सकती हैं।
0: जी।
1: मधुमक्खी पालन के बॉक्स को बचाने के लिए गर्मियों में विशेष मई जून या जुलाई तक उनको छायादार बगीचों में रखा जाता है और कोशिश ये की जाती है कि वहाँ पे कुछ फसलें, जैसे इस वक्त गर्मियों के ब्रज क्षेत्र में देखा जाए तो बाजरा, मूंग की फसल है, मक्का भी होने लगा है, ज्वार होने लगी, उसके आसपास के बगीचों में रखा जाए और पानी की समुचित व्यवस्था होना चाहिए।
0: जी।
1: जैसे नहर का खुला पानी या ट्यूबवेल का पानी मधुमक्खी के लिए बहुत आवश्यक है कि खुला पानी मिले जिससे कि गर्मी से अपने बॉक्स के टेम्परेचर मेंटेन कर सके, और पर्याप्त ध्यान ये देखना है कि बॉक्स के ऊपर अधिकतम दिन के समय में छाया ही रहे, अगर धूप में आप बॉक्स रखेंगे तो मधुमक्खी को नुकसान पहुंचेगा।
0: इन बॉक्सों को पेड़ की छाया के नीचे भी रखा जा सकता है क्या?
1: जी, पेड़ की छाया के नीचे रखा

0: सकता। आर्टिफिशियल आप सोचें कि किसी तरह से नेट वगैरह लगा के, तो वो नुकसानदायक रहेगा। बगीचे के अंदर ही मधुमक्खी के बॉक्सेज को लगाना है,
1: यानी प्राकृतिक छाया रहनी चाहिए।
0: जी जी
1: रावत जी, अगर मधुमक्खी पालन को रोजगार के रूप में हमारे युवा अपनाना चाहते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी काम को शुरू करते हैं, यानी मधुमक्खी पालन के काम को अगर शुरू करना चाहते हैं, तो कितना निवेश शुरुआत में करना पड़ेगा?
0: मधुमक्खी पालन का व्यवसाय जो भी युवा किसान अपनाना चाहते हैं, सर्वप्रथम तो वो उनको प्रशिक्षण लेना चाहिए।
1: जी,
0: उद्यान विभाग के बारे में बता चुका हूँ, वो 7 दिवसीय या 10 दिवसीय प्रशिक्षण करते हैं। इसके अलावा मधुमक्खी पालन के जो किसान हैं, जो पुराने समय से कर रहे हैं, उनके साथ 1-2 महीने रह के सीखा जा सकता है। और इसमें 2 या 3 लोग मिलकर के काम करें शुरुआत में।
1: अच्छा,
0: क्योंकि ये कार्य ऐसा नहीं है कि आपने एक जगह मधुमक्खी के बॉक्स ले लिए और आपके पास जमीन है, वहीं पालन किया जा सके। क्योंकि बेहतर उत्पादन के लिए हमें देश के विभिन्न जगहों पे हमें ले जाना पड़ता है, क्योंकि हमारा देश इस तरह का है कि 12 महीने यानी पूरी साल एक जगह पे हमें फसलें नहीं मिल पाती, जिससे कि फूल उपलब्ध हो और ये शहद बना सके।
1: जी,
0: मान लो किसी इसी समय से स्टार्ट किया जाए, गर्मियों में ब्रज क्षेत्र बहुत अच्छा है, यहाँ नहरें हैं, पानी है, ट्यूबवेल अच्छी व्यवस्था, इस वक्त यहाँ पाल सकते हैं। उसके अलावा जैसे आप बारिशें शुरू हो जाएंगी तो राजस्थान के एरिया में जहाँ तेल बाजरा होता है, ढेंचा होता है, वहाँ फसलें होती हैं, तो वहाँ हमें माइग्रेशन करना पड़ता है। मधुमक्खियों को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए माइग्रेशन बोलते हैं, वहाँ पर रहने की व्यवस्था करनी है। तो 2 से 3 लोग अगर मिलकर इस कार्य को करें, तो मान लो 3 लोग करें तो 150 या 200 बॉक्स
1: जी
0: उनको रखने चाहिए, और उस पर मिलकर काम सीखें और करें तो उत्पादन बेहतर होगा उससे। और एक मेजोरिटी में काम जो होता है कि अपना खेती किसानी भी करेंगे और मधुमक्खी पालन के कार्य को भी कर सकते हैं। निवेश की बात रही तो इस वक्त एक मधुमक्खी के पालन के बॉक्स की कीमत लगभग 2 से 2500 रुपए की है।
1: अच्छा,
0: तो आप उसी हिसाब से लगाइए कि मान लो 150 या 200 बॉक्स का आप फार्म स्टार्ट करते हैं 2 या 3 लोग मिलकर, तो उसके गुणित में ही आप कार्य कर सकते हैं। पूरी साल आप काम करें तो लगभग 4 से 5 लाख रुपए की पूंजी आपके पास होना चाहिए, और मिलकर काम करेंगे, अच्छे से प्रशिक्षण लेके करेंगे और विभिन्न जगहों पर मधुमक्खियों को घुमाएंगे, ले जाएंगे फूलों की जगह पे
1: जी,
0: तो मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर आपको जितना निवेश किया वो भी निकल आएगा, और इसके अलावा प्रॉफिट में भी आप जाएंगे और मधुमक्खियां भी आपके पास बची रहेंगी।
1: जी, तो क्या इसके लिए सरकार द्वारा भी कोई सहायता प्रदान की जाती है क्या?
0: सरकार के द्वारा सहायता उद्यान विभाग के माध्यम से ही कुछ सब्सिडी की स्कीमें हैं जो चलाती है, विभिन्न समय पर सरकारें चलाती हैं, उनसे आप संपर्क करें। क्योंकि मैं तो बेसिकली किसान हूं, मैंने भी अनुदान की राशि पाई है उद्यान विभाग के द्वारा, तो किसान वहां उद्यान विभाग में संपर्क करें, कुछ न कुछ सहायता हर साल आती है और किसान उससे लेके कार्य अपना शुरू करते हैं। इसके अलावा आप बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं, बैंक भी कुछ लोन्स करती हैं।
1: जी, तो रावत जी, चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों से और अन्य हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं इस बातचीत को, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं किसान भाइयों से यही अपील करना चाहता हूं और विनती यह है कि उनसे कि कम से कम कीटनाशकों का प्रयोग फसल में कम से कम करें, और दूसरा मधुमक्खी पालन को अपनाएं, जिससे कि फसल की पैदावार तो बढ़ती है, आम की आमदनी भी बढ़ेगी, शहद भी निकलेगा, मधुमक्खी पालन के बॉक्स भी आप बढ़ाएंगे जिससे कि आपकी आमदनी बढ़ेगी, और शहद बिक्री करें, खुद का माल खुद बेचें, मधुमक्खी पालन के बॉक्स सरकार भी खरीदती है अनुदान राशि में देने के लिए, और किसानों को भी कर सकते हैं। और यह बहुत अच्छा कार्य है जिससे कि युवा वर्ग जुड़े और अपने आमदनी भी बढ़ाए, और वातावरण को, एनवायरनमेंट को भी बहुत अच्छा संदेश जाएगा कि हम अपने कीट पतंगों का ध्यान रख रहे हैं और फसल का उत्पादन बढ़ा रहे हैं।
1: तो श्रोताओं, आज की इस बातचीत से हमने ये जाना कि हमारे लिए मित्र कीटों का, खास तौर पर हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए मित्र कीटों का बहुत बड़ा योगदान है। इससे न केवल पर्यावरण में सुधार आता है, बल्कि हमारे जो बेरोजगार युवा भाई हैं वो भी इस काम को रोजगार के रूप में अपना सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं, बशर्ते पहले प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, उसके बाद योजनाओं की जानकारी जिला उद्यान विभाग से लेनी होगी, और तभी इस काम को आप शुरू करें, और छोटे स्तर से शुरू करके आप बड़े स्तर तक जा सकते हैं और इसको अच्छे रूप में अपना करके अच्छी आय कमा सकते हैं। बीनू कुमार रावत जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सभी सुनने वाले श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहता हूं कि लोग अपना कार्य करें, एनवायरमेंट की देखभाल करें और अपनी आय भी बढ़ाएं। धन्यवाद।
2: लाभकारी है मधुमक्खी पालन? बीनू कुमार रावत से देवराज कृष्ण दीक्षित बात कर रहे भैया। ये बातचीत आपने सुनी, ये हमारी खेती के संग संग एक स्वरोजगार है, जाकू हम जरूर अपनाएं, जहाँ में कोई ऐसी लागत ना आनी है।

बस थोड़े सी आवश्यकता है अनुभव की और सीखने की। तो बाकार में भैया आप लग जाओ और अपनी आमदनी को बढ़ाई लो। तो आमदनी बढ़ जाएगी ना तो भैया फिर तो जे हमारी बहन है, परिवार के सभी हैं, उनको कछु और ही तरफ फिर आनंद आ जावे। और वैसे वो अधिक को महीना चल रहा है अपने या ब्रज में, हम सब ब्रजवासी हैं, वासी हैं, तो हमारे जो गिरिराज महाराज हैं उनकी तलहटी में कैसो आनंद आवे है और हम पुण्य के भागी बन सके हैं। कैसी झांकी बनी विशाल, बांके बिहारी शर्मा को गायो भयो, सुने हैं ये लोकगीत।

0: बांके बिहारी शर्मा को गाए हुए हो। सुनो भैया आपने ये लोकगीत, तो अब गिरिराज महाराज की तो ये परिक्रमा है, और जो भी जामे अधिक के महीना में, जम पर कम्मा दे हैं दंडौती दे में हैं, बहुत पुण्य के भागी बने हैं। और ऐसे ही रज में, अपने ब्रज की रज में लूट लूट के, और ब्रजवासी और सभी जन अपने आप को धन्य कर रहे हैं। और ऐसे ही अब जब अपनी मिट्टी की बात कर रहे हैं, ब्रज रज की बात कर रहे हैं, तो जासा में जो किसान भैया हैं, और अगर उनके जो खेत की जो माटी है, बाकी सेहत की भी अगर बात करी जाए, तो वह में जो पोषक तत्व तो होने चाहिए उतने पोषक तत्व तो है ना है। तो बाकी काजे बाकी जो स्वास्थ्य है अच्छो ना रहे माटी को, क्योंकि वह में जो पोषक तत्वन की कमी आ जाए है, तो बाकू कैसे सुधारें, और वह में कहाँ ऐसो हम डालें कि जैसे बाकी काजे आपको कछु ज़्यादा रुपया खर्च ना करनो, कहूँ जानो ना है, बस थोड़ा सा ध्यान देनो है आपके आसपास कोई जो सामान अतुकाए खाद बनाए के बातें आप सुधार कर सकते हो, बस तरीका को ध्यान रखना भैया। तो जाके काजे विशेषज्ञ बतामते हैं कौन सा जो तरीका है, बाद से हम अपने खेत की जो मिट्टी है बाकी सेहत को सुधार सके हैं। डॉक्टर रविंद्र राजपूत से बातचीत है, दिलीप यादव है, कि मिट्टी की सेहत कैसे सुधारें, सुनो भैया ये जानकारी।
1: किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। किसान भाइयों, आपको मालूम है कि आज फलों की बात हो, सब्जी की बात हो, धनिया की बात हो या अनाज की, बहुत सारी चीजों में स्वाद और सुगंध गायब है। और इसके गायब होने के पीछे कई कारण हैं। कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। कुछ इसी तरह स्थिति मृदा की है। मृदा में जैसा हम डालेंगे, जैसा बीज डालेंगे, जैसा खाद डालेंगे, वैसा ही उत्पादन मिलेगा। हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र मथुरा के मृदा विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र कुमार राजपूत जी। आप ही से जानते हैं मृदा की भौतिक स्थिति क्या है और इसको कैसे सुधारा जा सकता है, ताकि चाहे सब्जी हो, फल हो, अनाज हो, चारा हो, ये सब अच्छे होंगे, का उत्पादन अच्छा और हेल्दी होगा, तो निश्चित रूप से इनका उपभोग करने वाले जो उपभोक्ता है उनको भी अच्छी चीजें मिलेंगी। डॉक्टर
2: साहब भाइयों नमस्कार। देखिए, बात पोषण की करते हैं तो पोषण माने होता है कि चाहे हमारा पोषण हो, पशुओं का पोषण हो या हमारी जमीन का पोषण, जैसा हम खाएंगे वैसा ही हमारा स्वास्थ्य होगा। अब हम मृदा वैज्ञानिक हैं तो जाहिर है कि मिट्टी की बात करेंगे। तो किसान भाई जो मिट्टी की सेहत सुधारने की बात करते हैं, क्योंकि बाजार से किसान भाई डीएपी है, यूरिया है, पोटास है, जो भी रासायनिक उर्वरक उसको मिलते हैं बाजार में, और वो लाके और खेत में डाल देता है फसल के हिसाब से। लेकिन किसानों ने कभी ये जानने की जहमत नहीं उठाई है कि चलिए हमारे खेत में क्या वास्तव में जो पोषक तत्व हम दे रहे हैं उसकी कमी है या नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात कर, जिन पोषक तत्वों की कमी है उनको किसान अनभिज्ञ है, जानकारी नहीं है, उनको सिर्फ दो चार पोषक तत्वों के बारे में जानकारी है, उनको डीएपी है, यूरिया है, पोटास के माध्यम से खेत में अप्लाई कर देते हैं, डाल देते हैं, कितना डालना है, किस तरह डालना है, क्योंकि महंगे उर्वरक है, तो किसान को ये पता ही नहीं रहता है कि साहब वृद्धि नहीं कर रही है फसल, बढ़वार भी नहीं कर रही है, साहब आपकी फर्टिलाइजर अच्छा नहीं है, क्योंकि खेत के अंदर जो पोषक तत्व है उन्हीं से भोजन ग्रहण करता है। अब जो चीज आपने खेत में डाली है उसको लेने के बाद भी और भी पोषक तत्व हैं, जैसे वृद्धि और बढ़वार के लिए हम बात करें अच्छे उत्पादन के लिए, तो 16 पोषक तत्व तो चाहिए, उसके बाद बेनिफिशियल भी है 3-4, तो 16 में अगर किसी एक भी पोषक तत्व की फसल में कमी रह जाती है, बात करें पोषण में कमी रह जाती है, तो हमारा पौधा वृद्धि नहीं करेगा, बढ़वार भी नहीं करेगा और पूरी उपज यानी फलत नहीं देगा, वो कहीं ना कहीं कमी का लक्षण दिखाएगा उस तत्व की और खत्म हो जाएगा। तो किसानों को जानकारी, इसलिए जब आप बात करें खेत के पोषण की, तो खेत का पोषण तो आपका हरी खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, नाडिफ कंपोस्ट है, केचुआ खाद, इसके बाद जो अर्बन कंपोस्ट है, उसके बाद FYM है, गोबर की खाद है, इनको प्रॉपर मात्रा में, बात करें प्रचुर मात्रा में सड़ाने के बाद ही खेत में डालें, ये तो आपके हो गए ऑर्गेनिक। इसके बाद अगर किसी तत्व की कमी महसूस होती है, हर कृषि विभाग द्वारा भी ग्राम लेवल पे कृषि तकनीकी तैनात है, तो वो भी बता देते हैं कि आपके फसल में इस तत्व की कमी हो रही है, आप इस तत्व को लेके और अलग से अतिरिक्त डालो, क्योंकि अतिरिक्त डालने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आजकल जो सघन पद्धतियां अपनानी हमने, एक साल में दो दो तीन तीन

0: लेते हैं। इसके अलावा जो हम अच्छा उपज देने वाली प्रजातियां लगाते हैं ताकि हमारा जो पोटेंशियल यील्ड है वो प्राप्त करने में थोड़ा परेशानी होती, तो अलग से डालना जरूरी हो जाता है। पोषण का अलग से करेंगे तभी आपको अपेक्षित उत्पादन मिलेगा, लेकिन एक बैलेंस मात्रा में करेंगे तभी। ऐसा नहीं कि केवल एक या दो पोषक तत्व डाल दिए आप समझ गए कि हमारा सब गया। तो जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये आपको हवा, पानी और प्रकाश से पौधे को मिल जाते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो किसान भाई है खेती करते हैं डालते भी हैं और पर्याप्त मात्रा में भी डालते हैं। इसके अलावा हमारे खेत में बहुत जो सूक्ष्म मात्रा में जरूरत पड़ती है वो आपके मॉलिब्डेनम है, कॉपर है, आयरन है, जिंक है, बात करते हैं तो कैल्शियम भी है, थोड़ा सल्फर जो दलहनी और तिलहनी फसलों में भी जरूरत ज्यादा पड़ने लगी है तो इनको भी किसान भाई डालते हैं। यही पोषक तत्व है, इनको जब तक संतुलित मात्रा में नहीं डालेंगे खेत में तब तक उपज अच्छी नहीं आएगी। अच्छा, डालने के जो इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करें, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की, तो आपको केमिकल से भी डालने पड़ेंगे, हरी खाद के द्वारा भी डालने पड़ेंगे, कंपोस्ट खाद के द्वारा भी डाल, क्योंकि किसान भाई समझते हैं कि खेत जितना अच्छा होगा उपज उतनी बढ़िया होगी। तो एक खेत तो अच्छा तब होगा जब उसके पेट में, यानी बात करें उसके गर्भ में पोषण का भंडार होगा। अब पोषण का भंडार तो क्योंकि हम सदियों से खेती करते चले आ रहे हैं, जो था वो हमारी फसलों ने उसको अवशोषित कर लिया, अब कमी महसूस हो रही है। किसान भाई 10-10 साल हो जाते हैं कि खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं डाल पाता है। किसान तो अपनी भाषा में उसको घूरा कहता है, लेकिन मैं वैज्ञानिक की भाषा में बात करूं तो जो किसान डालता है वो घूरा ही डालता है। सड़ी हुई गोबर की खाद मतलब जो आप गड्ढे में डाल के सड़ाएंगे और अच्छी तरह से उसका कहीं पोषण, उसके ऊपर पानी बहके न जाए, उसी में समाहित रहे, पर्याप्त मात्रा में सड़ा हुआ होना चाहिए और शाम के टाइम खेत में डालने के बाद जुताई करके और पलेवा कर देना चाहिए, तब फसल की बुवाई, खेत की तैयारी करके फसल की बुवाई करें। क्योंकि किसान भाई क्या है, मई जून के महीने में 15 दिन पहले खेत में डाल के छोड़ देगा, धूप से पोषक तत्वों का नुकसान हो जाता है, हवा से भी नुकसान होता है और इतना हाई टेम्परेचर, बात करें इतना तापमान बढ़ जाता है मई जून का, तो जो भी उसका जो पोषण होता है वो नुकसान हो जाता है, हवा के द्वारा वोलेटिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद जो सूक्ष्म जीव होते हैं आपके सड़ी हुई गोबर की खाद में वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो आपने तो अपनी भाषा में जो भूरा कहते हो भूरा ही डाला है, खेत के लिए बात करते हो फिर हमने साहब इतना हमने सड़ी गोबर की खाद डाल दी, तो वो उतनी मात्रा में इफेक्टिव नहीं होता है। इसलिए आपको सड़ी गोबर की खाद ताजी खेत में डाल के तुरंत मिला, क्योंकि यही अब जो वैल्यू एडिशन की बात हम करेंगे तो यही वैल्यू एडिशन है। यानी जो आप 2.5 साल तक कहते हैं कि हमारी खेतों में काम करेगा, करता है 2.5 साल काम, लेकिन गोबर की मात्रा सही होना चाहिए, प्रॉपर सड़ा हुआ होना चाहिए, ऐसा ना हो कि सड़क के किनारे ढेर बना दिया, बरसात हुई जो पोषक तत्व थे उसके सब बहके चले गए, उसके बाद चारों तरफ से धूप लगी, कुछ गैस फॉर्म में उड़के चले गए, कुछ धुलके चले गए, उसके बाद साल भर में आपने कई टन गोबर की गोबर डाला कच्चा, जो सड़ने के बाद आपको कुंटलों में भी नहीं मिलता है, 90% तक उसका नुकसान होके इधर उधर चला जाता है। तो किसान भाइयों, निवेदन यह है कि जो सड़ी हुई गोबर की खाद है, फसल अवशेषों की खाद है, हरी खाद है, ये आने वाले समय में आपके खेत के लिए च्यवनप्राश, इनको पर्याप्त मात्रा में, उचित मात्रा में डालेंगे तो आपको रासायनिक पोषक तत्वों पर निर्भरता कम रहेगी, क्योंकि सरकार भी इन पे बाहर से आयात करने में बहुत ही टैक्स लगता है, आपको सब्सिडी के माध्यम से मिलता है तो आपको ये सस्ते महसूस होते हैं। अगर सरकार द्वारा इन पे सब्सिडी ना दी जाए तो किसी किसान की इतनी हिम्मत नहीं है कि जेब से पैसा लगा के इसको खरीद के डाल सके। लेकिन जो किसान भाई अपना जो पोषण है उसमें आग भी लगा देते हैं, नहीं प्रॉपर सड़ाते हैं, इधर फेंक देते हैं, चाहे घास हो, खरपतवार हो, जड़, तना, पत्ती, सभी में पोषण है और उसको सड़ाने के बाद खेत में डालिए, जिससे आपके खेत की उर्वरा शक्ति बढ़े और जब उर्वरा शक्ति अच्छी होगी तो जो भी आप फसल उगाई करेंगे, उगाएंगे, आपकी उसकी गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी और उपज भी अच्छी आएगी और उत्पादन भी अच्छा रहेगा।
1: भैया, आप महत्वपूर्ण जानकारी ले रहे, मिट्टी की सेहत कैसे सुधारें, डॉक्टर रविंद्र राजपूत और दिलीप यादव की, और मौसम में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, गर्मी से बचे रहो, ठंडो पानी सीरो पानी पीते रहो और समय को ध्यान रखो। भैया, अब कार्यक्रम को समय समापन की हो रहा है, भैया हम तो आपसे ये कहें स्वस्थ रहें, खुश रहें, गर्मी से बचे रहें। तो कार्यक्रम सुनबे बारे सभी भैया बहनन को हमारी राम राम।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाई बहनों का कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया ममता रानी ने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संध्या वंदन।

अभी आप सुन रहे थे हरिहरन और साथियों के सुरों में शिव महिमा फिल्म से महेंद्र देहलवे की ये भक्ति रचना, संगीत निर्देशन अरुण पौडवाल का था। आइए अब सुनते हैं अनूप जलोटा के स्वर में चिंतामणि सूरदास फिल्म से संत सूरदास की, क्षमा करें, रचनाकार हैं रविंद्र जैन और संगीत भी रविंद्र जैन का है।

अभी आप अनूप जलोटा के स्वर में चिंतामणि सूरदास फिल्म से रविंद्र जैन की ये भक्ति रचना आप सुन रहे थे। संगीत निर्देशन रविंद्र जैन का था। आइए अब सुनते हैं चंद्राणी मुखर्जी के स्वर में फिल्म गोपाल कृष्ण का ये भजन। एक बार फिर से गीत और संगीत रविंद्र जैन के हैं।

अभी आप सुन रहे थे चंद्रानी मुखर्जी के स्वर में ये भजन। फिल्म का नाम था गोपाल कृष्ण। और आइए आप सुनते हैं फिल्म दशावतार से संजीव अभ्यंकर और साथियों को। रचना है संदीप खरे की, संगीत आनंद कुरेकर का है।

0: संजीवा भयंकर और साथियों के सुरों में दशावतार फिल्म से ये रचना भी आप सुन रहे थे। रचनाकार संदीप खरे थे और संगीत निर्देशन आनंद कुड़ेकर का था। इसके साथ संध्या वंदन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रज काव्य सुधा के क्रम में लीजिए सुनिए ब्रजभाषा काव्य पाठ। कवि हैं हीरालाल सुमन।
1: ब्रजभाषा कविता पाठ में मैं सबसे पहले भैया पर्यावरण पे चार पंक्ति सुना रहा हूँ। फल फूल पेड़ पौधा आंगन में होते ठीक, फल फूल पेड़ पौधा आंगन में होते ठीक, इनकी सुवास वास सब कुछ सुहात है, घर द्वार में हमेश मौसम सुहानो लगे, घर द्वार में हमेश मौसम सुहानो लगे, श्वास श्वास में यही तो ज्योतिषी जगात है, श्वास श्वास में यही तो ज्योतिषी जगात है, शीतल सुगंध मंद मंद सी समीर चले, शीतल सुगंध मंद मंद सी समीर चले, नीको दिन लागे ऐसी आभा मुस्कात है, नीको दिन लागे ऐसी आभा मुस्कात है, वायु को प्रदूषण हूँ दूर दूर भागे, और वायु को प्रदूषण हूँ दूर दूर भागे, और सुमन सुखद हियो हर साथ है, सुमन सुखद हियो हर साथ है। और भैया बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ खूब, यही पे एक छंद में पढ़ रहा हूँ, सुने भैया कि बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ खूब, बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ खूब, बेटी को जो प्यारो धन सबसे महान है, बेटी को जो प्यारो धन सबसे महान है, बेटी के अनेक रूप अंगना में छाओ धूप, मृदुभाषिनी सीधी के ज्योति के समान है, मृदुभाषिनी सीधी के ज्योति के समान है, बेटी ने हमेशा माता पिता को बढ़ायो मान, बेटी ने हमेशा माता पिता को बढ़ायो मान, बेटी अनमोल बोल मीठो मिष्ठान है, बेटी अनमोल मोल मीठो मिष्ठान है, सुमन सुधारो नेक बेटी को निहारो नित, सुमन सुधारो नेक बेटी को निहारो नित, बेटी आन मान शान ज्ञान और गुमान है, बेटी ने हमेशा माता पिता को बढ़ायो मान, बेटी अनमोल बोल मीठो मिष्ठान है, सुमन सुधारो नेक बेटी को निहारो नित, बेटी आन मान शान ज्ञान और गुमान है, बेटी आन मान शान ज्ञान और गुमान है, नेह को बहाओ नीर गंगा यमुना के तीर, नेह को बहाओ नीर गंगा यमुना के तीर, धर के ही ये में धीर हस मुस्काओ जी, धर के ही ये में धीर हस मुस्काओ जी, प्रीत रीत नीत में अनित कौन नाम होए, प्रीत रीत नीत में अनित कौन नाम होए, द्वेष दम्भ खम्भ को उखाड़ के दिखाओ जी, द्वेष दम्भ खम्भ को उखाड़ के दिखाओ जी, देश को विशेष काम करवे की होड़ रहे, देश को विशेष काम करवे की होड़ रहे, नव प्रभात कोई नव सूरज उगाओ जी, सुमन सुखारो प्यारो प्यारो सो जगाओ जोश, हिम्मत सो हितकारी साधना जगाओ जी, हिम्मत सो हितकारी साधना जगाओ जी। और भैया सुने कुछ प्रेरक छंद, आए हो जगत में तो जगवे को काम करो, आए हो जगत में तो जगवे को काम करो, काऊ सोन बैर भाव मन में विचारो जी, काऊ सोन बैर भाव मन में विचारो जी, भाई बंधु मात पिता सबसे ही नेह करो, भाई बंधु मात पिता सबसे ही नेह करो, साधु संत संगत में जीवन संभारो जी, साधु संत संगत में जीवन संभारो जी, ही में हमेश एक धारणा विशेष रहे, स्वार्थ सो मोह भंग कर।

भंग कर्म को निहारो जी, सुमन सुखद पद पंकज प्रभु को पूज, राधे राधे बोल श्याम मनु सो उचारो जी, राधे राधे बोल श्याम मनु सो उचारो जी। और भैया सुने एक गीत जी।

सब सो हिल मिल मुस्काओ। और भैया एक ब्रज को छंद सुने, ब्रज को बसेरो मुकु लागत है नी को अति, ब्रज को बसेरो मुकु लागत है नी को अति, ब्रज रज चुम चुम हस मुस्काऊ में, ब्रज रज चुम चुम हस मुस्काऊ में, राधे राधे श्याम श्याम बोले ब्रजवासी सिगु, राधे राधे श्याम श्याम बोले ब्रजवासी सिगु, रसना में रसिक रसीली छवि पाऊँ में, रसना में रसिक रसीली छवि पाऊँ में, गिर गिर राज जी को पावन पुनीत धाम, गिर गिर राज जी को पावन पुनीत धाम, मन में लगी है परिक्रमा करे आहूँ में, मन में लगी है परिक्रमा करे आहूँ में, सुमन सुखारो प्यारो ब्रज को किनारो लगे, सुमन सुखारो प्यारो ब्रज को किनारो लगे, नित प्रति श्याम जी को गुणगान गाऊँ में, नित प्रति श्याम जी को गुणगान गाऊँ में। और भैया सुने एक गीत।

0: अभी
1: आप सुन रहे थे ब्रजभाषा काव्य पाठ, कवि थे हीरा लाल सुमन। इसी के साथ ब्रज साहित्य
0: राग
1: कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अब से कुछ ही पलों में।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से बुरा हाल, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश, अगले 3 दिन तक जबरदस्त गर्मी की चेतावनी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ की अहम बैठक, गलत सूचनाएं फैलाने वाले नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। प्रदेश के 44 जिलों में कल होगी लेखपाल भर्ती परीक्षा, 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल, परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें। और प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन, 22 मई से शुरू होगी मकानों की गिनती। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आज 48 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा प्रदेश में सबसे गर्म जनपद रहा, जबकि हमीरपुर और प्रयागराज में पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के

0: लिए लू चलने को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसी क्रम में प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रदेश के सभी मंडलीय, जिला, संयुक्त, शहरी और ग्रामीण चिकित्सा संस्थानों में गर्मी से पीड़ितों को समुचित इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अस्पतालों में अतिरिक्त बेड, जीवन रक्षक दवाओं और आवश्यक औषधियों का पर्याप्त भंडार रखने के निर्देश दिए हैं। तेज गर्मी से वन्य जीवों को बचाने के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इटावा सफारी पार्क के उपनिदेशक विनय सिंह ने बताया कि सफारी में शेरों के लिए एसी और खस की चटाई का प्रबंध किया गया है।
1: सफारी पार्क में जो भी वन्य जीव हैं उनको गर्मी और लू से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं, जिनके अंतर्गत जो हमारे हाउस हैं उनमें खस की चटाई लगाना, इसके साथ कूलर को लगाते हैं ताकि कमरे का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। जो भी ब्रीडिंग वाली शेरनी है उसके नवजात बच्चे रहते हैं, शावक रहते हैं साथ में, उनको एसी के माध्यम से उनके कमरे का तापमान मेंटेन किया जाता है।
0: गर्मी और लू से बचाव के लिए विभिन्न जनपदों में स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। फतेहपुर में जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं मिर्जापुर में भी 15 जून तक स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। कानपुर में जिलाधिकारी ने कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों को 31 मई तक बंद रखने का आदेश दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में आगामी नीट यूजी 2026 की दोबारा होने वाली परीक्षा के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में श्री प्रधान ने परीक्षा को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। श्री प्रधान ने ऐसे नेटवर्कों पर कार्रवाई के निर्देश दिए जिसमें फर्जी जानकारी फैलाने वाले चैनलों की सक्रिय पहचान, उन्हें ब्लॉक करना और हटाना शामिल है। शिक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि गलत सूचना पर तुरंत रोक लगाई जा सके और परीक्षा प्रणाली की अखंडता की रक्षा की जा सके। प्रदेश में लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा कल 44 जिलों के 861 केंद्रों पर होगी। करीब 8,000 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में लगभग 366,700 अभ्यर्थी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
2: लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार ने तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि परीक्षा को शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिन जिलों में सर्वाधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे वहां विशेष सतर्कता बरती जाए। रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर अभ्यर्थियों और उनके परिजनों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए जाएं और होल्डिंग एरिया बनाए जाएं। उन्होंने सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने के साथ ही लोकल इंटेलिजेंस को भी सक्रिय रखने के निर्देश दिए। गर्मी के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों पर विद्युत आपूर्ति, पीने का पानी की व्यवस्था के अलावा नजदीकी अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखने को कहा गया है। परीक्षा की जिला और राज्य स्तर के कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की जाएगी। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने बरेली जंक्शन और मथुरा जंक्शन के बीच 2 स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने की घोषणा की है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर लखनऊ परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है जो 21 मई की रात 12:30 बजे गोरखपुर से रवाना होगी और सुबह 6:40 पर लखनऊ पहुंचेगी। वापसी में लखनऊ गोरखपुर अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 6:15 बजे लखनऊ से चलकर 11:55 पर गोरखपुर पहुंचेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर क्लस्टर, प्रोजेक्ट गंगा और गेहूं के इनहाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मंडी शुल्क में छूट जैसे विषयों की समीक्षा की। इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एक रिपोर्ट।
3: यूपी डेटा सेंटर क्लस्टर की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश के एआई मिशन की बुनियादी संरचना तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर क्लस्टर केवल एनसीआर क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों को भी इससे जोड़ा जाए। प्रोजेक्ट गंगा की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन युवाओं को डिजिटल उद्यमी के रूप में चुना जाए उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तेजी से विस्तार और कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर बल दिया।

0: ने गेहूं के इन हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की रणनीति की समीक्षा के दौरान मंडी टैक्स और मंडी शुल्क व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश की मंडियों को आधुनिक, स्वच्छ और आकर्षक बनाया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन है। राज्य के जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि नागरिकों को स्वगणना के लिए census.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपने राज्य को चुनना होगा और फिर परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर या ईमेल के जरिए लॉगिन कर जानकारी भरनी होगी। मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी ने बताया कि गणना पर 11 अंकों का एक कोड प्राप्त होगा जिसे प्रगणक के घर आने पर देना होगा, जिससे जानकारी का सत्यापन होगा। उन्होंने लोगों से स्वगणना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश में 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी जो 22 जून तक चलेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट मंत्री बने भूपेंद्र चौधरी ने आज सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री के तौर पर कामकाज संभाल लिया है। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोगों को इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त हो।
2: और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विकास में जिस प्रकार से एमएसएमई विभाग की भूमिका है और उस भूमिका में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो, इसका प्रयास और इस लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 46% निर्यात इन्हीं इकाइयों के द्वारा उत्पादित सामानों का होता है, तो इसे आगे बढ़ाएं, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। और उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है, हमारा विभाग उसमें एक महती भूमिका निभाए, इसका प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे।
1: प्रयागराज से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने को नागर विमानन महानिदेशालय ने मंजूरी दे दी है। प्रयागराज एयरपोर्ट के निदेशक राजेश चावला ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने के बाद प्रयागराज जेवर फ्लाइट की समय सारणी जारी की जाएगी। नई उड़ान सेवा शुरू होने से प्रयागराज से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी।
3: प्रयागराज एयरपोर्ट के ऊपर एक हफ्ते में 60 फ्लाइटों का आना जाना है और अभी ये जो जेवर एयरपोर्ट जून से शुरू हो रहा है, इसमें अभी जैसे ही ये थोड़ा अभी तो कुछ कम फ्लाइटों से वहां से आना जाना शुरू होगा। इंडिगो की एक फ्लाइट शेड्यूल्ड है जो कि जेवर से प्रयागराज और प्रयागराज से जेवर जाएगी, क्योंकि अभी उसका पूर्णतः वो नहीं हुआ, शुरुआत नहीं हुई। जैसे ही वो जैसे जैसे फ्लाइट की संख्या वहां बढ़ती जाएगी तो हमारे यहाँ भी एक फ्लाइट आने का समर शेड्यूल में प्रोग्राम है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से बुरा हाल, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश। अगले 3 दिन तक जबरदस्त गर्मी की चेतावनी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ की अहम बैठक। गलत सूचनाएं फैलाने वाले नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। प्रदेश के 44 जिलों में कल होगी लेखपाल भर्ती परीक्षा, 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें। और प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन, 22 मई से शुरू होंगी मकानों की गिनती। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
5: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति, कर्शन सरगठिया और साथियों के सुरों में हम दिल दे चुके शरम फिल्म का ये गीत। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम और साथियों के सुरों में अंजाम फिल्म का गीत। गीतकार थे समीर और संगीत आनंद मिलिंद का था। फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे ताल फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपके रेडियो सेट के माध्यम से, फिल्म त्रिमूर्ति से। आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की।

अभी आप अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में त्रिमूर्ति फिल्म का गीत आपने सुना। इसी के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कुछ सदाबहार फिल्मी नगमे।

आशा भोसले की आवाज में अंगूर फिल्म का गीत आपने सुना। गुलजार के बोल थे, आरडी बर्मन का संगीत निर्देशन था। श्रोताओं, पुराने गीत केवल संगीत नहीं होते, वे यादों की एक मधुर यात्रा होते हैं। इन गीतों में शब्दों की मिठास है, सुरों की आत्मीयता और भावनाओं की वो गहराई है जो आज भी दिलों को छू लेती है।

तो अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में कर्तव्य फिल्म का गीत। कफील आजर के बोल थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। श्रोतो, पुराने फिल्म गीतों की बात कुछ और ही होती है। भावनाओं की सादगी, शब्दों की गहराई और संगीत की मधुरता श्रोताओं के मन को सीधे छू लेती है। ऐसा ही एक भावपूर्ण गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं। ये गीत जीवन की अधूरी इच्छाओं और प्रेम की संवेदनाओं को बेहद खूबसूरती से व्यक्त करता है। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अनोखी रात फिल्म का ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अनोखी रात फिल्म का गीत आपने सुना। कफ़ी आज़मी के बोल थे, रोशन का संगीत निर्देशन था। श्रोताओ, अब प्रस्तुत है फिल्मी दुनिया का एक मधुर और लोकप्रिय गीत, काहे जिया डोले। इस गीत को सर दिया है उमा देवी ने, गीत के बोल लिखे हैं शकील बदायूनी ने और संगीत से सजाया है नौशाद ने। आइए सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे उमा देवी के सुर में अनोखी अदा फिल्म का ये गीत। शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत निर्देशन था। आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं शमशाद बेगम की आवाज में सीआईडी फिल्म का ये गीत। गीतकार है मजरू, संगीत ओपी नैयर।

शमशाद बेगम की आवाज में सीआईडी फिल्म का गीत आपने सुना। गीतकार थे मजरो, संगीत ओपी नैयर का था। इसी के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:20 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम देशकान।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं देशभक्ति परक रचनाएं कार्यक्रम देशकान में।

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में कुछ देशभक्ति परक रचनाएं। इसी के साथ देशगान का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। एक ही फिल्म से आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं साजन का घर फिल्म के कुछ गाने। श्रोताओ, इस कार्यक्रम में हम किसी एक लोकप्रिय फिल्म के चुनिंदा गीतों के माध्यम से उसकी कहानी, भावनाओं और संगीत की खूबसूरती को आपके सामने लेकर आते हैं। हिंदी सिनेमा की चर्चित फिल्म साजन का घर रिश्तों, प्रेम, त्याग और पारिवारिक संवेदनाओं की एक मार्मिक कहानी प्रस्तुत करती है। कहानी एक ऐसी युवती के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है जो प्रेम और परिवार के बीच अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अनेक भावनात्मक परिस्थितियों का

सामना करती है। फिल्म में पारिवारिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं को बहुत सहज ढंग से दिखाया गया है। फिल्म का संगीत भी बेहद मधुर और भावपूर्ण है, जिसने श्रोताओं के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पहले गीत से, जो प्रेम और आकर्षण की केवल कोमल भावनाओं को खूबसूरती से व्यक्त करता है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से और आज की प्रस्तुति है फिल्म साजन के घर के मधुर गीतों की। फिल्म की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, रिश्तों में भावनात्मक संघर्ष और संवेदनाएं गहराने लगती हैं। इन्हीं भावनाओं को व्यक्त करता हुआ कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीतकार हैं समीर, नदीम श्रवण का संगीत

मनहर उदास और साधना सरगम की आवाजों में साजन का घर फिल्म का गीत आपने सुना। श्रोताओं, फिल्म साजन का घर अपने पारिवारिक मूल्यों और मधुर संगीत के कारण आज भी श्रोताओं के बीच याद की जाती है। अब बारी है आज के अंतिम गीत की। ये गीत प्रेम के निश्चल और समर्पित भावों को बेहद सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में साजन का घर फिल्म का यह गीत आपने सुना और इसी के साथ एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में आज हमने आपको साजन का घर फिल्म के कुछ गाने सुनवाए। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा आपसे कुछ ही पलों में। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की।

0: वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
0: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 96.83 रुपए पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग

0: के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
3: पिछले लगभग साढ़े तीन वर्ष

वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड कर

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में गूंज उठी शहनाई फिल्म का गीत। आइए अब सुनते हैं गीता दत्त और महेंद्र कपूर की आवाज में गोदान फिल्म का यह गीत, अनजान की रचना, पंडित रविशंकर का संगीत निर्देशन।

गीता दत्त, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में गोदान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अनजान की कलम से निकले इन शब्दों को सुरों में पिरोया था पंडित रविशंकर ने। सुहाने तरहने कार्यक्रम की अगली और आखिरी पेशकश हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपके रेडियो सेट के माध्यम से। आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, कमर जलालाबादी के बोल हैं ओपी नैयर का संगीत, फिल्म का नाम है फागुन।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को आप सुन रहे थे फागुन फिल्म के लिए। कमर जलालाबादी का लिखा हुआ ये गीत था, संगीत ओपी नैयर का। इसी के साथ सुहाने तराने कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने को हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: बीते कुछ वर्षों में दुनिया ने एक बदलाव महसूस किया है, एक ऐसा बदलाव जहां भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक निर्णायक आवाज बनकर उभरा है। कूटनीति के नए आयाम, विश्व मंच पर बढ़ती भागीदारी और हर बड़े वैश्विक मुद्दे पर भारत की स्पष्ट और सशक्त उपस्थिति, इन सब ने मिलकर रचा है एक नए भारत का आत्मविश्वास। और इसी बदलती तस्वीर का एक महत्वपूर्ण पहलू है दुनिया भर से मिल रहे वो सम्मान जो भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की गवाही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले ये वैश्विक अलंकरण सिर्फ एक नेता की उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की साख, सामर्थ्य और विश्वसनीयता का प्रतीक हैं। स्वीडन और नॉर्वे से लेकर दुनिया के कई देशों तक हर सम्मान एक कहानी कहता है, भारत के बढ़ते कद की कहानी। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान, भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। शुरुआत करते हैं बिल्कुल हालिया और ऐतिहासिक लम्हे से। मई 2026 का महीना भारत के राजनयिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्डिक देशों की यात्रा पर थे। तारीख थी 17 मई 2026 और जगह थी स्वीडन का गोथेनबर्ग शहर। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा गया। साल 1748 में स्थापित हुआ ये ऐतिहासिक सम्मान किसी विदेशी शासनाध्यक्ष को मिलना ये दर्शाता है कि आज यूरोप की नजरों में भारत का स्थान क्या है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था।
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है।

0: यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
1: कहानी यही नहीं रुकी, इसके ठीक अगले ही दिन यानी 18 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का शाही महल एक और इतिहास का गवाह बना। नॉर्वे के राजा किंग हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से विभूषित किया। दो नॉर्डिक देशों से मिले इन सम्मानों ने साबित कर दिया कि भारत और नॉर्डिक देशों के बीच की साझेदारी अब एक नई रणनीतिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2014 में शुरू हुआ ये कूटनीतिक सफर साल 2016 में सम्मानों की एक ऐसी श्रृंखला में बदल गया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। साल 2016 में खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ा। सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज सैश से नवाजा। इसी साल पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने उन्हें स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्ला खान प्रदान किया। वर्ष 2018 में भारत की पर्यावरण नीतियों को वैश्विक पहचान मिली जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण के क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया। इसी साल फिलिस्तीन ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन दिया। दक्षिण कोरिया ने वैश्विक शांति और आर्थिक विकास के लिए सियोल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया। वर्ष 2019 तो जैसे वैश्विक पुरस्कारों का वर्ष बन गया। दुनिया के नक्शे पर भारत की दोस्ती का दायरा कितना बड़ा था ये इन पुरस्कारों की सूची देखकर समझ आता है। संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद, रूस का सबसे प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, मालदीव का ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इज्जुद्दीन और बहरीन का किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा शामिल रहा। 2019 में ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए उन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया। जब साल 2020 में पूरी दुनिया सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही थी तब भारत की वैक्सीन मैत्री ने दुनिया का दिल जीता। इसी दौरान अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने बेहद प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। 2021 में हमारे पड़ोसी देश भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से भारत के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त की। साल 2023 में जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा था और उसी वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो वहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर पैर छूकर उनका स्वागत किया और उन्हें ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नवाजा। इसी तरह फिजी ने कमियान ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और मिस्र ने अपना ऐतिहासिक ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया। वर्ष 2023 में ही फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसके बाद ग्रीस ने भी उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया। साल 2024 और 25 में तो ये फहरिस्त और लंबी हो गई। नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, गयाना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान और कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर उन्हें प्रदान किया गया। इसके बाद साल 2025 में बारबाडोस श्रीलंका का मित्र विभूषण, मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन उन्हें प्रदान किया गया। घाना ने द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट वेलविचिया मिराबिलिस, ट्रिनिडाद और टोबैगो ने द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो और ब्राजील ने द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से भारत के बढ़ते कदमों का स्वागत किया। इसके अलावा ओमान की तरफ से फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान और इथियोपिया की तरफ से ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया।

0: साल 2026 की शुरुआत में ही इसराइल ने भी उन्हें मेडल ऑफ द नेसेट से सम्मानित किया। इन 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की फहरिस्त सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा बल्कि दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है का संदेश दे रहा है। चाहे वो पर्यावरण संकट हो, वैश्विक शांति की बात हो या आपदा के समय मदद का हाथ बढ़ाना हो, दुनिया आज भारत के नेतृत्व की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष दर वर्ष मिले ये सम्मान असल में भारत की 140 करोड़ जनता के कड़े परिश्रम, हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारे बढ़ते आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य का वैश्विक उत्सव है। विदेशी कूटनीति में क्या 2014 के बाद भारत ने विशेष हासिल किया है जिसे भारत अब दुनिया के मानचित्र में अब एक मजबूत स्तंभ बन गया है, इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत
1: जी। धन्यवाद।
2: धन्यवाद आनंद जी।
0: अशोक जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा चल रही है इसमें वो यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 5 देशों की यात्रा पर हैं। नॉर्वे में हुए तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति बनी है। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के चलते जो वैश्विक परिदृश्य है और वैश्विक परिदृश्य में भारत की जो नॉर्थ वर्ड टर्न है यानी उत्तर की ओर जो रुख है उस लिहाज से कितना अहम मानते हैं इस यात्रा को आप?
3: हम अभी देख रहे हैं जो ये जो यात्रा है वो उनकी नॉर्डिक देशों में है तो इसमें कहा जाए जो ये नॉर्थ वर्ड हम टर्न देख रहे हैं, परंतु ये तो हम जानते ही हैं जो भारत तो एक जिसे कहा जाए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स किए हैं जब भारत G20 की चेयर हमने संभाली थी 2023 में। परंतु इसको छोड़ते हुए मैं कहूंगा जो भारत की जो की कूटनीति है अगर हम 2014 के बाद से देखें तो हमारी कूटनीति पूरे विश्व के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने में लगी है और हम इसमें बहुत ही तीव्र गति से काम कर रहे हैं। परंतु जहां तक ये नॉर्डिक देशों का संबंध है, आपने ठीक कहा है, इसको अभी करीब 8 साल हुए हैं। 2018 में जैसे कहा जाए पहला नॉर्डिक समिट हुआ था स्वीडन में, दूसरा डेनमार्क का हुआ 2022 में कोपेनहेगन में, और अब तीसरा पिछले साल होने वाला था परंतु पहलगाम के इंसिडेंट के होते हुए तो ये नहीं हुआ और अब हो रहा है। तो अभी जो हालात हैं पूरे विश्व में, विश्व की जो चुनौतियां हैं, जो चाहे हम जियोपॉलिटिकल स्तर पर देखें, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया का युद्ध चल रहा है, तो उसमें रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को आगे कैसे ले जाया जाए, और जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन ट्रांजिशन है, इनोवेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इन सभी जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं इनके साथ कैसे संबंध बनाया जाए और देशों के साथ मिलकर सहयोग किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू थे और इस पर बातचीत हुई। और जो बताता है जो प्रधानमंत्री मोदी की और भारत की विश्वसनीयता कितनी बढ़ रही है पूरे विश्व में।
0: चर्चा कर रहे हैं 2014 से लेकर अब तक भारत की विदेशी कूटनीति के आइकॉनिक मोमेंट्स की, और उसमें जो सबसे बड़ा मोमेंट्स था मदन जी वो G20 का जो हमने मेजबानी की। साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुआ G20 समिट नई दिल्ली डिक्लेरेशन की वजह से दुनिया भर में सराहा गया। आपको क्या लगता है कि भारत ने जिस तरह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल का काम किया उसने वैश्विक कूटनीति में भारत का कद किस तरह बढ़ाया?
1: अगर हम G20 की बात करें, एक तो ये बहुत बड़ा सफल आयोजन था, ये तो निश्चित रूप से था। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें हुई कि ग्लोबल साउथ की आवाज को भारत ने मजबूती के साथ बुलंद किया और जो अफ्रीका यूनियन है, अफ्रीकी देश है, उनको G20 की सदस्यता दिलाने में सफलता हासिल की। भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। दुनिया में एकमात्र देश है जो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। इसमें करीब 100 से भी ज्यादा देश आ जाते हैं, पूरा अफ्रीका रीजन इसमें आ जाता है, नॉर्थ अमेरिकी जो कंट्री हैं वो आ जाते हैं, इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे कंट्री हैं जो ग्लोबल साउथ में आते हैं, जो न तो किसी समूह के हिस्से नहीं है लेकिन उनकी आवाज कहीं नहीं सुनी जा रही थी। अगर मैं G20 के आयोजन की बात करूं, भारत की कूटनीति की बात करें, तो ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाना और अफ्रीकी यूनियन को G20 में सदस्यता दिलाना तो मुझे लगता है कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी और इससे भारत की जो कूटनीति है उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि जो भारत एक ऐसे देशों की आवाज उठा रहा है जिसकी आवाज बहुत पहले उठाए जाने की जरूरत थी। और ये पहल कायदे से देखा जाए तो जो विकसित कंट्री है उनको इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने, एक बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उसने इन देशों की आवाज को उठाकर पूरी दुनिया को

0: एक मैसेज दिया जो वसुधैव कुटुंबकम, और इस G20 सम्मेलन की थीम भी यही थी, तो वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और एक भारत के नेतृत्व में विश्वास जताया।
1: डॉक्टर अंक्रोमा हैड सेड एंड आई कोट, आई एम नॉट अफ्रीकन बिकॉज आई वॉज बोर्न इन अफ्रीका बट बिकॉज अफ्रीका वॉज बोर्न इन मी। इन द सेम वे इंडिया कैरी अफ्रीका इन इट्स हार्ट, इंडिया एंड अफ्रीका शेयर आर ड्रीम, आर ड्रीम वेर एवरी चाइल्ड गेट अपॉर्चुनिटीज, वेर एवरी वॉइस इज हर्ड, वेर नेशंस राइज टूगेदर नॉट अ पार। लेट अस बिल्ड अ पार्टनरशिप नॉट ओनली फॉर टूडे बट फॉर जनरेशन टू कम।
2: अशोक जी, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारतीय विदेशी कूटनीति का एक और अहम पड़ाव है आपदा और संकट में कूटनीति, चाहे वो ऑपरेशन संकट मोचन हो, ऑपरेशन गंगा हो, या फिर युद्ध और संकट के क्षेत्रों से अपने नागरिकों को वापस बुलाना, उसमें भी भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन एक और ऑपरेशन हुआ जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जिसमें भारत ने पूरी दुनिया को यह बताया कि अगर भारत की तरफ कोई आंखें दिखाएगा तो भारत युद्ध का जवाब और प्रबल युद्ध से देना जानता है। आतंकवाद को सिरे से ना करना, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि को भेजकर ये बताना कि भारत की मंशा क्या है, कैसे देखते हैं, क्या वो भारतीय की विदेश कूटनीति का एक मील का पत्थर था ऑपरेशन सिंदूर?
3: भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया, वो यही था जो हम अपनी संप्रभुता के लिए, अपने जो नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम पूरी तरह से उनकी रक्षा करेंगे, और जो भी हद हो वो हम वहां तक जाएंगे। और यही बात हुई जो हम युद्ध को पूरा युद्ध में नहीं वैसे परिवर्तित करना चाहते, हमें जब अपना लक्ष्य मिल जाता है तो फिर हमने युद्ध उसी समय रोक दिया। परंतु पाकिस्तान ने अपनी बेवकूफी में उन्होंने सोचा जो वो भारत को ऊपर भी कुछ ऐसा नुकसान कर सकते हैं, परंतु 10 तारीख सुबह को तो उनके केवल बहुत सारे हवाई अड्डे थे, बहुत सारे ऐसे ठिकाने थे जिनको एकदम मिट्टी में मिला दिया गया, तो पाकिस्तान को अपने घुटने पर आना पड़ा। तो हमने तो उनको ये सिद्ध करके, और फिर उसके बाद हमने जब पाकिस्तान ने याचिका की जो ये युद्ध रोक दिया जाए तो हम मान गए, क्योंकि हमने ये देखा है, भारत ने ये पूरे विश्व को बताया जो हम युद्ध शुरू कर सकते हैं अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, और जब हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स लक्ष्य हम प्राप्त हो जाते हैं तो हम उसको बंद भी कर देंगे। तो हमने वहां पर से हमेशा से पाकिस्तान ये कहता रहा था जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो आप हमारे ऊपर हमला कन्वेंशनल वॉरफेयर से नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये बता दिया जो ये उनका जो ब्लैकमेल है ये हमारे विरुद्ध नहीं चलेगा।
2: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि बुद्ध की धरती युद्ध करना भी जानती है और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आइए सुनते उन्होंने क्या कहा था।
1: आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे ये भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है, और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
2: अशोक जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विचार भारत की तरफ से दिया गया, क्या आपको लगता है कि भारत अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में दुनिया में देखा जा रहा है?
3: 2015 में जब ये कॉप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुआ था पेरिस में, तो तब भारत ने और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उस समय के, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था, और अब जैसे उन्होंने बताया 100 से ज्यादा देश इसमें मिल गए हैं। देखिए, आजकल एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभर गए हैं पूरे विश्व के सामने, और हम देख रहे हैं जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा सामने आया है तब तो ऊर्जा, एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स बहुत देशों के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि वहां से 20% एनर्जी पूरे विश्व में आती है वो मिल नहीं रही है। तो इसीलिए ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसकी भारत ने शुरुआत की है, और भारत ने दिल्ली के निकटतम ही यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर्स भी खोला है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें बायोफ्यूल्स अलायंस है, जो कि जब हम G20 की बात कर रहे थे तो G20 के साइडलाइंस पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे। एक तो था इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप।

0: इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अलावा एक CDRI है, दैट इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैसे, जो विश्व में पर्यावरण का बदलाव हो रहा है उसके साथ कैसे जूझा जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनको कैसे जो आपदा आती है उनसे बचाया जाए। तो भारत ने विश्व पटल पर बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं और बहुत से वैश्विक देशों ने भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो इसी से भारत का कद विश्व में और भी इससे ऊंचा हुआ है।
1: दिस इज द इनॉग्रल डे ऑफ ए डिफाइनिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। वी वॉन्ट टू ब्रिंग सोलर एनर्जी इन टू आवर लाइव, वी विल शेयर नॉलेज एंड एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस, वी विल कोऑपरेट ऑन ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस, वी विल डिस्कस रेगुलेटरी इश्यूज एंड प्रमोट कॉमन स्टैंडर्ड्स, वी विल अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द सोलर सेक्टर, एनकरेज ज्वाइंट वेंचर्स एंड डेवलप इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स, वी विल पार्टनर विथ अदर इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। देयर इज ऑलरेडी अ रिवॉल्यूशन इन सोलर एनर्जी, टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग, कॉस्ट आर कमिंग डाउन एंड ग्रिड कनेक्टिविटी इज इम्प्रूविंग। It is making the dream of universal access to clean energy become more real.
2: मदन जी, अब बात थोड़ी वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी कर लेते हैं। COVID-19 और वैक्सीन मैत्री की भी चर्चा काफी रही। जब COVID-19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के 100 से अधिक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई, वो भी दौर था जब दुनिया के कई देश अपनी वैक्सीन जमा कर रहे थे, तब भारत के इस मानवतावादी कूटनीत ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति जो विश्वास पैदा किया, उसका लॉन्ग टर्म लाभ आप कैसे देखते हैं?
3: जब कोविड काल चल रहा था तो 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन की सप्लाई की थी, और उस समय वैक्सीन की हमारे पास भी कमी थी। हम दूसरे कंट्री से कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव है उनसे हम वैक्सीन ले भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हम वैक्सीन दूसरे कंट्री को भी दे रहे थे और 100 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन की सप्लाई की थी, और उसमें से ज्यादातर देश या तो हमारे पड़ोसी देश थे या फिर वो ग्लोबल साउथ के देश थे जिनको हमने वैक्सीन की आपूर्ति की थी। तो इस इनिशिएटिव से भारत का, जैसे मैंने माना कि एक डिप्लोमेसी है, ये भी एक डिप्लोमेसी है कि अगर आप अपने सहयोगी देशों को, अपने मित्र देशों को किसी प्रकार की मदद करते हैं तो ये भी एक डिप्लोमेसी का ही मैं इसे एक पार्ट कहूंगा। और इससे एक जो लॉन्ग टर्म में भारत पर भरोसा बढ़ा है, चाहे वो छोटा कंट्री हो चाहे वो एक अफ्रीका का कोई देश हो, भारत पर उन लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है। और लॉन्ग टर्म में अगर इसकी बात करें, जब एक बार भरोसा बढ़ता है और लगातार भारत उनके किसी न किसी रूप में मदद करता है या उनकी आवाज़ को बुलंद करता है, या जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ भारत ने उठाई, उसके बाद यूएन सुधारों में भारत लगातार बोल रहा है, तो इसका भी फायदा दूसरे देशों को होने वाला है। भारत को उतना फायदा नहीं होने वाला, दूसरे देशों को ज़्यादा होगा अगर यूएन में सुधार होते हैं। ऐसे में जो भारत पर दूसरे देशों का भरोसा है वो लगातार बढ़ रहा है, और जब ये भरोसा बढ़ता है, और जैसे हम कह रहे हैं कि जो दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है वो मल्टीपोलर दुनिया हो रही है, बहुध्रुवीय दुनिया हो रही है, तो भारत उसमें एक मजबूत ध्रुव के रूप में उभर रहा है, एक मजबूत पक्ष के रूप में उभर रहा है।
2: अशोक जी, एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, काफी अहम पक्ष रहा है 2014 के बाद भारत की विदेश कूटनीति का, वो है मुक्त व्यापार समझौते। भारत ने हाल में यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते किए, जिसे हम सब FTA के नाम से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि ये समझौते भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं?
0: जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बहुत ही ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते जो हैं वो किए हैं, और अपने महत्वपूर्ण जो साझेदार हैं, जो व्यापारिक साझेदार हैं जिनके साथ हमारे व्यापारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग बड़ा अच्छा है, उनके साथ किए हैं। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देखा जाए तो वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ऐसा डेस्टिनेशन है जहां हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, जहां हमारे निर्यात जाते हैं। वो तीसरे नंबर पर है जो कि सबसे बड़ा हमारा आर्थिक साझेदार है, सहयोगी है। और इसके अलावा हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ भी किया है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक सहयोग उनके साथ हमारा बहुत बड़ा है। यूरोपियन यूनियन, तो जिनके साथ 2007 में ये बातचीत शुरू हुई थी, मुझे याद है जब मैं ब्रसल्स में था तब हमने ये बातचीत शुरू की थी, नेगोशिएशन शुरू किए थे, और ये 17-18 साल के बाद हम देख रहे हैं, जो इस साल के शुरू में फरवरी में हमने देखा, 19 साल के बाद ये वाला समझौता हुआ है। और इसको वहां की जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेन, उन्होंने इसको मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया था।

0: का इतना व्यापक रूप है। ऐसे ही हमने एफ्टा के साथ जो चार देश हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के, जैसे मैं पहले बोल रहा था, ये आइसलैंड और नॉर्वे तो उसके सदस्य नहीं हैं और ये एफ्टा के सदस्य हैं, और उसके अलावा स्विट्जरलैंड और लिख्टेनस्टाइन, उनके साथ भी बहुत महत्वपूर्ण ये एक सहयोग किया है, जिसमें $100 बिलियन भारत में वो निवेश करेंगे अगले 15 साल में, जिससे 10 लाख जॉब्स यहाँ पर क्रिएट होंगे। इसके अलावा हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ, ये सब हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किए हैं, जो कि मेरे विचार से विन विन अग्रीमेंट्स होंगे ये इन सभी देशों के लिए भी और भारत के लिए भी।
1: आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है।
2: अशोक जी, फॉरेन डिप्लोमेसी के क्षेत्र में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्टैंड भी काफी चर्चा में रहा। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान कि ये युद्ध का युग नहीं है, पूरी दुनिया में ये गूंजा। बिना किसी दबाव में आए भारत का अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर टिके रहना और दोनों पक्षों से बातचीत की वकालत करना भारत की परिपक्व होती कूटनीति का कितना बड़ा प्रमाण रहा।
0: डिप्लोमेटिक पार्लेंस में कहें तो इसको हम स्ट्रेटेजिक अटोनमी कहते हैं, जो जिससे कि हम अपने हितों की रक्षा स्वयं करेंगे और हम किसी और को दखल अंदाजी नहीं करने देंगे। जो वो हमें बताए, भारत को बताए, जो आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या ठीक है, आप इसमें क्या करिए। तो इसीलिए जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो बहुत दबाव पड़ा पहले भारत के ऊपर, जो आप तेल मत खरीदिए रूस से, परंतु भारत ने ये बता दिया, भारत करीब अपने जो जरूरतों का 80-85% तेल है वो आयात करता है, तो इसको हम जहां से भी हमारी कंपनियों को सभी ठीक दाम में तेल मिलेगा हम वहां से वो लेंगे। तो हमने अपने संबंध भी बनाए रखे और ये भी बनाए रखा, परंतु ऐसा नहीं किया जो हमने अपने संबंध और जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ खराब कर दिए। और उन देशों को भी फिर बाद में समझ आ गया, जो अगर रूस का तेल वैश्विक बाजार में नहीं आता तो तेल के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता था। तो इसीलिए भारत ने ये बता दिया है, भारत वैश्विक फायदे के लिए, ग्लोबल गुड के लिए काम करेगा सबके साथ, परंतु अपने हितों को वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा। और हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो केवल वो ट्रांजैक्शनल नहीं है, जो केवल अपने हितों की हम रक्षा करें, हम और देशों के हितों के लिए भी हम उनके साथ बराबर परस्पर सहयोग बनाते रहेंगे और काम करते रहेंगे।
1: विद द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, वॉर हैज रिटर्न टू यूरोप, इट इज कॉजिंग ग्रेट पेन इन द रीजन, सिंस इट इन्वॉल्व्स मेजर पावर्स, द आउटकम्स are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. As I have said directly and publicly, this is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering.
2: अशोक जी, कार्यक्रम के अंत में एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि 2047 तक भारत का लक्ष्य है विकसित भारत बनने का, हमारी विदेश नीति और विदेश कूटनीति इस लक्ष्य को हासिल करने में किस तरह की भूमिका निभा रही है, कैसे देखते हैं आप?
0: भारत की जो कूटनीति है बहुत ही एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान कर रही है, भारत को अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचाने में, विकसित भारत 2047 तक पहुंचाने में, क्योंकि सामने हमारे चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए हमको देखना है जो किन देशों के साथ हमको अपना परस्पर सहयोग बढ़ाना है, हमारे अपने संबंधों को और तेज करना है, और वही हम कर रहे हैं, चाहे पहले हमारे अमेरिका के साथ जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, परंतु अब हम देखते हैं जो अमेरिका का रवैया काफी ट्रांजैक्शनल हो गया है, परंतु फिर भी

0: हमारे संबंध चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, उनके साथ बड़े अच्छे रहेंगे, परंतु फिर भी हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो हर तरीके से लेकर अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए और अपने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अपनी संप्रभुता की हम रक्षा कर सके, इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए भारतीय कूटनीति उसमें एक बहुत ही अहम योगदान करेगी।
1: एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे, आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा।
2: कभी दुनिया के मंच पर भारत को सिर्फ एक बड़ा देश माना जाता था, लेकिन आज भारत एक बड़ी सोच बन चुका है। चाहे G20 की मेज हो या संकट में फंसे देशों तक मदद पहुंचाने का संकल्प, भारत ने हर बार ये साबित किया है कि नई सदी की कूटनीति केवल ताकत से नहीं, विश्वास से चलती है। आज जब दुनिया नए संतुलन की तलाश में है, तो उसकी निगाहें हिंद महासागर के उस किनारे पर टिकती हैं जहां एक लोकतंत्र 140 करोड़ सपनों के साथ विश्व मंच पर आत्मविश्वास से कह रहा है, ये नया भारत है जो मित्रता भी निभाना जानता है और नेतृत्व करना भी जानता है। इसी विश्वास, इसी बढ़ते वैश्विक सम्मान और इसी नई कूटनीतिक यात्रा के साथ मदन जी आपका और अशोक जी आपका कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आभार।
0: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
3: थैंक यू सर।
2: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संकेत।

सुमन कल्याणपुर और मीनू पुरुषोत्तम की आवाजों में ताजमहल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। साहिर का लुगा हुआ यह गीत था रोशन के संगीत निर्देशन में। श्रोताओं, रात्रि की इस शांत और मधुर वेला में हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ पुरानी हिंदी फिल्म जगत के कुछ ऐसे नगमे, जो कुछ ऐसे सदाबहार नगमे जिन्होंने दशकों से श्रोताओं के दिलों में अपनी खास जगह बना रखी है। इन गीतों में कहीं प्रेम की मिठास है, कहीं विरह की कसक, तो कहीं जीवन की सरल और सच्ची भावनाएं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश। तलत महमूद, सुधा मल्होत्रा की आवाजें, दिल निदान फिल्म का गीत है। नक्श लालपुरी की रचना, गुलाम मोहम्मद का संगीत निर्देशन।

तलत महमूद और सुधा मल्होत्रा की आवाज़ों में दिले नादान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। नक्श लालपुरी की रचना थी, गुलाम मोहम्मद का संगीत निर्देशन था। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं दर्पण फिल्म का गीत। आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन, आवाज है मन्ना डे की।

यशुदास की आवाज़ में सावन को आने दो फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अभिलाष के बोल थे, राजकमल का संगीत निर्देशन था। और आइए अब आपको सुनवा रहे हैं एक चहकती आवाज़, आर डी बर्मन और साथियों की आवाज़ें हैं। जमाने को दिखाना है फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, आर डी बर्मन का संगीत निर्देशन।

0: आर्ट लिबरमन और साथियों की आवाज़ें थीं। ज़माने को दिखाना है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, आर्ट लिबरमन के संगीत निर्देशन में। और आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, हम दोनों फिल्म से।
1: अभी न जाओ छोड़ कर,

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में हम दोनों फिल्म का गीत सुन रहे थे, साहिर का लिखा हुआ, जयदेव के संगीत निर्देशन में। इसी के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए आनंद कुमार मलिक का ध्रुपद और धमार गायन। राग हैं बिहाग, ललित और भोपाली। सबसे पहले आइए सुनते हैं राग बिहाग।

No,

0: मैं सर फिरोजी।
1: भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा